0: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
1: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, ऑल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
4: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
5: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
4: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फॉर

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: कॉलेज में ना अच्छा खासा पास हो जाते फर्स्ट ईयर में, बट द रीजन यू चोज टू नॉट स्टडी हार्ड एंड गो टू योर सेकेंड ईयर वॉज बिकॉज आपका जो प्रोफेसर है वो इतना हॉट है कि उसके नाम पर आप जिंदगी का एक साल तो बर्बाद कर ही सकते थे. क्यों?
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: मॉडर्न इंडिया की प्रॉब्लम ही ये है कि मॉडर्न इंडिया इज सो obsessed with these things, you know. But agar aap bhi aisi obsessed bit ji, why don't you hit me up insta par ya fb par. I'll be happy to talk to you. Mera naam hai Mirchi Roshi, naam ki spelling hai r-o-c-h-i-e, aur mere saath line par hai meri mystery caller. She has not told me ki unka confession kya hai, unki story kya hai, to I'm going to find out as much as you will find out right now. Hello mystery caller.
3: Hi,
1: how are you?
3: I am great.
1: आपकी आवाज ना काफी लाइक अमेजिंग और एडवेंचरस और मिस्चिफ मेकिंग है, अगर मैं आपकी आवाज के हाई से आपकी बात कैरेक्टर को पकड़ सकूं तो.
3: थैंक यू सो मच रुचि.
1: यू आर वेलकम सो मच. तो आप ऐसे कुछ मिस्चीवियस काम करें आपने, या फिर आपके नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं?
3: नहीं, मैंने एक्चुअली किया है. आई हैव अ वेरी वेरी डर्टी कन्फेशन टू मेक.
1: डर्टी तो हमें यहाँ इतना पसंद है कि क्या बताएं, इतना डर्टी तो लॉन्ड्री को नहीं पसंद जितना हमको पसंद है. बताइए बताइए.
3: I have a boyfriend and हम चार साल से रिलेशनशिप में हैं. I love him, he loves me. But उसने आज तक मुझे कभी नहीं पूछा है.
1: है? तो ये चार साल से क्या कर रहे हो? पिक्चरें देख रहे हो?
3: तो मतलब I don't know, I love him. बट वो मुझसे पूछता ही नहीं है. और I don't just don't want to go forward with it. तो मैंने भी कभी नहीं पूछा उससे.
1: चार साल.
3: So, but एक चीज है, there is a twist जो मैं आपको बताना चाहूंगी.
1: नहीं नहीं नहीं, लेकिन ट्विस्ट पे जा, एक सेकंड ट्विस्ट पे जाने से पहले, अगर मेरी नानी होती ना तो ये कहती कि पुत्र मुंडे में तो कोई खराबी है, हमको नहीं लगता मुंडे से हो पाएगा, बाकी तू देख ले. हंस रही है. तुमने कभी सोचा नहीं इसके बारे में? चार साल. नानी सही, तुझे लग रहा है कि उससे हो नहीं पाएगा? उन्हें आता ही नहीं है, उनसे होता ही नहीं है.
3: शादी भी करने वाली हूँ उससे. आई थिंक, मुझे लगता है कि आई शुड गिव इट अ थॉट.
1: भैया
3: ऐसा लग रहा है,
1: चार साल से तुम्हें एक्शन नहीं मिला है बेटी, और तुम उस नॉट एक्शन जैक्सन से शादी करने वाली हो. तुम्हारे दिमाग के ना एक दो पेज तो पक्का ढील हैं. सीरियसली भैया, मेरी नानी होती तो कहती पुत्र ना कर, पहले चेक कर ले कि सब कुछ ठीक है. ऑल पार्ट्स शुड बी वर्किंग फॉर अ कार दैट यू बाय फॉर लाइफ, है ना जी?
3: सही कह रही हो रोची.
1: हाँ ठीक है ना. अच्छा ठीक है, फिर ट्विस्ट क्या आया ये बता, बिकॉज मुझे अभी तक तो स्टोरी भयानक ही लग रही है. हाँ,
3: मे बी मैंने गलत राउट ले लिया नानी के इस मैसेज को टेस्ट करने के लिए. मुझे आई डोंट नो, बट आई फाउंड हिज बेस्ट फ्रेंड रियली हॉट, और उसने मुझसे नहीं पूछा तो आई हुक्ड अप विद हिज बेस्ट फ्रेंड.
1: बेटे जी, मेरी नानी यहाँ होती तो कहती कि बेटे एंज नहीं होंदा ना कि एक घर च अगर एक ब्रदर दे नाल ना हो रहा हो तो दूजा ब्रदर फड़ लो, ए नहीं होंदा ना, सब्जी नहीं है बेटे. वाह बेटा वाह. इससे पहले कि अपने बॉयफ्रेंड से ये पूछो कि चार साल हो गए ब्रो, व्हाई आरंट यू शोइंग अप, शुड आई कॉल यू ब्रो एक्चुअली इन लाइफ, आपने कहा ये सब मेहनत कौन करेगा, उसके बेस्ट फ्रेंड को पकड़ते उसके साथ थोड़ा एक्शन जैक्सन. व्हाट?
3: अब देखो रोशी, अब देखते हैं कहाँ जाते हैं. अगर उसका बेस्ट फ्रेंड मुझे पसंद आएगा तो लेट्स सी. मतलब आई एम स्टिल नॉट श्योर, बट ठीक है. You just give me a line of advice.
1: मैं आपको लाइन ऑफ एडवाइस दे ही नहीं रही हूँ. मेरी नानी होती तो कहती बेटे वन इन हैंड इज बेटर देन टू इन द बुश. और दूसरी चीज मैं आपको जो देना चाहती हूँ, इट्स एक्चुअली मच बेटर देन व्हाट योर बॉयफ्रेंड इज नॉट गिविंग यू माय डार्लिंग.
4: यू've been roshified.
3: Thank you so much.
1: But I love your perspective on this, कि अगर इनसे नहीं हो पा रहा है तो इनके बेस्ट फ्रेंड से काम चला लेंगे. On that note, अगर आप भी Gen Z की तरह बिलीव करते हैं that if not here then there, it doesn't matter, up should get solved, why don't you hit me up Insta पर या FB पर. I'll be happy to hear your dirty dirty secrets. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है R-O-C-H-I-E. अब बाकी का काम खुद कर लो, हिट मी अप और कहीं मत जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
1: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
0: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
2: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
3: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
2: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies' first choice.
4: Honey, it's 11 p.m. our bedtime. Where are you?
5: I am not going to bed with you ever again.
4: But why? What did I do?
5: That bed is horrible. It's outdated and when we are on it, it creaks so loud ki sabko pata hai ki ghar pe kya chal raha hai.
4: Oh honey, those days are gone. I bought a new bedroom furniture set from J&M Furniture today.
5: Wow, you mean J&M Furniture on 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey? The ones who carry stylish furniture from Alf Italia?
4: Yes, yes, yes, come soon. Honey!
5: Thank you, Janu. Let's make this a night to remember.
6: J&M Furniture, 175 Talmadge Road, Edison, New Jersey. Or shop online at jnmfurniture.com and have it delivered anywhere in the US. Your bedroom will never be the same again.
7: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
8: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
7: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
9: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
10: एक ही होता है।
7: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: कर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
4: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
5: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
4: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: द बेस्ट काइंड ऑफ लव मेरे हिसाब से वो है जो अंधा होता है. अभी मैं अपने बॉस के साथ कॉन्वर्सेशन कर रही थी. ही इज अ कंप्लीट क्रिकेट मेनियक एंड आई एम अ कंप्लीट लवर ऑफ लव. और हम दोनों का कन्वर्जेंस ऑफ कॉन्वर्सेशन यहाँ हुआ जब वो और मैं बॉलीवुड और क्रिकेट डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि हमने ये कैंपेन आई थिंक पिछले साल किया था वेयर वी हैड डिस्कस्ड रीना रॉय जब अपने पीक ऑफ हर करियर पे थे, द 1970s की मेजर ऑसम एक्ट्रेस. उन्होंने अपना पूरा करियर त्याग दिया था बिकॉज शी फेल इन लव विद दिस पाकिस्तानी क्रिकेटर कॉल्ड मोहसिन खान एंड शी डिसाइडेड कि कुछ भी हो जाए, इस प्यार को और इस शादी को मसी जी, मैं अपनी सारी अटेंशन और अफेक्शन देना चाहती हूँ. एंड सडनली अपने करियर के सबसे बड़ी ऊंचाई पर शी गेव इट ऑल अप फॉर लव. अब आप मुझे बताओ कैसे लगी आपको मेरी ये रियल लाइफ लव स्टोरी. एंड सेकेंडली, अगर आपके पास ये ऑप्शन हो, एक करियर या मोहब्बत, आप किसे चूज करोगे? एंड टू टेल मी द आंसर टू दैट वन, व्हाई डोंट यू हिट मी अप इंस्टा पर या एफबी पर, लेट्स गेट टॉकिंग. एंड व्हाइल यू डू दैट, कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: ब्रो, पोस्ट ब्रेकअप का डिप्रेशन इतना भयंकर होता है, आई नो यू नो. एंड अगर आपकी जिंदगी में समवन इज सफरिंग फ्रॉम इट, लाइक माय बेस्टी वाज रिसेंटली, देन ये वास्तु ट्रिक इज एब्सोल्युटली गोइंग टू मेक इट ओके. वास्तु के हिसाब से इफ यू आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन, देन आपको सिर्फ अपने बेडरूम में येलो एंड ऑरेंज कलर के एलिमेंट्स एड करने हैं, एंड बिफोर यू नो इट 21 डेज के बाद यू विल सडनली बी अ ब्रांड न्यू पर्सन विद अ ब्रांड न्यू वाइब. इसे मैंने अपनी बेस्टी के साथ ट्राई किया एंड इट वॉज सो मिराक्यूलस दैट एक सेकंड के लिए तो मैं भी हैरान रह गई थी. आप इसे करके देखो. इफ यू आर somebody who's going through like the post breakup blues, I know it really sucks, right? और अगर आपको इसके बारे में सबसे पहले तो बात करनी है, why don't you hit me up insta पर या FB पर, we'll get talking. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम के स्पेलिंग है ROCHIE, and I am the girl in love with love. On that note, कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, it's hot.

0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड आखिरकार ओडिसी लग गई है। न सिर्फ ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित डायरेक्टर में से एक जो माना जाता है क्रिस्टोफर नोलन, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, बल्कि 70mm आईमैक्स में फिल्म देखने की उम्मीद रखने वाले हम जैसे जो ऑडियंसेस है उनका भी स्वप्न था। एंड ओडिसी लग गई, जो एक ग्रीक
2: कविता है जो करीब 3000 सालों पहले लिखी गई थी, जो फिर कई कई अंग्रेजी कवियों ने अपनी अपनी तरह से ओडिसी को अपनाया है।
1: होमर का ये एंशिएंट ग्रीक इतिहास पर्दे पर क्या शानदार होकर उतरा है, जहाँ पर मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, एन हैथवे, रॉबर्ट पैटिंसन, ज़ेंडाया एंड हिंदुस्तानी हिमेश पटेल भी नजर आता है इसमें। इसका मजा एक 70mm आईमैक्स थिएटर में ही देखकर आता है। एंड वैसे ही जाकर देखें, आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर कि ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है। कोई कितना भी पसंद करे क्रिस्टोफर नोलन को, फिल्म थोड़ी सी लंबी अवश्य हो जाती है। इनफैक्ट जीतूराज चूंकि हिंदुस्तानी सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है, आई मस्ट टेल यू कि इसके क्लाइमेक्स का आधा घंटा है वो देखते हुए मेरे को एक्चुअली लगा कि मैं कोई हिंदी फिल्म देख रहा हूं। ऑल्सो क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत ग्रांटेड लिया है अपने ऑडियंसेस को, वो ऐसे ग्रांटेड ले लिया है कि हर किसी को ओडिसी के बारे में मालूम होगा। आई वुड वांट टू बिलीव कि दुनिया में कई अंग्रेजी ऑडियंसेस भी होंगी जिनको शायद ओडिसी के बारे में सब कुछ नहीं पता है, तो ये गलती हुई है क्रिस्टोफर नोलन से। ऑल्सो फिल्म कई जगह पर बहुत धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये क्लासिक होते होते रह जाती है, ऐसे जीतूराज को एज ए रिव्यूअर लगता है। बट देन ऑल सेड एंड डन, इसके बावजूद भी ये फिल्म इज अ मस्ट वॉच फॉर द अल्टीमेट सिनेमा प्रेमी, वो जिसको सिनेमा बहुत अहम लगता है। ये एक स्टडी है, ये एक अभ्यास है एंड आने वाली जनरेशन इस फिल्म को अवश्य याद करेगी। टीम मिर्ची की तरफ से इसे 3.5 मिर्चीज, 3.5 स्टार्स ओडिसी। एक बार अवश्य देखें, अपना रिव्यू भेजें ऑन इंस्टाग्राम @ मिर्ची जीतूराज।
0: ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
4: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
3: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
5: एक ही होता है।
3: जैसे USA की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: मैं और मेरी गर्लफ्रेंड सोच रहे हैं दैट वी शुड प्रोबेबली मूव इन टुगेदर, बट मुझे नहीं पता ये अच्छा आइडिया या नहीं. थोड़ी सी मदद कर दो रोशी प्लीज.
1: रोशी के डीएम से
0: ये मैसेज मुझे अक्षय ने लिखकर भेजा. दैट इज सच एन इम्पेरेटिव क्वेश्चन जो आपने मुझसे पूछा है अक्षय, क्योंकि कई बार मैं भी सोचती हूँ अपने दिमाग में कि क्या शादी बेटर है या रिलेशनशिप में लिव इन बेटर है या अलग अलग रहकर डेट नाइट्स पर जाना बेटर है. अगर आपका रिलेशनशिप एक इनसिक्योर फेज से गुजर रहा है, यू नो वेर यू डोंट नो वेर योर पार्टनर इज एंड आपको थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज हो रहे हैं, मूविंग इन इज अ फैंटास्टिक आइडिया बिकॉज वहां पर यू सी योर पार्टनर एवरी डे, तो थोड़ा सा ट्रस्ट और सिक्योरिटी बिल्ड होता है. लेकिन योर आइडिया ऑफ अ डेट नाइट विल चेंज कम्प्लीटली, क्योंकि जहां आप तैयार होकर फिल्म देखने जाते हो, कोजी कैंडल लाइट डिनर्स करते हो बाहर, वहां बिकॉज आप दोनों इकट्ठे साथ में रह रहे हो, योर आइडिया ऑफ अ डेट वुड बी कि अच्छी सी पिक्चर चलाते हैं, तू खाना बना, देन वील सिट एंड ईट टुगेदर. सो द रोमांस का जो कोशेंट है ना वो किसी हद तक बदल जाएगा. ऑल्सो अगर आपको लग रहा है कि लिव इन रिलेशनशिप आसान है शादी से ज़्यादा, देन नॉट रियली, क्योंकि शादी तो एक सोशल सैंक्शन है, बट आपकी ड्यूटीज डिवाइड होंगी, चोर्स डिवाइड होंगे, इट इज गोइंग टू बी अ लॉट ऑफ हैवी लिफ्टिंग इनिशियली. अगर अक्षय यू एंड योर गर्लफ्रेंड आर रेडी टू डू दैट काइंड ऑफ हैवी लिफ्टिंग एंड यू फील लाइक हाँ वी आर रेडी टू टेक दिस नेक्स्ट स्टेप, क्योंकि मूविंग इन इज एन इंडिकेशन दैट यू आर प्रिटी सीरियस अबाउट योर रिलेशनशिप, देन यू शुड टोटली डू दैट. यू हैव माई ब्लेसिंग्स. और एक बार आप ऐसा कर लो, अपने पहले टुगेदर हाउस की फोटोज भेजना मत भूलना. यू कैन डू द सेम थिंग बाय हिटिंग मी अप ऑन इंस्टा या FB. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. सो हिट मी अप, मे बी डू वट एवर यू हैव टू डू, लेकिन कहीं मत जाना जाना, क्योंकि वापस तो यही है आना.
2: सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: मेरे हिसाब से इस दुनिया में दो तरह के बंदे होते हैं. बंदे नंबर वन आर दोज पीपल जो एक्चुअली बहुत चार्मिंग होते हैं, लेकिन उन्हें इतने सेल्फ एस्टीम इश्यूज होते हैं दैट दे नेवर रियली फिगर आउट कि वो सच में काफ़ी क्यूट हैं. बंदे नंबर टू वो होते हैं जो चार्मिंग होते भी नहीं हैं और एक्चुअली देखने में भी कुछ खास नहीं लगते हैं, बट उनका USP, यूनिक सेलिंग पॉइंट ये है कि वो इतने श्योर होते हैं कि वो इतने चार्मिंग, इतने अट्रैक्टिव, इतने कॉन्फिडेंट OMG होते हैं दैट एक्चुअली उनसे लड़कियाँ पट जाती हैं. यू नो वाई? बिकॉज दे फेक इट सो मच दैट लड़कियों को लगता है अगर हमें इस बंदे में कुछ चार्मिंग नहीं लग रहा है तो गलती बंदे में नहीं, हम में है. और ये वही बंदा है जो जाकर पहले तो कॉलेज या ऑफिस में एक लड़की पटाता है, वो पट जाती है तो फिर इसी सिचुएशन को एक्सटेंड करते हुए वो अपनी सोसाइटी में ऐसा करता है. दो लड़कियां भी उसके लिए काफी नहीं होती हैं. द नेक्स्ट टाइम ही गोज टू अ पार्टी ही ट्राइज टू गेट इनटू अ हुकअप स्लैश वन नाइट स्टैंड सिचुएशन, जो इसके केस में सक्सेसफुल हो जाता है बिकॉज ये इतना कॉन्फिडेंट है अपने हॉट लुक्स के बारे में कि ये सबको कन्विंस कर देता है दैट ही इज द गाय ऑफ द मोमेंट. एंड मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ हु इज नॉट जस्ट इरिटेटिंग बट ही इज ऑल्सो सच अ नार्सिसिस्ट कि उसे लगता है कि इस दुनिया में अगर जॉर्ज क्लूनी के बाद कोई हॉट एंड सेक्सी है तो वो ये बंदा है. एंड इट इज सो अनोइंग, आई कांट इवन बिगिन टू टेल यू. लेकिन अगर आपकी जिंदगी में आप ऐसे एक इंसान को जानते हो, आई थिंक हमें नोट्स कंपेयर कर लेने चाहिए. एंड टू डू दैट यू कैन फाइंड मी ऑन द ग्राम या फेसबुक. मेरा नाम है मिर्ची रोशी, नाम की स्पेलिंग है ROCHIE. वे टॉकिंग अबाउट अनोइंग AF मैन. ऑन दैट नोट कहीं मत जाना जाना क्योंकि वापस तो यही है आना. सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: only on 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. It's hot.
1: कॉलेज में ना अच्छा खासा पास हो जाते फर्स्ट ईयर में, बट द रीजन यू चोज टू नॉट स्टडी हार्ड एंड गो टू योर सेकेंड ईयर वॉज बिकॉज आपका जो प्रोफेसर है वो इतना हॉट है कि उसके नाम पर आप जिंदगी का एक साल तो बर्बाद कर ही सकते थे. क्यों?
2: द सीक्रेट बॉक्स.
1: मॉडर्न इंडिया की प्रॉब्लम ही ये है कि मॉडर्न इंडिया इज सो obsessed with these things, you know. But agar aap bhi aisi obsessed bit ji, why don't you hit me up insta par ya fb par, I'll be happy to talk to you. Mera naam hai Mirchi Roshi, naam ki spelling hai r-o-c-h-i-e, aur mere saath line par hai meri mystery caller. She has not told me ki unka confession kya hai, unki story kya hai, so I'm going to find out as much as you will find out right now. Hello mystery caller.
3: Hi,
1: how are you?
3: I am great.
1: आपकी आवाज ना काफी लाइक अमेजिंग और एडवेंचरस और मिस्चिफ मेकिंग है, अगर मैं आपकी आवाज के हाई से आपकी बात कैरेक्टर को पकड़ सकूं तो.
3: थैंक यू सो मच रोशी.
1: यू आर वेलकम सो मच. तो आप ऐसे कुछ मिस्चीवियस काम करें आपने, या फिर आपके नाम बड़े और दर्शन छोटे हैं?
3: नहीं, मैंने एक्चुअली किया है. आई हैव अ वेरी वेरी डर्टी कन्फेशन टू मेक.
1: डर्टी तो हमें यहाँ इतना पसंद है कि क्या बताएं, इतना डर्टी तो लॉन्ड्री को नहीं पसंद जितना हमको पसंद है. बताइए बताइए.
3: I have a boyfriend and हम 4 साल से रिलेशनशिप में हैं. I love him, he loves me. But उसने आज तक मुझे कभी नहीं पूछा है.
1: हैं? तो ये 4 साल से क्या कर रहे हो आप? पिक्चरें देख रहे हो?
3: तो मतलब I don't know, I love him. बट वो मुझसे पूछता ही नहीं है. और I don't just don't want to go forward with it. तो मैंने भी कभी नहीं पूछा उससे.
1: 4 साल.
3: बट एक चीज है, देयर इज अ ट्विस्ट जो मैं आपको बताना चाहूंगी.
1: नहीं नहीं नहीं, लेकिन ट्विस्ट पे जा, एक सेकंड ट्विस्ट पे जाने से पहले अगर मेरी नानी होती ना तो ये कहती कि पुत्र मुंडे में तो कोई खराबी है.

लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: कालिया
1: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
0: अब
2: मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

जिंदगी में रोमांस और पैशन आ ही नहीं रहा है और आप इतने रोमांटिक हो कि आपके सारे कमरे में स्टफ टॉयज हैं, किताबें ही किताबें हैं, बट यू नो व्हाट, फेंगशुई के हिसाब से दैट माइट बी द ओनली थिंग गेटिंग इन द वे ऑफ यू गेटिंग अ पार्टनर इन योर लाइफ. आपको बताए पहले ना मेरे कमरे में इतने सारे स्टफ टॉयज होते थे, इट यूज्ड टू बी क्रेजी एएफ टिल आई रियलाइज कि फेंगशुई के हिसाब से अगर आपके कमरे में या आपके बेड पे बहुत सारे स्टफ टॉयज हैं तो आप यूनिवर्स को ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि यार मेरा बेड तो ऑलरेडी भरा हुआ है, मेरा कमरा तो ऑलरेडी भरा हुआ है, इसमें किसी और की जगह ही नहीं है. इट इज सो ऑब्वियस बट आई कंप्लीटली इग्नोर्ड दैट फैक्ट. और उसके बाद जैसे ही मैंने अपने कमरे से stuffed toys gayab kiye and I gave them all to charity, I am sure there are lots of happy children out there enjoying those stuffed toys. वैसे ही डेटिंग एप्स पर राइट स्वाइप, आप ट्राई करके देखो इसे एंड आई हैव अ फीलिंग इट माइट वर्क फॉर यू टू. और वाइल यू आर एट इट ना, ये जो मैंने अभी टंग ट्विस्टर बोला है ना, इसे 5 बार बोल के दिखाओ, राइट स्वाइप पे राइट स्वाइप, राइट स्वाइप.

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Rambala. Murga, murga. La virpa la murga.
1: Mirchi, murga.
2: Hello.
3: हेलो, किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं?
2: बोल रहा हूँ
3: किरण पाल जी से बोल रहा हूँ। आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग पे बिल जा रहा है, आप ये पे नहीं कर रहे हैं। आपको
2: बिल बकाया है, मैंने अभी जमा किया
3: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
2: 23।
3: एक सेकंड सर। सर अपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
2: हाँ जी, हाँ जी।
3: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
2: बिल आया था 2200 रूपए का।
3: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए हैं ना?
2: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
3: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
2: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
3: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
2: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती है।
3: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, का मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
2: अरे फोन ऐसे काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
3: हूँ? मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर। आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
2: चिल्लाने का क्या मतलब है?
3: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा यार मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपको, मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
4: बिल तो दे जाओ भाई।
2: हेलो
3: सर, से जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
2: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
3: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
2: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहे हैं।
3: नहीं तो आप से बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज।
4: सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है। मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे। और
2: कुकड़ों को
3: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची का।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड आखिरकार ओडिसी लग गई है। न सिर्फ ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित डायरेक्टर में से एक जो माना जाता है क्रिस्टोफर नोलन, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, बल्कि 70mm आईमैक्स में फिल्म देखने की उम्मीद रखने वाले हम जैसे जो ऑडियंसेस है उनका भी स्वप्न था। एंड ओडिसी लग गई जो एक ग्रीक
2: कविता है जो करीब 3000 सालों पहले लिखी गई थी, जो फिर कई कई अंग्रेजी कवियों ने अपनी अपनी तरह से ओडिसी को अपनाया है।
1: होमर का ये एंशियंट ग्रीक इतिहास पर्दे पर क्या शानदार होकर उतरा है, जहाँ पर मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, एन हैथवे, रॉबर्ट पैटिनसन, ज़ेंडाया और हिंदुस्तानी हिमेश पटेल भी नजर आता है इसमें। इसका मजा एक 70mm आईमैक्स थिएटर में ही देखकर आता है। एंड वैसे ही जाकर देखें, आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर कि ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है। कोई कितना भी पसंद करे क्रिस्टोफर नोलन को, फिल्म थोड़ी सी लंबी अवश्य हो जाती है। इनफैक्ट जीतूराज चूंकि हिंदुस्तानी सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है, आई मस्ट टेल यू कि इसके क्लाइमेक्स का आधा घंटा है वो देखते हुए मेरे को एक्चुअली लगा कि मैं कोई हिंदी फिल्म देख रहा हूं। ऑल्सो क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत ग्रांटेड लिया है अपने ऑडियंसेस को, वो ऐसे ग्रांटेड ले लिया है कि हर किसी को ओडिसी के बारे में मालूम होगा। आई वुड वांट टू बिलीव कि दुनिया में कई अंग्रेजी ऑडियंसेस भी होंगी जिनको शायद ओडिसी के बारे में सब कुछ नहीं पता है, तो ये गलती हुई है क्रिस्टोफर नोलन से। ऑल्सो फिल्म कई जगह पर बहुत धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये क्लासिक होते होते रह जाती है, ऐसे जीतूराज को एज अ रिव्यूअर लगता है। बट देन ऑल सेड एंड डन, इसके बावजूद भी ये फिल्म इज अ मस्ट वॉच फॉर द अल्टीमेट सिनेमा प्रेमी, वो जिसको सिनेमा बहुत अहम लगता है। ये एक स्टडी है, ये एक अभ्यास है, एंड आने वाली जनरेशन इस फिल्म को अवश्य याद करेगी। टीम मिर्ची की तरफ से इसे 3.5 मिर्चीज, 3.5 स्टार्स। ओडिसी एक बार अवश्य देखिए और अपना रिव्यू भेजें ऑन इंस्टाग्राम @ मिर्ची जीतूराज।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

एक पुरानी फिल्म है नाइट इन लंदन। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म की काफी शूटिंग लंदन में हुई है, हांगकांग में भी हुई है, लेकिन फिल्म में ना कुछ सीन्स जो ऐसे दिखाए गए हैं कि हांगकांग में है वो एक्चुअली इंडिया में है, क्योंकि उनमें जो गाड़ियां इस्तेमाल की गई हैं उनमें इंडियन नंबर प्लेट है। अब ऐसा तो नहीं है कि इंडियन गाड़ियां हांगकांग उठा के लेके गए होंगे, वो ऐसा हुआ होगा कि शूटिंग से वापस आ गए होंगे, फिर कुछ चेंजेस हुए होंगे, हो सकता है कुछ सीन्स दोबारा शूट करने हो, तो उन्होंने सोचा होगा इंडिया में ही शूट कर लेते हैं, फिल्म में हांगकांग बता देंगे, किसी को क्या पता चलेगा। ठीक है यार, हो जाता है। चलो अभी इसी फिल्म का एक अति रोमांटिक गाना हम सुनेंगे यहाँ पर पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी चीज विद चारू ओनली ऑन मिर्ची ओनली ऑन मिर्ची
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना
3: बना
2: मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा
3: मिर्ची मुर्गा.
4: Hello,
5: is that Mr. Vipul?
4: Yeah,
5: Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from .com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
4: हाँ हाँ बोलिए.
5: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट?
4: ओके.
5: तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छी सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे.
4: बट इसमें करना क्या होगा?
5: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
4: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है.
5: इंस्टॉलेशन ऑफिसर. देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
4: फाइन.
5: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
4: हैंड मिलता है.
5: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
4: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
5: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो कि मैनेजर हैं, जो कि सीनियर मैनेजर हैं, जो कि सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, दूसरी बचती है बी कैटेगरी.
4: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
5: वही मैं आपको बता रहा हूँ. बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं.
4: Have you gone mad?
5: आपने पॉटी लगाई है बच्चे कभी?
4: Talking about?
5: और इसमें
4: क्या बकवास कर रहे हैं?
5: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं, तो आपको एक हॉलीडे देंगे. हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा.
4: आप डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग. ओके,
5: मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते. इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा.
4: हेलो
5: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना.
4: हाँ. Who are you?
5: सर मनीष.
4: Who are you?
5: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
4: .com. How dare you call me?
5: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ. बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं. मूंगफली बेच दीजिए सर. सर आपको सी डाल रहा हूँ. मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा. सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना. दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है. आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मैंने मुर्गा बनाया है आपका, पूरी दिल्ली सुन रही है आपको.
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची.
7: हेलो,
8: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
7: स्पीकिंग.
8: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके दो मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ.
7: हाँ, sure.
8: अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
7: जी.
8: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं. आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
7: बोल कौन रहे हैं?
8: मैं जयदेव बोल रहा हूँ और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं. अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज.
7: देखिए बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को बच्चियों को दबाया गया है. जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
8: बिल्कुल
7: अलाउ नहीं करते. जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे.
8: सही बात है,
7: गर्ल्स को नहीं देंगे.
8: सही बात कह रही हैं. और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई.
7: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है.
8: एक सेकंड होल्ड करिएगा. तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती? पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार. शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ. मैं हाँ
7: किससे बात कर रहे हैं?
8: मैं, वो मेरी वाइफ है यही.
7: हेलो.
8: हाँ बोलिए.
7: हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधारिए.
8: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ.
7: नहीं, आप मेरे से तो नहीं. बातें सही से कर रहे हैं.
8: हाँ?
7: नकली तरह से आप मेरे से
8: नहीं,
7: बातें
8: नहीं,
7: कर
8: नकली
7: रहे हैं.
8: नकली तरीके से क्या?
7: नहीं असली मुझे दिख
8: नहीं, असली नहीं
7: कर रहे हैं.
8: नहीं मैं मेरी वाइफ है यार.
7: वो तो कोई बपौती है.
8: तमीज सीखिए. नहीं तमीज
7: नहीं सुनिए. बिल्कुल नहीं सुनिए.
8: मेरी बात सुनिए. देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा. मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ. मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए. आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया.
7: Oh
8: okay. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए.
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची.
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
9: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी चीज़ विद जारू ओनली ऑन

किशोर कुमार जी ने अपने करियर में कई कारनामे, कई ब्रिलियंट काम किए हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। एक कारनामा ये भी होता था कि उनके गाने उन्हीं के गानों से कम्पीट करते थे, जैसे कि 1985 के फिल्म फेयर अवार्ड्स में, मतलब जो 1984 की फिल्में थी 1985 में अवार्ड्स हुए थे, उसमें बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर कैटेगरी में सारे नॉमिनेशन किशोर कुमार के थे, वो भी एक ही फिल्म शराबी के। लोग कहते हैं मैं शराबी हूँ, फिर दे दे प्यार दे, फिर इंतहा हो गई, उसके बाद मंजिलें अपनी जगह। नो प्राइजेस फॉर गेसिंग, अवार्ड तो किशोर कुमार को ही मिला। और किस गाने को मिला? इस गाने को जो हम सुनने वाले हैं पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: पता है लता मंगेशकर जी ने एक बार किशोर दा का इंटरव्यू लिया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस इंटरव्यू में किशोर दा ने शेयर किया था कि कैसे उनकी और लता जी की पहली मुलाकात हुई थी लेट 40s में, जब ये दोनों एक ही स्टूडियो जा रहे थे एक डुएट रिकॉर्ड करने के लिए, लेकिन एक दूसरे को जानते नहीं थे। सुनिए उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: हमारी तुम्हारी मुलाकात कैसे हुई थी? तुम ट्रेन में आती थी, मैं भी ट्रेन में आता था। पहली मर्तबा जब तुम मिली थी, तुमने मुझे ऐसे देखा था, मैंने तुमसे देखा, फिर तुम उतरी, मैं भी उतरा, तुम टांगे में बैठे, तुमने मुझे देखा, मैं भी टांगे में बैठा, फिर तुम पहुंची बॉम्बे टॉकीज के दरवाजे पर, मैं भी वहां पहुंचा। तुमने सोचा ये फॉलो कर रहा है, क्या बात है, कौन है? फिर हम दोनों चले गए और हम तक जिद्दी के गाने गा रहे
2: हैं।
0: वैसे ये 1948 की जिद्दी फिल्म, इसमें किशोर दा का पहला सॉन्ग एज प्लेबैक सिंगर रिकॉर्ड हुआ था और लता जी के साथ उनका पहला डुएट भी रिकॉर्ड हुआ था। खैर, इन्हीं दोनों का एक और सुंदर सा डुएट यहाँ पर सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची पर उसको साथ जीतू राज, only on Mirchi, it's hot।
1: एंड आखिरकार ओडिसी लग गई है। न सिर्फ ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित डायरेक्टर में से एक जो माना जाता है क्रिस्टोफर नोलन, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, बल्कि 70mm आईमैक्स में फिल्म देखने की उम्मीद रखने वाले हम जैसे जो ऑडियंसेस है उनका भी स्वप्न था। एंड ओडिसी लग गई, जो एक ग्रीक
2: कविता है जो करीब 3000 सालों पहले लिखी गई थी, जो फिर कई कई अंग्रेजी कवियों ने अपनी अपनी तरह से ओडिसी को अपनाया है।
1: होमर का ये एंशियंट ग्रीक इतिहास पर्दे पर क्या शानदार होकर उतरा है, जहां पर मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, एन हैथवे, रॉबर्ट पैटिंसन, ज़ेंडाया और हिंदुस्तानी हिमेश पटेल भी नजर आता है इसमें। इसका मजा एक 70mm आईमैक्स थिएटर में ही देखकर आता है। एंड वैसे ही जाकर देखें, आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर कि ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है। कोई कितना भी पसंद करे क्रिस्टोफर नोलन को, फिल्म थोड़ी सी लंबी अवश्य हो जाती है। इनफैक्ट जीतूराज चूंकि हिंदुस्तानी सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है, आई मस्ट टेल यू कि इसके क्लाइमेक्स का आधा घंटा है वो देखते हुए मेरे को एक्चुअली लगा कि मैं कोई हिंदी फिल्म देख रहा हूं। ऑल्सो क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत ग्रांटेड लिया है अपने ऑडियंसेस को, वो ऐसे ग्रांटेड ले लिया है कि हर किसी को ओडिसी के बारे में मालूम होगा। आई वुड वांट टू बिलीव कि दुनिया में कई अंग्रेजी ऑडियंसेस भी होंगी जिनको शायद ओडिसी के बारे में सब कुछ नहीं पता है, तो ये गलती हुई है क्रिस्टोफर नोलन से। ऑल्सो फिल्म कई जगह पर बहुत धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये क्लासिक होते होते रह जाती है, ऐसे जीतूराज को एज ए रिव्यूअर लगता है। बट देन ऑल सेड एंड डन, इसके बावजूद भी ये फिल्म इज अ मस्ट वॉच फॉर द अल्टीमेट सिनेमा प्रेमी, वो जिसको सिनेमा बहुत अहम लगता है। ये एक स्टडी है, ये एक अभ्यास है, एंड आने वाली जनरेशन इस फिल्म को अवश्य याद करेगी। टीम मिर्ची की तरफ से इसे 3.5 मिर्चीज, 3.5 स्टार्स, ओडिसी एक बार अवश्य देखिए और अपना रिव्यू भेजें ऑन इंस्टाग्राम @ मिर्ची जीतूराज।
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: तेरा क्या होगा कालिया?
4: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
3: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुराने गानों में एक म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बहुत यूज होता था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। ये म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट था अकॉर्डियन। और एक ना एस डी बर्मन साहब का गाना है चुपके चुपके फिल्म का, सारे गामा गीत पहले बना था उसका, एक ये अकॉर्डियन का पीस सुनो आप। याद आया ऐसा सा ये पीस किसी और गाने में भी यूज हुआ है, वही गाना जो हम यहाँ पे सुनने वाले हैं। इजाजत फिल्म का ये ब्यूटीफुल सॉन्ग कंपोज्ड बाय आरबी बर्मन। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए।

राष्ट्रीय फिल्म्स की 1989 की ब्लॉकबस्टर मैंने प्यार किया। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इस फिल्म में लीड रोल के लिए, हीरो के रोल के लिए पता नहीं कितने सारे लोगों को कंसिडर किया गया था। संजय कपूर, अनिल कपूर के जो छोटे भाई, दीपक मल्होत्रा वो मॉडल जो लम्हे फिल्म में जिनका रोल था श्रीदेवी के ऑपोजिट, फिर फराज खान वो जो 1996 की फरेब मूवी में भी आए थे। इनको तो शायद साइन भी कर लिया गया था बट ये बीमार हो गए थे तो इनको फिर फिल्म छोड़नी पड़ गई थी। अच्छा, मनोज कुमार साहब के बेटे कुणाल गोस्वामी, उन्होंने तो इस फिल्म के लिए ऑडिशन भी किया था लेकिन फिर बाद में खुद ही मना कर दिया। देन विंदु दारा सिंह, उनको भी शायद साइन कर लिया गया था। और तो और पीयूष मिश्रा साहब, उनको भी कंसिडर किया गया था लेकिन फाइनली आना था सलमान खान ने, वो आ गए, उनका टाइम भी आ गया सुपरस्टार बनने का। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।

0: पुराने जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना, उसका बना, सबका बना, बना। मुर्गा मुर्गा नबीद वाला मुर्गा, मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हेलो, किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं?
3: बोल रहा हूँ
4: किरण पाल जी से बोल रहा हूँ। आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग पे बिल जा रहा है, आप ये पे नहीं कर रहे हैं। आपको
3: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
4: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
3: 23।
4: एक सेकंड सर, आपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
3: हाँ जी, हाँ जी।
4: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
3: बिल आया था 2200 रूपए का?
4: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए है ना?
3: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
4: हाँ हाँ, वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
3: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
4: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
3: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती है।
4: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, का मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया है, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
3: अरे फोन ऐसे काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
4: हूँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ सर। आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर, आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
3: चिल्लाने का क्या मतलब है?
4: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपको, मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
5: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
3: हेलो
4: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
3: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
4: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
3: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहा है यार।
4: नहीं तो आप ये बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे, आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज। सर
5: मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है। मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे।
3: ए
4: लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

मुझे ये बात बड़ी अमेजिंग लगती है कि पुराने गाने इतने अमेजिंग हैं कि जैसे गानों में से गाने निकल आते हैं। मतलब कोई भी लफ्ज आप पकड़ लीजिए उसमें कोई गाना निकल आता है। जैसे लिखा है तेरी आंखों में किसका अफसाना, ये गाना जो हमने सुना, तो अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों में रंग भर के तेरे इंतजार का। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। अच्छा ये जो गाना है फिर, अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का, आंखों से हम ले लेंगे गाना कौन सा, आंखों आंखों में बात होने दो, मुझको अपनी बाहों में सोने दो, फिर बाहों से बाहों में चले आओ, हमसे सनम क्या पर्दा, पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बेपर्दा न कर दूं तो अकबर मेरा नाम। नाम से कौन सा गाना सुनेंगे, ये वाला। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, साथ ही रखना छोड़ना नहीं, ठीक है। आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: Pirani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा।
2: FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Jeans with Charu. Only

बदनामी पर एक बहुत ही सही शेर है अकबर इलाहाबादी साहब का। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। नहीं, वो अमर अकबर एंथनी वाले अकबर इलाहाबादी नहीं, काफी महान शायर रहे हैं अकबर इलाहाबादी। उनकी लाइंस हैं कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। अच्छा, भूलने पर भी कुछ लाइंस हैं, पर ये बहादुर शाह जफर साहब की हैं। तुमने किया न याद कभी भूल कर हमें, हमने तुम्हारी याद में सब कुछ भुला दिया। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची, सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।
1: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
2: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
1: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
3: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
4: एक ही होता है।
1: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

0: भाई पुरानी फिल्मों में जहाँ हीरोइंस अपने इमेज को लेकर बहुत कॉन्शियस होती थी, जहाँ अक्सर उनको फिल्मों में बहुत अच्छी सीधी सादी मॉरल्स वाली दिखाया जाता था, वहाँ पर कुछ हीरोइंस ऐसी थीं जिन्होंने कुछ बोल्ड चॉइसेस भी की। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, और ऐसी ही एक एक्ट्रेस माला सिन्हा जी। काफी फिल्मों में इन्होंने इस तरह के रोल किए जो उस टाइम के हिसाब से टैबू थे। जैसे दो फिल्में तो मुझे इनकी याद आ रही हैं, धूल का फूल और धर्मपुत्र, जिसमें इनके रोल में ये शादी से पहले अपने रिलेशनशिप में प्रेग्नेंट हो जाती हैं। अच्छा, एक और इनकी फिल्म थी गुमराह, जिसमें शादी के बाद ये अपने एक्स लवर के साथ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में इन्वॉल्व हो जाती हैं। अपने इस थोड़े वैम्पिश रोल के बारे में सुनिए, उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: वो बहुत बारीकी थी उस रोल में, गुमराह के रोल में। थोड़ा भी अगर उसका एक्सप्रेशन, उस लड़की का एक्सप्रेशन में, या चलने में, या देखने में, या बोलने में, या डायलॉग डिलीवरी में थोड़ा भी अगर फर्क पड़ जाता तो वो कैरेक्टर बहुत ही गंदा लगता या वैम्प हो जाती। पर चोपड़ा साहब ऐसे डायरेक्टरों में से हैं जो कि वाकई कैरेक्टराइजेशन को समझते हैं और किस तरह से उसको सलीके के साथ ले जाए, पेश करे, उनमें वो खासियत है। इसलिए वो रोल अच्छा ही लगा, आंखों को खटका नहीं।
0: तो चलिए इसी फिल्म से खूबसूरत गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: चलो एक बार।

भाई आरडी बर्मन और लिरिसिस्ट गुलशन बावरा काफी अच्छे दोस्त थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। तो एक बार आरडी बर्मन गुलशन बावरा के यहाँ मीटिंग करने आए, तो गुलशन बावरा जी की वाइफ अंजू जी, उन्होंने इनसे पूछा कि खाने में क्या बनाऊं। तो आरडी बर्मन ने एक बर्तन उठाया, उसे अपने हाथ से बजाने लगे और गाने लगे कि सरसों का साग बना दे अंजू, मक्की की रोटी बना दे अंजू। और इसी ट्यून पे फिर ये गाना बना जो हम सुनने वाले हैं, 1978 की फिल्म कस्मे वादे का टाइटल ट्रैक, जो ऑफ कोर्स लिखा है गुलशन बावरा ने, कंपोज किया है आरडी बर्मन ने और गाया है लता मंगेशकर एंड किशोर कुमार ने। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: रानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सका बना
3: बना
2: मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा
3: मिर्ची मुर्गा।
4: हेलो,
5: इस दैट मिस्टर विपुल?
4: यस
5: मिस्टर विपुल, हाय, आई एम अतुल कॉलिंग फ्रॉम .com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
4: हाँ हाँ बोलिए।
5: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट? तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छे सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
4: बट इसमें करने क्या होगा?
5: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
4: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
5: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
4: फाइन।
5: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
4: मिलता है,
5: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
4: अच्छा, ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
5: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो के मैनेजर हैं, जो के सीनियर मैनेजर हैं, जो के सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी है, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
4: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
5: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं।
4: Have you gone mad?
5: आपने पॉटी लगाई बच्चे कभी? और इसमें
4: क्या बकवास कर रहे हैं?
5: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं, तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा। आप
4: डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग,
5: मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते हैं। इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
4: हेलो
5: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना।
4: हाँ, हु आर यू?
5: सर मनीष।
4: हु आर यू?
5: सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
4: .com. हाउ डेयर यू कॉल मी?
5: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं, मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी डाल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे, मैंने मुर्गा बनाया आपका, पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: तुम्हें देख रहे हैं।
1: तो देखने दो।
0: जल भी रहे हैं।
1: अरे तो जलने दो।
0: खुली सड़क है बाबा।
1: तो क्या हुआ पाई?
0: हाँ तो हो जाए
1: हो जाए।

0: लेट 80s की एक बहुत ही पॉपुलर जोड़ी थी ऋषि कपूर एंड श्रीदेवी। फिर जी सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारु आपके साथ। नगीना एंड चांदनी में क्या हिट हुए थे ये दोनों। अच्छा, एक बार कपिल शर्मा शो पे ना ऋषि कपूर जी ने शेयर किया था कि नगीना फिल्म के दौरान जब श्रीदेवी और ये पहली बार साथ में शूटिंग कर रहे थे तो एक क्या इंसिडेंट हुआ था।
1: एक दिन मुझे याद है कि एक शॉट चल रहा था, फिल्म की मैगजीन होती ना वो रन आउट हो गई, तो लाइट्स जैसे ये सब लाइट्स ऑन है और वो 2 मिनट लगता है चेंज करने को, मैगजीन निकाला मैगजीन और कैमरे में लगाया मैगजीन, तो वो जो 2 मिनट का डिस्कम्फर्ट होता है कि एक्टर एक्ट्रेस खड़े में लाइट्स चालू है सब साइलेंस है सब जगह और वहाँ क्या कहे, तो मुझे श्रीदेवी जी ने कहा कि सर आई सॉ खेल खेल में 4 times, बड़ा अच्छा लगा सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मैं क्या रिटर्न कॉम्प्लीमेंट, मुझे याद नहीं आ रहा कि कौन सी पिक्चर मैंने देखी है उनकी। कमाल की एक्ट्रेस।
0: क्या बात है, चलिए दोनों पे पिक्चराइज्ड ये सुपर रोमांटिक गाना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: Purani Jeans with Charu, only on Mirchi.
1: अच्छा ये बात है, तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच देना। डन
2: कैन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ, बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?
3: नहीं।

0: सोमवार है, आज सोमवार है, तुमको मुझसे प्यार है।
1: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन मिर्ची।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली

0: आए दिन बहार के आए हाय हाय हाय हाय, इस फिल्म का गाना हमने सुना। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन जब इस फिल्म की शूटिंग चल रही थी ना, तो आशा पारेख जी जो इस फिल्म की हीरोइन थी, उनके लिए वो दिन खास बहार के नहीं थे क्योंकि धर्म जी के साथ वो इस फिल्म की शूटिंग कर रही थी और धर्म जी सेट्स पर अल्कोहल कंज्यूम करके आते थे, जिसकी स्मेल आशा जी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। कई बार धर्म जी अल्कोहल की स्मेल को एक स्ट्रॉन्गर स्मेल से हटाने मिटाने की कोशिश करते, जैसे कि बहुत सारा प्याज खा लिया, जो आशा जी को और भी ज्यादा परेशान करता। तब आशा जी ने उनसे बहुत रिक्वेस्ट की कि भाई आप ऐसा ना करें, प्लीज प्लीज प्लीज। उसके बाद धर्म जी ने जो फिल्म के सेट्स पर न पीने की प्रतिज्ञा ली, उसको भरपूर निभाया। इनफैक्ट हिल स्टेशन में जहाँ ये शूट करते थे, कई बार ऐसा धर्म जी का दिल डोला कि वो कुछ कंज्यूम कर लें, लेकिन क्योंकि उन्होंने आशा जी को प्रॉमिस किया था, उन्होंने ऐसा नहीं किया। अभी आप फिलहाल एक काम कीजिए, मुस्कान को ले जाइए कान तक और कान रखिए मिर्ची पर, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu rj.charu इस नाम से। सुनते रहिए मिर्ची।
1: गुड नाइट।
2: गुड नाइट।
1: हाँ गुड नाइट।
2: अच्छा गुड नाइट।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों ओनली ऑन

मनोज कुमार साहब के बेटे कुणाल गोस्वामी, इनका फिल्मी करियर कुछ खास नहीं रहा था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इनकी डेब्यू फिल्म थी 1983 की फिल्म कलाकार। तब ये मात्र 18 साल के थे और एक इंटरव्यू में इन्होंने शेयर भी किया था कि इनको बहुत जल्दी लॉन्च कर दिया गया। सीन कुछ यूं हुआ कि जब ये 16 साल के थे तभी ये 6 फुट के हो गए। तो फिल्म मेकर्स प्रोड्यूसर्स जब इनके घर आते थे इनके फादर मनोज कुमार साहब से मिलने, तो लड़के को देखकर बोलते थे कि इसको फिल्मों में लॉन्च कर देते। ये उनसे बचते बचाते छुपते छुपाते यहाँ वहाँ से घर से निकल जाते थे, लेकिन किसी तरह फिर पकड़ में आ गए। थोड़ा प्रेशर बढ़ गया क्योंकि तब और स्टार सन्स भी लॉन्च हो रहे थे, संजय दत्त, कुमार गौरव, सनी देओल, तो इनको भी लॉन्च कर दिया गया। लेकिन ये इतने यंग दिखते थे, इतने छोटे दिखते थे, समहाउ ऑडियंस ने इनको एज लीडिंग हीरो एक्सेप्ट नहीं किया। खैर जो भी है, इस फिल्म का ये गाना बहुत सही है जो हम फिलहाल सुनेंगे यहाँ पर पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा, बैक टू बैक गाना सुनेगा। Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yeah.

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: ना लागे।
1: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
2: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
1: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है। जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची, बाकी जो है वो सिर्फ है। रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

92.7 FM, Radio Mitri, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: 92.7 FM, Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: कत्ल करती हैं निगाहें कि दिल को खबर ना हो, जख्म देती है ऐसा कि दर्द का असर ना हो. हमने समझा था इश्क मोहब्बत को ही ख्याले दिल, लगता है डर बस इतना वो मेरा हम शक्ल ना हो.

0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: एंड आखिरकार ओडिसी लग गई है। न सिर्फ ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित डायरेक्टर में से एक जो माना जाता है क्रिस्टोफर नोलन, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, बल्कि 70mm आईमैक्स में फिल्म देखने की उम्मीद रखने वाले हम जैसे जो ऑडियंसेस है उनका भी स्वप्न था। एंड ओडिसी लग गई, जो एक ग्रीक
2: कविता है जो करीब 3000 सालों पहले लिखी गई थी, जो फिर कई कई अंग्रेजी कवियों ने अपनी अपनी तरह से ओडिसी को अपनाया है।
1: होमर का ये एंशियंट ग्रीक इतिहास पर्दे पर क्या शानदार होकर उतरा है, जहाँ पर मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, एन हैथवे, रॉबर्ट पैटिनसन, ज़ेंडाया और हिंदुस्तानी हिमेश पटेल भी नजर आता है इसमें। इसका मजा एक 70mm आईमैक्स थिएटर में ही देखकर आता है। एंड वैसे ही जाकर देखें, आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर कि ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है। कोई कितना भी पसंद करे क्रिस्टोफर नोलन को, फिल्म थोड़ी सी लंबी अवश्य हो जाती है। इनफैक्ट जीतूराज चूंकि हिंदुस्तानी सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है, आई मस्ट टेल यू कि इसके क्लाइमेक्स का आधा घंटा है वो देखते हुए मेरे को एक्चुअली लगा कि मैं कोई हिंदी फिल्म देख रहा हूं। ऑल्सो क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत ग्रांटेड लिया है अपने ऑडियंसेस को, वो ऐसे ग्रांटेड ले लिया है कि हर किसी को ओडिसी के बारे में मालूम होगा। आई वुड वांट टू बिलीव कि दुनिया में कई अंग्रेजी ऑडियंसेस भी होंगी जिनको शायद ओडिसी के बारे में सब कुछ नहीं पता है, तो ये गलती हुई है क्रिस्टोफर नोलन से। ऑल्सो फिल्म कई जगह पर बहुत धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये क्लासिक होते होते रह जाती है, ऐसे जीतूराज को एज ए रिव्यूअर लगता है। बट देन ऑल सेड एंड डन, इसके बावजूद भी ये फिल्म इज अ मस्ट वॉच फॉर द अल्टीमेट सिनेमा प्रेमी, वो जिसको सिनेमा बहुत अहम लगता है। ये एक स्टडी है, ये एक अभ्यास है, एंड आने वाली जनरेशन इस फिल्म को अवश्य याद करेगी। टीम मिर्ची की तरफ से इसे 3.5 मिर्चीज, 3.5 स्टार्स। ओडिसी एक बार अवश्य देखें और अपना रिव्यू भेजें ऑन इंस्टाग्राम @ मिर्ची जीतूराज।
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: सुनता है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM रेडियो मिर्ची न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

गगन घिरे बदरा, सगन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा।

आए, ले जाओ इसको घर राधे, ले जाओ इसको घर राधे, ले जाओ इसको घर। देश मान कर चली राधिके ले माधव को, यमुना तट लीला निकुंज में राधा माधव की यह लीला, राधा माधव की लीला सर्वोत्तम हो।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: 92.7 FM, रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी, साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

आरके जूल्स। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस, सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या हर बार गुस्सा दिखाना ताकत की निशानी होती है या कभी कभी ये हमारी कमजोरी को भी दिखाता है? आइए इस बारे में जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: गुड मॉर्निंग सिस्टर श्रेया, कैसी हैं आप?
4: गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे, आप कैसे हैं?
3: बहुत अच्छा हूँ। आज सुबह जब मैं निकल रहा था ना, तो मैं एक कैब में आ रहा था, और जैसे ही निकला गली के अंत में, जब वो टर्न ले रहा था तो सामने वाली गाड़ी जो है उसमें हल्की सी मैंने टच कर दिया। अब गलती जहां तक मुझे नजर आई वो सामने वाली की थी, इसकी नहीं थी। लेकिन मेरा जो कैब ड्राइवर है वो बहुत उत्तेजित हो गया और उस पे चिल्लाने लगा, और वो भी जो है सामने वाले जो ओनर थे वो भी निकल के, मतलब एक समय ऐसा आया कि दोनों में मारपीट होने की संभावना थी। तो और मैं बैठे बैठे उसको बोल रहा था, भाई क्यों लड़ रहे हो, गलती उसकी है तुम्हारी, इट डजंट मैटर, लेट्स जस्ट मूव ऑन। और पीछे बहुत जैम भी लगने लगा था। जैसे आपने कई बार बोला है कि गुस्सा मत करो, शांति से सुलझाने की कोशिश करो, तो जो शांत होता है ना उसको लोग वीक समझते हैं, और पब्लिक भी उन्हीं के साइड आने लगती है जो जोर से चिल्ला रहा होता है। ऐसी सिचुएशन में जहाँ शांति काम ही ना आए, क्या किया जाए?
4: जब हम शांति की बात करते हैं तो पहले ये कोई सिर्फ बाहर शांत रहने की बात नहीं है।
3: हाँ,
4: शांति मतलब मन की स्टेबिलिटी।
3: जी,
4: कभी कभी मन बहुत डिस्टर्ब हो जाता है।
3: हाँ,
4: ऐसा क्यों हो गया, पहले लेट हो रहा था, ये ऐसे क्यों करते हैं, इनको लाइसेंस किसने दिया। सो वो जो अंदर का डिस्टर्बेंस है वो ना रहे
3: जी,
4: और अंदर में स्टेबिलिटी रहे, मतलब हर थॉट प्योर पॉजिटिव हो, उसको शांति कहते हैं
3: जी।
4: बाहर हमें जो करना है वो करना है।
3: हाँ,
4: लेकिन बाहर हमें कभी असर्टिव होना पड़ता है।
3: हाँ,
4: कभी थोड़ा स्ट्रॉन्ग होना पड़ता है।
3: हाँ,
4: कभी थोड़ा सा लविंग होना पड़ता है।
3: हाँ,
4: वो सिनारियो को देख करके होता है।
3: हाँ, वो सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है,
4: उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इनफैक्ट हाँ, आपको बाहर तो कभी कभी टफ कॉन्वर्सेशंस भी करनी पड़ती हैं।
3: हाँ,
4: बहुत असर्टिव भी होना पड़ता
3: हाँ,
4: है, थोड़ा सा स्टर्न भी होना पड़ता है, क्योंकि वो आपका रोल है
3: जी।
4: लेकिन बाहर का बिहेवियर
3: हाँ,
4: और अंदर जो मन की स्थिति है
3: हाँ,
4: वो बात उसकी है कि अंदर मन बहुत स्टेबल होना चाहिए।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: जब कोई बात हमारे कंट्रोल से बाहर निकल जाए तो गुस्से के बजाय शांति से सिचुएशन को कैसे संभालें? आइए समझे।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: कभी कभी बात हाथ से बाहर निकल जाती है, जैसे सामने वाला अग्रेसिव हो रहा है, अब्यूजिव हो रहा है, कभी कभी हाथापाई पे भी उतर आता है, और आप शांति से लेट्स से मन आपके स्टेबल है और आप बाहर थोड़ा टफ होने की कोशिश कर रहे हैं या फर्म होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता जो है वो सामने वाले की तरफ आ गई। मैंने इंडिया में एक रूल देखा है, शायद दुनिया भर में, जिसकी बड़ी गाड़ी उसकी गलती और जो अमीर है उसकी गलती।
4: सी, मैं हमेशा समझती हूँ कि हमें वो करना चाहिए जो राइट है। हमेशा जो मेजोरिटी करती है जरूरी नहीं है वो राइट है
3: जी।
4: लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम जोर जोर के चिल्लाते हैं तो हम सामने वाले पर दबाव डालने की कोशिश करते हैं
3: जी।
4: कभी ये वर्क भी करता है, कभी ये बैकफायर भी कर जाता
3: बिल्कुल।
4: है, अग्रेसिव हो जाते हैं, रोड रेज भी हो जाता है, अपराध वायलेंस तक भी हम उतर आते हैं। तो जरूरी है कि जो सही है वो हम करें जितना हमारे कंट्रोल में है, उसके बाद फिर जो हमें मदद लेनी है, जो सपोर्ट लेना है वो ले। सब जो कर रहे हैं वो हमेशा राइट होता है ये जरूरी नहीं है
3: बिल्कुल। लेकिन उस समय अगर मेरी सेफ्टी कॉम्प्रोमाइज हो गई क्योंकि मैं शांत होने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उस वक्त अगर मैं अग्रेसिव हो जाऊँ उसमें दिक्कत है?
4: चिल्लाने से सेफ्टी होती है। आज आपका ड्राइवर समझिए चिल्ला रहा है जोर जोर की, अपसेट है, थोड़ा सा अंदर से डिस्टर्ब है, आप बैठेंगे उस गाड़ी में?
3: बिल्कुल नहीं, बट मैं आपको सिचुएशन दे रहा हूँ जहाँ सामने वाला अग्रेसिव हो रहा है और जनता भी उसके साथ है। ऐसी सिचुएशन में मैं क्या करूं क्योंकि वो हमारी बात नहीं सुन रहे हैं?
4: हम अपना ही रोल प्ले कर सकते हैं
3: जी।
4: वो आपको डिसाइड करना है। अगर चिल्ला करके आपको अच्छा लगता है, कंफर्टेबल फील होता है, सारा दिन अच्छा बीतता है, यू आर एबल टू परफॉर्म, क्यों नहीं हम चिल्ला रहे हैं? उसके पीछे कारण है ना। हम अपनी बात कह रहे हैं, असर्टिवली भी कह रहे हैं, उसके बाद अगर कोई एक्शन लेना है तो वो भी ले रहे हैं। हम क्यों नहीं चिल्ला रहे हैं? क्योंकि वो हमारे मन को अशांत करता है।
3: एब्सोल्युटली।
4: और हमारा अशांत मन फिर हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा फोकस, हमारा कॉन्सेंट्रेशन, हमारे डिसीजन, हमारी क्लैरिटी, उस सब को इफेक्ट करता है। हमारी हेल्थ और रिलेशनशिप्स को भी करता है। सो वी आर चूजिंग, नॉट टू यू नो कॉम्प्रोमाइज विद माई स्टेट ऑफ माइंड, माई हेल्थ एंड माई रिलेशनशिप। इट्स अ चॉइस दैट आई एम मेकिंग।
3: राइट।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया। ओनली ऑन मिर्ची। It's hot.

मनुष्य के जीवन में आध्यात्म का अपना विशेष महत्व है। हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस महत्व को समझ कुछ विशेष मंत्रों, श्लोकों एवं प्रार्थनाओं की रचना इस उद्देश्य से की थी कि मनुष्य जीवन की जटिलताओं के बीच अपने जीवन पथ को सहज सरल बना सके, अपने आराध्य और अपने बीच की दूरी मिटा सके। हिमालयन चांस में संग्रहित श्लोक एवं प्रार्थनाओं को आपने विभिन्न धार्मिक आयोजनों के अवसरों पर घर परिवार में नियमित पूजा पाठ के लिए अवश्य ही सुना होगा। इनके द्वारा पढ़ने वाले मन मस्तिष्क पर प्रभाव का अनुभव भी किया होगा। प्रत्येक घर परिवार के लिए ये एल्बम निश्चित रूप से संग्रहणीय, उपयोगी एवं धार्मिक रुचि पैदा कर घर में भक्तिभावपूर्ण वातावरण का निर्माण करने में सक्षम है। श्रद्धा भक्ति के साथ सस्वर उच्चारित श्लोकों एवं प्रार्थनाओं का ये संगीतमय संग्रह श्रद्धालु सज्जनों को आत्मिक संतोष प्रदान करेगा, हमारा ऐसा विश्वास है।

0: चार्ज मॉर्निंग ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: जब सामने वाले के गुस्से को लोग सपोर्ट करने लगे तब बिना अपना संतुलन खोए उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करें, आइए जानते हैं।
4: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
5: ये रियल लाइफ सिचुएशन है जो आज सुबह मेरे साथ हुआ, और सामने वाला चिल्ला रहा है और जनता उसके साथ खड़ी है और मेरी कोई सुन नहीं रहा। तो ऐसी सिचुएशन में जब मैं देख रहा हूँ यार, अब मेरी सेफ्टी पे भी बात आ सकती है क्योंकि ये तो उसको मार देंगे, मारपीट वाली बात आ जाएगी, और मेरी बात कोई सुन नहीं रहा है क्योंकि मैं शांति से
6: आप इसको कह रहे हैं कि मैं शांति नहीं, पर थोड़ा सा अग्रेसिव या थोड़ा सा चिल्लाना या डिफरेंट मेथड हम यूज करें,
5: क्या करें,
6: उससे कोई तो रिजल्ट निकलेगा ना
5: जी।
6: व्हेन आई एम चूजिंग अनदर वे उसमें कुछ बेनिफिट होगा तो ही तो हम चूज करेंगे। तो आपको उसमें क्या बेनिफिट दिखाई देता है
5: कि भाई ये झगड़ा सुलटे और आदमी आगे बढ़े?
6: पर आपको लगता है उसे झगड़ा सुलझ जाएगा?
5: ये वाला तो नहीं सॉल्व कर रहा।
6: लेट्स अज्यूम कि सुलझ जाता है, पहले तो होता नहीं है। हाँ। वो चीज और अग्रेशन में बढ़ करके कॉम्प्लिकेट हो जाती है। आई एम सेइंग लेट्स अज्यूम कि आपका जो अदर वे है उससे ये सुलझ जाता है एंड यू आर एबल टू मूव ऑन, देन ऑल्सो यू आर मेकिंग अ चॉइस कि आपके लिए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि जो उस समय पर अपनी स्टेबिलिटी, अपना रोल, अपनी वाणी डिग्निटी और रिस्पेक्ट से रहे वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। There is some profit outside, some loss inside, and the other way also. Sometimes there is profit inside, maybe loss outside. हमेशा आपने भी जैसे कहा perfect world तो है नहीं, तो at every moment we are choosing. So sometimes we are choosing our response, sometimes we are giving more priority to calm. वो जो work है वो हो जाना चाहिए. Either way it is okay. What is that you want?
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या राइटियस एंगर यानी किसी सही बात के लिए गुस्सा करना वाकई जरूरी होता है? आइए इस बारे में जानें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, इज देयर एनीथिंग कॉल्ड राइटियस एंगर, सही गुस्सा?
4: No, there's nothing like righteous anger. That is just a way of justifying your anger. Actually, righteous anger is being assertive.
3: जी,
4: see, anger is clearly a sign कि आपका अपने ऊपर control नहीं है. ये complete sign है कि आपका अपने anger क्या है, अंदर disturbed है. से पहले समझना है anger क्या है, कि कुछ मेरे अनुसार नहीं हो रहा है. तो मन अंदर पहले व्यर्थ सोच रहा है, there's negative thoughts, ऐसा क्यों करते हैं. फिर वो चीज वर्ड्स में निकल करके आ रही है, जो वर्ड्स आपके असर्टिव नहीं है, रूड है. आप रूड हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं, क्रिटिकल हैं, किसी को हर्ट करने वाले वो वर्ड्स हैं. और फिर एक्शन भी कुछ ऐसा ही होगा जो किसी को दुख देना या नुकसान वाला होगा, दैट इज एंगर. लेकिन आप अंदर स्टेबल हैं, बाहर असर्टिव हैं, बाहर कोई डिसिप्लिनरी एक्शन, वो बिल्कुल ठीक है, उसको आप एंगर की कैटेगरी में नहीं लेंगे. भले कोई कह भी दे कि इन्होंने शायद गुस्से में ये एक्शन लिया है, आप ही जज कर सकते हैं कि आप अंदर डिस्टर्ब्ड थे कि नहीं. अगर अंदर डिस्टर्ब्ड नहीं है और बाहर हम कोई रोल प्ले कर रहे हैं, जैसे आज युद्ध के मैदान में भी लोग खड़े हैं,
3: हाँ बिल्कुल,
4: तो वो युद्ध कर रहे हैं, गन चला रहे हैं, कितनों को मार रहे हैं, पर वो ऐसा थोड़ी ना है कि हर समय अंदर से अग्रेसिव और एंग्री रहते हैं. आई मीट लॉट ऑफ पीपल, वेरी सीनियर पीपल, इवन इन द आर्मी, इवन इन अदर फोर्सेस, जो अंदर से बिल्कुल काम है, तब भी वो उस समय डिसीजन ले पाते. उनकी इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतने ट्रूप्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इतने कम समय में उनको बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने होते हैं. वो काम माइंड ही ले सकता है. अंदर काम है, बाहर युद्ध कर रहे हैं, दैट इज आल्सो ओके, क्योंकि बाहर आप अपना रोल प्ले कर रहे हैं.
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट.

0: Mirchi Recharge Mantra with Vishal Sethia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: क्या डिसिप्लिन या कंस्ट्रक्टिव फीडबैक के लिए गुस्सा करना सही है या उससे बेहतर कोई और तरीका हो सकता है, आइए समझें।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: सिस्टर, जब गुस्से की बात आती है, एंगर की बात आती है, तो आप हमेशा कहती हैं कि अंदर मन शांत होना चाहिए, बाहर अगर आपने थोड़े अग्रेसिव टोन ले भी लिया तो ठीक है, एज लॉन्ग एज योर माइंड इज नॉट गेटिंग डिस्टर्ब्ड। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अग्रेसिव एंगर या कंस्ट्रक्टिव एंगर जिसको हम बोलते हैं, बहुत जरूरी होता है। फॉर एग्जाम्पल, पेरेंटिंग में कई बार कहते हैं कि भैया अगर हम अपने बच्चों को डिसिप्लिन नहीं करेंगे तो दुनिया कर देगी। तो ताकि हम अपने बच्चों का ख्याल रख पाएं और उनको जिंदगी के लिए, दुनिया के लिए रेडी कर पाएं, सोसाइटी के लिए रेडी कर पाएं, हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो, और डिसिप्लिन करना नॉर्मली, जैसे पहले बोलते थे स्पेयर द रॉड स्पॉइल द चाइल्ड, तो भाई कैपिटल पनिशमेंट और मारपीट की बात नहीं हो रही है, लेकिन कई बार डिसिप्लिन करने में गुस्से में बोलना, जोर बोलना, डांटना, ये बहुत आम बात है और इसको गलत नहीं माना जाता। तो कंस्ट्रक्टिव एंगर, जिसको मैं राइटियस एंगर भी कभी कभी बोलता हूँ, ये क्या वाकई में एग्जिस्ट करता है या इसका भी कोई दूसरा तरीका है?
4: एक्चुअली एंगर एंगर होता है और वो हमारे किसी भी स्क्रिप्चर के अंदर आप देख लें, वो विकारों के अंदर आता है
3: जी,
4: काम क्रोध लोभ मोह अहंकार
3: जी,
4: विच मीन्स वो आपकी सोल को डिप्लीट ही करेगा।
3: अच्छा।
4: और सामने वाले के सोल को भी डिप्लीट ही करेगा।
3: राइट।
4: अगर आपको डिसिप्लिन करना है तो उसके कई तरीके हैं। डिसिप्लिन करने के लिए आपको गुस्सा करना है, गुस्सा सामने वाले में फियर क्रिएट कर सकता है, टेम्पररी आपका काम हो सकता है
3: जी।
4: लेकिन फिर भी आप उसको नेगेटिव एनर्जी भेज रहे हैं, इसलिए कभी कभी रिश्तों के अंदर फिर बाद में दूरी आ जाती है।
3: सही बात है।
4: जहाँ पर डर होता है ना, तो फिर वहाँ पे रिश्ते धीरे धीरे दूरी, आप सब कुछ नहीं बोल पाते। ये हो सकता है कई बार एंगर, क्यों उसको हम अच्छी लाइट में देख लेते हैं कि कभी कभी जब हमें पता होता है कि सामने वाले का हमारे से बहुत प्यार है, तो उसकी फिर स्ट्रॉन्ग टोन भी हमें इतनी फील नहीं होती, हम लेट गो कर पाते हैं।
3: इसलिए 80s और 90s में जो बच्चे पले बड़े हैं, वो हमेशा कहते हैं कि हमारे माँ बाप ने हमें मारा भी, पीटा भी, डांटा भी, लेकिन आज हम शुक्र गुजार हैं कि उन्होंने हमें इंसान बना दिया।
4: दैट इज बिकॉज मे बी सी मेथड तो वो राइट नहीं हम कह सकते हैं, क्योंकि अगर वो, देखो कोई चीज राइट है तो वो हर हमेशा राइट होनी चाहिए। वो फिर टीचर को भी अलाउ होना चाहिए, हर जगह अलाउ होना चाहिए, पर होता क्या है, 90% उनका प्यार होगा एंड दैट इज वेरी वेरी अनकंडीशनल, बहुत शुभ भावना है, बहुत शुभकामना है, इंटेंट के अंदर भी प्योरिटी है। तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो मेथड नहीं भी ठीक था, आप उसको लेट गो कर पाते हैं, क्योंकि जो अच्छा है उसका वेट बहुत ज्यादा होता है
3: जी।
4: बाकी तो अगर आपको डिसिप्लिन भी करना है, आप वही चीज प्यार से करते हैं तो स्वामान बना रहता है। कई बार जब हम डांट करके करते हैं या ये मेथड यूज करते हैं, तो कई बच्चों का स्वामान, सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, फिर वो धीरे धीरे कम होता है, आप सोचें कि फिर वो बढ़ जाए अचानक, वो ऐसे होता नहीं है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
2: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर, आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
3: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
4: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
3: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
5: Positivity koi location thodi hai ki map pe dala aur pahunch gaye. It's a journey. Chalo is journey pe with Mirchi Recharge Mornings. Subah 6 se 8. Only on Mirchi, it's hot.

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: क्या बच्चों की परवरिश बिना गुस्से के भी असरदार तरीके से की जा सकती है, आइए जानते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: एक रियल लाइफ सिचुएशन आपको मैं देता हूँ, आप मुझे बताइए कि इसमें क्या करना चाहिए। तो एक घर है, मेरा ही घर मानिए, और मेरे पास एक लेट से पेट है, एक डॉग है, और मेरी एक बेटी है जो उस पेट के साथ सिबलिंग्स की तरह व्यवहार करती है, उसके साथ खेलती है, उसको रुलाती भी है, उसको कभी कभी छेड़ती है ज़बरदस्ती की, और वो गुस्सा भी होती है। तो क्या होता है कि आप एज अ पेरेंट कभी कभी उसको बोलते हैं कि इसको मत छेड़ा करो, बेचारा जानवर है, बोल नहीं पाता, तो आपको नहीं पता कि ये परेशान हो रही है नहीं, लेकिन बच्ची है वो भी, जो मेरी बेटी है वो भी लेट से 14-15 साल की टीनेजर है, उसको कई बार ये बारे में बात बोल चुके हैं हम, और शांति से बोल चुके हैं, प्यार से बोल चुके हैं, हर बार प्यार से ही बोलते हैं, और आप हमेशा कहते हैं कि जब भी कुछ बोलो तो थोड़ा समय दो, ओवरनाइट तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन ये लेट्स से व्यवहार हम 1-1.5-2 साल से देख रहे हैं, वो चेंज नहीं हो रहा। ऐसे केस में आप चाहते हैं कि पेट का भी नुकसान नहीं हो और बेटी भी समझ जाए, क्या किया जाए?
4: आपके पास ऑप्शन है, जैसे आपने कहा आप आराम से कर रहे हैं, 2 साल भी हो गए नहीं हुआ, अब आप दूसरा ऑप्शन चूज करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी काम है, आप चाहते हैं वो हो जाए, इट इज ओके इफ दैट इज व्हाट यू वांट।
3: व्हाट इज दैट वांट? बिकॉज़ द ओनली अदर ऑप्शन दैट कम्स टू माय माइंड इज टू फिजिकली सेपरेट देम, या उसको बोले कि तुमको कितनी बार बोला है, नहीं समझ में आ रहा है, तो दूसरा ऑप्शन क्या है जिससे ये भी जो दिमाग है वो भी ना हिले और काम भी हो जाए?
4: हर बार काम हो जाएगा जरूरी नहीं है।
3: अच्छा,
4: यस एब्सोल्युटली, आप सोचे कि हम गुस्सा ना करें और तो भी हर बार हमारा काम हो जाए, वो जरूरी नहीं है।
3: अच्छा,
4: पर आप चूज कर रहे हैं, फिर भी आप चूज कर रहे हैं कि मेरे लिए प्रायोरिटी काम है या मेरा स्वभाव है, मेरी सेहत है या मेरे रिश्ते हैं, हो सकता है उसके बाद भी वो काम ना हो। आई एम नॉट सेइंग ये करना चाहिए, वी विल नेवर सिट हियर एंड से ये करना चाहिए या ये नहीं करना चाहिए।
3: सही बात है।
4: इसका ये नुकसान है, ये फायदा है, इसका ये नुकसान है, ये फायदा है, आप डिसाइड करें।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
1: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
0: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
1: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
2: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
3: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
2: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
0: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
1: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
0: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़लिन।

0: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: It's 7:30 AM. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर सीमा जैन का सवाल आया है कि अगर लाइफ में सभी लोग हमारे खिलाफ हों तो ऐसे समय में हमें लाइफ कैसे जीनी चाहिए।
3: थोड़ा सा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए कि सब अगेंस्ट क्यों है। ये बात तो मैं समझ सकती हूँ कि हम कुछ भी करते हैं तो कई लोग हमारे फॉर होते हैं, कहीं अगेंस्ट होते हैं, कहीं सहयोग देते हैं, कहीं नहीं देते हैं, व्हिच इज ओके। सारे अगेंस्ट होते हैं तो कई बार हो सकते हैं हमारे अंदर भी फॉल्ट है और हम शायद उसको एक्नॉलेज नहीं करना चाहते। सारे अगेंस्ट होना थोड़ा सा बड़ी बात हो जाती है, ताकि ये जरूर है कि आप कभी भी कुछ करते हैं तो कुछ अग्री करेंगे, कुछ डिसअग्री करेंगे, दैट इज वेरी नॉर्मल एंड नेचुरल।
2: बिल्कुल।
3: और अग्री डिसअग्री एक अलग बात होती है, अगेंस्ट अगेंस्ट तो ज्यादा हो जाता है ना। तो इसलिए थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करें क्यों वो अगेंस्ट हैं, अपनी बात उनको समझाने की कोशिश करें। देखो, हर चीज में लोगों की दुआएं भी सफलता दिलाती हैं।
2: जी बिल्कुल।
3: उनका हमारे से संतुष्ट होना भी जरूरी है। हम सही कर रहे हैं, हम सबको संतुष्ट नहीं कर सकते, पर कम से कम हम उनको कन्विंस करने के तो कोशिश करें। अगर वो हमारे अगेंस्ट है तो हो सकता है कि कुछ हमारे अंदर भी फॉल्ट हो, तो रियलाइज करके चेक करके चेंज करने की जरूरत है।
0: रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
1: सुजीत ने सवाल भेजा। सिस्टर, कहते हैं कि विद्यालयों में हमें सिखाया जाता है कि जीवन में नैतिकता और कर्म बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन जब छोटे छोटे बच्चे, मासूम बच्चे, जन्म से गंभीर बीमारियां होती हैं उनको, उनके साथ गलत घटनाएं हो जाती हैं कभी कभी, तो लोग पूछते हैं कि उस समय परमात्मा कहाँ होते हैं। जब बच्चे सही गलत भी नहीं समझते, उनके साथ ऐसे कर्म होते हैं तो क्यों होते हैं? क्या वो उनके कर्मों का परिणाम है या परमात्मा की इच्छा है? वो ऐसे सवाल उठने पर लोगों को क्या समझाया जाए ताकि वो परमात्मा को दोषी ना ठहराएं और सही दृष्टिकोण समझ सके।
2: जब भी कुछ ऐसा होता है तो एक्चुअली हमें उस बच्चे के लिए दुख होता है। हमारा जो एक नेचुरल संस्कार है वो कंपैशन है, रहम है। किसी के साथ भी बुरा होता है तो हमें अच्छा नहीं लगता है।
1: बिल्कुल।
2: लेकिन फिर ये भी एक सत्य है कि जिसके साथ जो हो रहा है वो उसके कर्म का कॉन्सिक्वेंस है। बस फर्क ये होता है कि जब कॉस्ट्यूम बदल जाता है ना, तो हमें याद नहीं रहता। अगर वो उसी समय पर हो, जैसे अभी आज कोई बच्चा बारिश में खेल रहा है और वो कल बीमार हो जाए, तो आपको कभी आश्चर्य नहीं लगता। आप कहेंगे मुझे तो पता था कि ये होना है। अब ये छोटी बात है, कोई लंबा समय से हैवी ड्रिंकर होता है, फिर किसी दिन उसका लिवर खराब हो जाता है, 40 इयर्स के बाद होता है समझो, लेकिन आप फिर भी कहेंगे कि मुझे तो पता था, डॉक्टर ने भी कह दिया था। आपको सरप्राइज नहीं होता क्योंकि कॉज और इफेक्ट सामने सामने दिखाई दे रहा होता है। डिलेड भी है लेकिन सामने सामने दिखाई दे रहा है। पर कभी कभी कॉस्ट्यूम छूट गया। कर्म कॉस्ट्यूम ने नहीं किया है, कर्म आत्मा ने किया है। इसलिए पुण्य आत्मा पाप आत्मा कहते हैं, पुण्य शरीर पाप शरीर नहीं कहते। आज महात्मा गांधी जी ने बहुत अच्छे कर्म करे, देश को आजादी दिलाई। हम महात्मा शरीर नहीं कहते, महान आत्मा कहते हैं।
1: हाँ।
2: तो कर्म आत्मा करती है। आत्मा ने कॉस्ट्यूम अपना चेंज कर लिया, अब हमें नहीं दिखाई दे रहा क्या किया है। आज आपको इस सृष्टि पर लोग गलत गलत करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। किसी के साथ गलत होता हुआ दिखाई दे रहा है तो बहुत सारे गलत करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। काम के वश, क्रोध के वश, लोभ के वश गलत करते हुए दिखाई भी तो दे रहे हैं ना। और फिर ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो गलत करते करते शरीर छोड़कर चले जाते हैं। हम कहते हैं देखो सारा जीवन गलत किया, इनके साथ तो कुछ गलत हुआ ही नहीं। अब वो फिर किसी छोटे बच्चे के रूप में आता है और उसके साथ कुछ गलत होता है तो हम कहते इसने ऐसा क्या किया। But the only thing which is getting carried forward is karma. That is the truth. That's the only thing which is getting carried forward. But costume देखते हैं तो नहीं समझ में आता। Karma soul करती है। Soul is on the journey. इसे start ही carry forward से होता है।
3: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा with विशाल सेठिया and ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया। Only on मिर्ची। It's hot.

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: SFG Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning guys. क्या हाल चाल है? मैं हूँ Priscilla, तुम्हारे साथ में. ये है मिर्ची मॉर्निंग्स एंड ये अभी अभी शुरू हुआ है, तुम्हारा ऑफिशियल शो जहाँ पे तुम्हें बॉलीवुड की गॉसिप, फील गुड वाइब्स, गर्मा गर्म चाय से ज्यादा गर्मा गर्म खबरें फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड एंड ढेर सारे बॉलीवुड बैंगर्स मिलते हैं. देखो, लाइफ का स्नूज बटन जो है ना, वो सिर्फ अलार्म पे अच्छा लगता है, ड्रीम्स पर नहीं, काम पर नहीं. तो चाहे तुम फिलहाल किसी भी सिचुएशन में हो, मन नहीं कर रहा काम करने का, या फिर अभी भी थोड़ा सा टायर्ड फील कर रहे हो, गेट अप एंड गेट मूविंग, बिकॉज लाइफ किसी के लिए नहीं रुकती है, तो तुम क्यों रुकोगे. और अगले कुछ घंटों में तुम्हें मिलने वाला है म्यूजिक जो तुम्हें पुराना नॉस्टैल्जिया तो देगा, लेकिन आगे के फेवरेट सॉन्ग्स भी बताने वाला है. थोड़ी सी हंसी, थोड़ी सी मस्ती, थोड़ी सी बातें और ढेर सारी गुड वाइब्स के साथ शुरू करते हैं मिर्ची मॉर्निंग्स आज का शो. और अब मुझे फॉलो करो जाकर मिर्ची प्रिस, इज माई हैंडल नेम MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. मेरा नाम है Priscilla, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. लॉग ऑन टू lionmtg.com.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
6: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: Tera kya hoga, Kalia?
10: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
9: Ab, mirchi kha.
11: Radio Mirchi, it's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसिला और सुन रहे हो मुझे मिर्ची मॉर्निंग्स पर। और आज है 21st of July एंड लेट्स फाइंड आउट आज के दिन हिस्ट्री में क्या स्पेशल हुआ था। सबसे पहले चलते हैं 1798 में इजिप्ट नेपोलियन बोनापार्टे ने बैटल ऑफ द पिरामिड्स में अपनी स्मार्ट मिलिट्री स्ट्रेटजी से मामलुक आर्मी को हरा दिया। फिर 1861 में अमेरिका में फर्स्ट बैटल ऑफ बुल रन, जो सिविल वॉर की पहली बड़ी लैंड बैटल बनी, ये हुई थी। 1954 में जिनीवा कॉन्फ्रेंस खत्म हुआ और फर्स्ट इंडो चाइना वॉर ऑफिशियली एंड हुआ। वियतनाम दो हिस्सों में डिवाइड हुआ था। और फिर आया वो मोमेंट, यानी कि 1969 नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने मून पर पहला कदम रखा। इमेजिन व्हाट अ बिग फीट फॉर ह्यूमन काइंड। 1993 में कोलकाता में डेमोक्रेसी के नाम पर प्रोटेस्ट के दौरान जान गंवाने वाले लोगों की याद में आज शहीद दिवस भी मनाया जाता है। और 2008 में सालों तक फ्यूजिटिव रहने के बाद राडोवान कराचिक को अरेस्ट किया गया टू फेस चार्जेस बिफोर एन इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल। एंड दैट्स इट फॉर योर टाइम ट्रैवलिंग जर्नी। अभी फिलहाल तुम घर पर बैठे हो या फिर बाहर घूम रहे हो, फटाक से मुझे फॉलो करो। मिर्ची प्रेस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472444। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Islington.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
1: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटवे आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मा स्नेह भर्यु आमंत्रण आपे छे। शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ। शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति। 7323578200। जय गुरुदेव।
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.

0: इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
2: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स।
3: मिर्ची वॉच इट, मिर्ची वॉच इट।
2: सब लोग पूछ रहे हैं कि अरे रॉड्री ने तो एक गोल भी नहीं मारा, ना ही असिस्ट दिया, फिर वर्ल्ड कप का गोल्डन बॉल कैसे जीत लिया। सिंपल है, फुटबॉल सिर्फ गोल्स का गेम नहीं है, इट्स आल्सो अबाउट द प्लेयर जो पूरी टीम का इंजन बन सकता है। स्पेन के कैप्टन रॉड्री ने टूर्नामेंट में 747 पासेस कंप्लीट किए विद एन इनक्रेडिबल 93.4 एक्यूरेसी। मतलब इतनी टू द पॉइंट एक्यूरेसी कहां मिलती है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो 1803 प्लेयर्स में इन्वॉल्व रहे हैं पूरे टूर्नामेंट में, सबसे ज्यादा टचेस, सबसे ज्यादा टैकल्स और डिफेंसिव पावर रैंकिंग्स में भी नंबर वन। बेसिकली हर जगह रॉड्री ही रॉड्री छाए हुए हैं। तो लेसन ऑफ द डे है, कभी कभी असली हीरो वो होता है जो स्पॉटलाइट में कम और इम्पैक्ट में सबसे ज्यादा होता है, फॉर ऑल द राइट reasons। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, थोड़ी सी देर में मिर्चीदार गाने आने वाले हैं तुम्हारे लिए। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: not Jeetu Raj. Jeetu Raj. Only on Mirchi. It's hot.
1: एंड आखिरकार ओडिसी लग गई है। न सिर्फ ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित डायरेक्टर में से एक जो माना जाता है क्रिस्टोफर नोलन, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, बल्कि 70mm आईमैक्स में फिल्म देखने की उम्मीद रखने वाले हम जैसे जो ऑडियंसेस है उनका भी स्वप्न था। एंड ओडिसी लग गई, जो एक ग्रीक
2: कविता है जो करीब 3000 सालों पहले लिखी गई थी, जो फिर कई कई अंग्रेजी कवियों ने अपनी अपनी तरह से ओडिसी को अपनाया है।
1: होमर का ये एंशियंट ग्रीक इतिहास पर्दे पर क्या शानदार होकर उतरा है, जहां पर मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, एन हैथवे, रॉबर्ट पैटिनसन, ज़ेंडाया और हिंदुस्तानी हिमेश पटेल भी नजर आता है इसमें। इसका मजा एक 70mm आईमैक्स थिएटर में ही देखकर आता है। एंड वैसे ही जाकर देखे, आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर कि ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है। कोई कितना भी पसंद करे क्रिस्टोफर नोलन को, फिल्म थोड़ी सी लंबी अवश्य हो जाती है। इनफैक्ट जीतूराज चूंकि हिंदुस्तानी सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है, आई मस्ट टेल यू कि इसके क्लाइमेक्स का आधा घंटा है वो देखते हुए मेरे को एक्चुअली लगा कि मैं कोई हिंदी फिल्म देख रहा हूं। ऑल्सो क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत ग्रांटेड लिया है अपने ऑडियंसेस को, वो ऐसे ग्रांटेड ले लिया है कि हर किसी को ओडिसी के बारे में मालूम होगा। आई वुड वांट टू बिलीव कि दुनिया में कई अंग्रेजी ऑडियंसेस भी होंगी जिनको शायद ओडिसी के बारे में सब कुछ नहीं पता है। तो ये गलती हुई है क्रिस्टोफर नोलन से। ऑल्सो फिल्म कई जगह पर बहुत धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये क्लासिक होते होते रह जाती है, ऐसे जीतूराज को एज ए रिव्यूअर लगता है। बट देन ऑल सेड एंड डन, इसके बावजूद भी ये फिल्म इज अ मस्ट वॉच फॉर द अल्टीमेट सिनेमा प्रेमी, वो जिसको सिनेमा बहुत अहम लगता है। ये एक स्टडी है, ये एक अभ्यास है, एंड आने वाली जनरेशन इस फिल्म को अवश्य याद करेगी। टीम मिर्ची की तरफ से इसे 3.5 मिर्चीज, 3.5 स्टार्स, ओडिसी एक बार अवश्य देखिए और अपना रिव्यू भेजें ऑन इंस्टाग्राम @ मिर्ची जीतूराज।
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington.
7: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
8: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
9: लिस्नर है, मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा,
10: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
11: ओनली ऑन 92.7 FM रेडियो मिर्ची, न्यू जर्सी, ऑल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और चलो देखते हैं कि आज मदर नेचर क्या कह रही है, यानी कि वेदर का क्या हालचाल है। अभी बाहर का टेम्परेचर हो रहा है 70 degrees Fahrenheit और स्काई जो है वो थोड़ा सा क्लाउडी है, लेकिन अम्ब्रेला को आज वर्क फ्रॉम होम मत देना। दोपहर 1 से 2 के बीच में रेन एक्सपेक्टेड है और 2 बजे के आसपास थंडरस्टॉर्म्स भी आ सकते हैं। मतलब आज लंच ब्रेक में बाहर जाने का प्लान एकदम कैंसिल कर दो। आज का टेम्परेचर रेंज रहेगा 69 to 83 degrees Fahrenheit, विच इज हाई, ऑलमोस्ट एग्जैक्टली लाइक कल के जैसा, लेकिन ह्यूमिडिटी की वजह से फील लाइक टेम्परेचर थोड़ा और ज्यादा फील होने वाला है। और एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, फ्लड वॉच इज इन इफेक्ट टिल वेंसडे 2 AM, बिकॉज आज 27 millimeters की बरसात एक्सपेक्टेड है। सो प्लीज कैरी योर अम्ब्रेलास विथ यू, सन प्रोटेक्शन SPF 50+++ के साथ वाला लगाओ और लेयर के प्लेयर बनो। और फिलहाल जाकर मुझे फॉलो करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: Hey there, good morning, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ and welcome to मिर्ची मॉर्निंग्स का आवर नंबर 2, जहाँ पर अब हम सुनने वाले हैं सबसे पहले नीट यूजी पेपर लीक इशू पर। इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एनडीए पार्लियामेंट मीटिंग में कहा है कि सरकार स्टूडेंट्स के साथ खड़ी है। उन्होंने पेपर लीक को घोर पाप बताया है और कहा है कि जिम्मेदार लोगों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, साथ ही फ्यूचर में ऐसे लीक्स रोकना सबकी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने कहा। नंबर 2 पर स्टूडेंट लेड ग्रुप कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से प्रोटेस्ट के बाद फाउंडर अभिजीत दिपके ने कहा है कि अगर गवर्नमेंट इंडिया पुलिस बात करना चाहे तो डिस्कशन जंतर मंतर में हो। ग्रुप ने अपनी डिमांड्स अथॉरिटीज को सबमिट कर दी है और एजुकेशन रिलेटेड अकाउंटेबिलिटी की भी बात उठाई जा रही है विद डिमांड फॉर द रेजिग्नेशन ऑफ द एजुकेशन मिनिस्टर। एंड नंबर 3 पर नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी कि NHRC ने एक इंक्वायरी ऑर्डर की है आफ्टर क्लेम्स दैट अ 12 ईयर ओल्ड गर्ल वॉज इंजर्ड ड्यूरिंग द प्रोटेस्ट मार्च। कमीशन ने अथॉरिटीज को चाइल्ड को लोकेट करके जरूरी मेडिकल हेल्प देने को कहा है, साथ ही ये भी कहा है कि अगर क्लेम गलत पाए जाते हैं तो उसके लिए भी अप्रोप्रिएट एक्शन लिए जाएंगे। दैट्स इट फॉर मिर्ची आवर के 3 विद मी प्रिसिला ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। कनेक्ट विद मी इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
3: द कॉलेज ऑफ हेल्थ साइंसेज ऑफर्स वेरियस डिग्रीज एंड सर्टिफिकेशंस इन फार्मेसी टेक, मेडिकल बिलिंग एंड कोडिंग, ईकेजी एंड फ्लेबोटमी, मेडिकल असिस्टेंट एंड मेनी मोर इन डिमांड हेल्थ केयर करियर्स.
2: गेट क्लिनिकल एक्सपीरियंस एंड जॉब असिस्टेंस एट द मोस्ट रेप्यूटेड हॉस्पिटल्स एंड मेडिकल सेंटर्स. ट्रेनिंग इज प्रोवाइडेड ऑनलाइन एंड ऑन कैंपस. फॉर एनरोलमेंट कॉल 9088222002 और विजिट aimseducation.edu.
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: Pyari brides, kya dhoond rahi ho apna dream wedding lehenga? To aa jaiye Miss India Bridal Store.
6: Miss India laaye hai latest bridal lehengas, exclusive reception aur party wear dresses and grooms ki sherwanis.
5: Visit us at 79 Middlesex Avenue, Iselin.
7: Iselin, New Jersey. Yes, you heard that right. That's the brand new Joy Alucas destination in the USA. Be among the first to celebrate our grand opening with an unbeatable inaugural offer of flat 30% off on making charges. Shop before 19th July and receive assured gifts with every purchase. Visit us at 42 Marconi Avenue, Iselin, New Jersey and discover exquisite collections crafted for every celebration. Inaugural offer valid until 26th July 2026. TNC apply. Joy Alucas, world's favorite jeweler.
8: तेरा क्या होगा कालिया?
9: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
8: अब मिर्ची खा.
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसिला और ये है मिर्ची मॉर्निंग्स। एंड मैंने तुम्हारे गानों पर फुल स्टॉप इसीलिए लगाया क्योंकि गाने की एक बात बताने वाली हूँ मैं तुम्हें, एक्चुअली सिंगर के बारे में। अरिजीत सिंह इज ऑफिशियली बैक टू प्लेबैक सिंगिंग। याद है जब उन्होंने इस साल जनवरी में प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट अनाउंस की थी, वो मैंने तुम्हें बताया था, फैंस के कलेक्टिव रिएक्शन थे, यार ये कौन सी प्ले लिस्ट है, कौन सा प्लॉट ट्विस्ट है, कैसे जियेंगे, ब्रेकअप के थ्रू कैसे सर्वाइव करेंगे। वेल, गुड न्यूज ये कि अरिजीत सिंह इज रिटर्निंग विद अ सॉन्ग ये आवारापन फॉर नन अदर देन इमरान हाशमीज upcoming film Awarapan 2. Once again teaming up with filmmaker Vishesh Bhatt aur song release ho raha hai aaj yani ki 21st of July ko. Sach batau, Bollywood without Arijit Singh's voice feels like chai without adrak. Hai to chai lekin maza nahi aa raha hai. Ab dekhna ye hai ki ye gana kitne time tak logon ke late night playlist ya breakup playlist ka ya kisi bhi playlist ka hissa bana rehta hai ya phir permanently sirf shower concert mein bana rahega. What do you think about it? Let me know. DM करो मुझे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इज़िलिन।
4: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
5: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स। गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इज़िलिन, न्यू जर्सी। कंडीशंस अप्लाई।
6: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
7: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
6: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इज़िलिन।
8: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
9: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
8: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
10: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
11: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
10: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
12: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
10: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
13: एक ही होता है।
10: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची। बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और सबसे पहले एक बिग फैट हैप्पी बर्थडे टू यू जो भी आज अपना हैप्पी बर्थडे मना रहे हैं, सारे लोगों को ढेर सारी विशेस, ढेर सारा सक्सेस, ढेर सारा प्यार, चाहे ऑफिस जाना हो, समर क्लासेस जाना हो, या फिर बस घर पर केक का सेकेंड स्लाइस फिलहाल खा रहे हो, आज तुम्हारा दिन है, सो स्माइल बैक थोड़ा सा एक्स्ट्रा वाइड एंड कैलोरीज को काउंट मत करो आज के दिन, एटलीस्ट हम तो यही मान के चलते हैं। तो अब तुम्हारे बर्थडे को तुम किसके साथ शेयर करो? सबसे पहले वी गॉट द हार्टथ्रॉब फ्रॉम द अर्ली 2000s, जॉश हार्टनेट, साथ साथ में जूनो टेम्पल, एंड वी ऑल्सो हैव रोमियो सैंटोस, द किंग ऑफ बचाटा, एंड द लेजेंडरी कैट स्टीवंस या यूसुफ इस्लाम, जिनकी टाइमलेस म्यूजिक आज भी जनरेशंस को कनेक्ट करवाती है। और बर्थडे गैंग में है कॉमेडियन जॉन लॉविट्स, एक्टर सिंगर शार्लेट गेन्सबर्ग, सुपर मॉडल सारा सैम्पायो और एक्टर रोरी कल्किन, ये सब आज तुम्हारे बर्थडे स्क्वाड में शामिल है। ऑफ कोर्स एज इज जस्ट अ नंबर, असली टेंशन ना कैंडल को केक पर लगाना का होता है। मुझे अपने बर्थडे विशेस और शाउट आउट भेज सकते हो तो मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzelin.
5: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Izzelin, New Jersey. Conditions apply.
0: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Alright, मेरा नाम है प्रिसिला, सुन रहे हो मिर्ची मॉर्निंग्स और अब सुनने वाले हो गोल्ड का लेटेस्ट रेट.
2: Wishes everyone happy and healthy morning. Gold reading at $4,060. $4,060 पर ट्राउंस के साथ आज गोल्ड की प्राइस थोड़ा सा बट ट्रेंड पर है. राज ज्वेल्स के साथ आके गोल्ड में इन्वेस्ट करें, जहां 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, सर्टिफाइड कलरलेस डायमंड ज्वेलरी एंड GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड्स आपके लिए 0% जीरो डाउन पेमेंट के साथ बहुत इजी फाइनेंसिंग 9 मंथ बिना किसी हिडन फी की ऑप्शन के साथ अवेलेबल है. आप अगर अपना पुराना गोल्ड ट्रेड करना चाहें, बेस्ट रिटर्न एक्सचेंज वैल्यू जिसमें आप अपना पुराना सोना कैरेटोमीटर के साथ टेस्ट कराते हुए ज्वेलरी की एक्सचेंज वैल्यू फुल 22 कैरेट गोल्ड का प्राइस एक्सचेंज में ले जा सकते हैं. ज्वेलरी कहीं की भी हो, किसी भी कंट्री, किसी भी ज्वेलर से खरीदी हो, राज ज्वेल्स के साथ आप एक्सचेंज कर सकते हैं. आइए गोल्ड में इन्वेस्ट करें राज ज्वेल्स की टीम के साथ. थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग.
1: तो सुना तुमने गोल्ड का लेटेस्ट रेट अपडेट मेरे यानी कि प्रिसिला के साथ ओनली ऑन

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हाय, गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, एंड दिस इज मिर्ची आवर का 3 ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहले टेंशन्स बिटवीन ईरान एंड द यूनाइटेड स्टेट्स हैव एस्केलेटेड फर्दर। ईरान प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान डिस्क्राइब्ड द सिचुएशन एज अ फुल स्केल वॉर। व्हाइल मिलिट्री एक्शन हैज कंटिन्यूड ऑन बोथ साइड्स, द पेंटागन सेज अराउंड 100 US सर्विस मेंबर्स हैव बीन इंजर्ड इन स्ट्राइक्स since early July, with most having returned to duty. It's a fast-moving situation and officials continue to monitor developments. Number two, per social activist Sonam Wangchuk, who has been on a hunger strike for students in India, received relief from the Delhi High Court. The court says he might be shifted to a hospital of his choice. A doctor told the court that his current medical condition is being monitored. And number three, per India may need paper leak ko lekar protests or discussion कंटिन्यू किए जा रहे हैं। स्टूडेंट ग्रुप एंड कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर मंतर से पार्लियामेंट मार्च के बाद अपनी डिमांड्स अथॉरिटीज तक पहुंचाई है। इस बीच अलग अलग पॉलिटिकल लीडर्स और पब्लिक फिगर्स ने अपने रिएक्शन दिए हैं, जबकि डायलॉग और अकाउंटेबिलिटी की बात अभी भी सामने आ रही है। एंड द डिस्कशन अराउंड द नीट पेपर लीक कंटिन्यूज इन इंडिया। स्टूडेंट्स लेड प्रोटेस्ट हैव ड्रॉन लार्ज क्राउड्स इन दिल्ली एंड सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया, एंड सेवरल पॉलिटिकल leaders and public figures have expressed their views. Meanwhile, authorities and political representatives continue discussions and the matter remains under public and legal scrutiny. Leader of opposition Rahul Gandhi and Priyanka Gandhi protest outside PM Narendra Modi's house and demand his resignation. And that's it for Mirchi Hour Ka 3. Main hu Prisala tumhare saath mein. Connect with me Insta or X pe, mera handle name hai Mirchi Pris and WhatsApp ka number hai 9033 Mirchi. That's 9033-647-244. Stay tuned and stay hot.

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
3: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन।
4: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
5: दे सेल नेचुरल डायमंड्स बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
4: डोंट फॉरगेट लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
6: Oh no!
7: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट। ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
8: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
9: Listener mein back to back gana sunega.
10: Back to back gana sunega.
9: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, stop scrolling. And now universe ka message sunne ka time aa chuka hai. Mera naam hai Priscilla. This is Rashi Zone Part 1 on Mirchi Mornings.
2: Mirchi Rashi Zone.
1: It is Yanaki Mesh Rashi. Aaj life tumse keh rahi hai, new road try karo. Safe option tempting lagega, lekin naya path hi naye doors kholega. Lucky color for you is bright yellow. Lucky number is 11. Taurus Yanaki Vrishabh Rashi. Dusre ki plate mein dessert hamesha bada lagta hai, lekin aaj tumhe realize hoga jo tumhare paas hai wo bhi kafi sweet hai. Gratitude always wins. Lucky color for you is black. Lucky number is 24. Gemini Yani Mithun Rashi. एक दोस्त का क्रेजी आइडिया आज गोल्ड माइन बन सकता है. सुनो, सोचो और फिर डिसाइड करो. कभी कभी व्हाट इफ भी वाओ बन जाता है. लकी कलर फॉर यू इज एक्वा ब्लू. लकी नंबर इज 5. कैंसर यानी कर्क राशि. अट्रैक्टिव ऑफर मिल सकता है, लेकिन फ्री चीज सिर्फ माउस ट्रैप में होती है. फाइन प्रिंट जरूर पढ़ लेना, स्पेशली मनी मैटर्स. लकी कलर फॉर यू इज अल्यूमिनियम एंड लकी नंबर इज 16. लियो यानी कि सिंह राशि. आज तुम्हारा ब्रेन फुल HD मोड में है. एक ब्रिलियंट आइडिया आ सकता है तुम्हें, और जब भी वो आए उसे नोटबुक या नोट्स ऐप में रेडी रखो. ओरिजिनलिटी इज योर सुपर पावर. लकी कलर फॉर यू इज रेड. लकी नंबर इज 33. वर्गो यानी खनिया राशि. कंफ्यूज्ड हो, चिल, डायरेक्शन मिलने वाली है. बस ओवरथिंकिंग का वॉल्यूम थोड़ा सा कम करो. GPS ऑफ द यूनिवर्स इज रिकैलकुलेटिंग. जस्ट हैव पेशेंस. लकी कलर फॉर यू इज वायलेट. लकी नंबर इज 8. And that's it for Mirchi Rashi Zone Part 1. बाकी की बची 6 राशियों को लेकर आती हूँ थोड़ी सी देर में. तब तक के लिए तुम मिर्ची दार बैंगर सुनो और जाकर मुझे फॉलो करो. Mirchi Pris is my handle name on Instagram and X. And WhatsApp पर मेरा नंबर है 9033 Mirchi. That's 9033647244. Stay tuned and stay hot.

0: gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
3: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
2: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
3: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
4: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
5: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
6: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
7: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
6: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
4: एंजॉय योर गोल्डन डेज विद कल्याण ज्वेलर्स। गेट अप टू 50% ऑफ ऑन मेकिंग चार्जेस। विजिट कल्याण ज्वेलर्स एट ओक ट्री रोड, इजलिन, न्यू जर्सी। कंडीशंस अप्लाई।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: All right, welcome back to Mirchi Rashi Zone Part 2. My name is Priscilla and this is Mirchi Mornings.
2: Mirchi Rashi Zone.
1: लीब्रॉय यानी कि तुला राशि क्रिएटिव प्रोजेक्ट नेक्स्ट लेवल पर ले जाओ. सेफ मत खेलो यार, थोड़ा सा ड्रामा, थोड़ा सा केओस क्रिएट करो. इट विल क्रिएट स्पार्कल इन योर लाइफ. कभी कभी रिस्क ही स्टैंडिंग ओवेशन लाता है. लकी कलर फॉर यू इज पीच. लकी नंबर इज 27. स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि स्मार्ट थिंकिंग वो भी बहुत जरूरी है. आज अपनी इंट्यूशन को इग्नोर बिल्कुल मत करो. तुम्हारा सिक्स्थ सेंस जो है वो ओवर टाइम पर लगा हुआ है. लकी कलर फॉर यू इज मरून. लकी नंबर इज 41. सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, सब कुछ करने की जरूरत ही नहीं है. फोकस ही आज का मैजिक वर्ड है. वन टारगेट एंड फुल पावर. लकी कलर फॉर यू इज सनशाइन येलो. लकी नंबर इज 9. कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, कोई न्यूज पहले थोड़ी सी नेगेटिव लग सकती है लेकिन स्टोरी का सेकेंड हाफ अभी बाकी है मेरे दोस्त. पॉजिटिव एंगल ढूंढो, प्लॉट ट्विस्ट आ सकता है तुम्हारी लाइफ में. लकी कलर फॉर यू इज नेवी ब्लू. लकी नंबर इज 18. अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, गुड बाय फाइनली नॉक कर रही है तुम्हारे दरवाजे पर. अच्छी चीजें आ रही है तुम्हारी लाइफ में तो गिल्ट को लीव पर भेज दो यार. यू डिजर्व एवरी बिट ऑफ हैप्पीनेस दैट्स कमिंग योर वे. लकी कलर फॉर यू इज टील. लकी नंबर इज 36. पाइसीज यानी कि मीन राशि, थोड़ी एंजाइटी फील हो सकती है बट डोंट यू पैनिक बेबी. आज की मेहनत कल का सेलिब्रेशन बन सकती है. फ्यूचर यू विल एक्चुअली थैंक द प्रेजेंट यू. लकी कलर फॉर यू इज पीच. लकी नंबर इज 14 एंड दैट्स इट फॉर मिर्ची राशि जोन पार्ट 2. मेरा नाम है प्रिसिला, शो का नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स. फटाक से मुझे फॉलो कर लो. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS. व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: साथ जीतू राज, only on मिर्ची इट्स हॉट।
1: एंड आखिरकार ओडिसी लग गई है। न सिर्फ ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित डायरेक्टर में से एक जो माना जाता है क्रिस्टोफर नोलन, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, बल्कि 70mm आईमैक्स में फिल्म देखने की उम्मीद रखने वाले हम जैसे जो ऑडियंसेस है उनका भी स्वप्न था। एंड ओडिसी लग गई, जो एक ग्रीक
2: कविता है जो करीब 3000 सालों पहले लिखी गई थी, जो फिर कई कई अंग्रेजी कवियों ने अपनी अपनी तरह से ओडिसी को अपनाया है।
1: होमर का ये एंशियंट ग्रीक इतिहास पर्दे पर क्या शानदार होकर उतरा है, जहां पर मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, एन हैथवे, रॉबर्ट पैटिंसन, ज़ेंडाया और हिंदुस्तानी हिमेश पटेल भी नजर आता है इसमें। इसका मजा एक 70mm आईमैक्स थिएटर में ही देखकर आता है। एंड वैसे ही जाकर देखें, आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर कि ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है। कोई कितना भी पसंद करे क्रिस्टोफर नोलन को, फिल्म थोड़ी सी लंबी अवश्य हो जाती है। इनफैक्ट जीतूराज चूंकि हिंदुस्तानी सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है, आई मस्ट टेल यू कि इसके क्लाइमेक्स का आधा घंटा है वो देखते हुए मेरे को एक्चुअली लगा कि मैं कोई हिंदी फिल्म देख रहा हूं। ऑल्सो क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत ग्रांटेड लिया है अपने ऑडियंसेस को, वो ऐसे ग्रांटेड ले लिया है कि हर किसी को ओडिसी के बारे में मालूम होगा। आई वुड वांट टू बिलीव कि दुनिया में कई अंग्रेजी ऑडियंसेस भी होंगी जिनको शायद ओडिसी के बारे में सब कुछ नहीं पता है, तो ये गलती हुई है क्रिस्टोफर नोलन से। ऑल्सो फिल्म कई जगह पर बहुत धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये क्लासिक होते होते रह जाती है, ऐसे जीतूराज को एज अ रिव्यूअर लगता है। बट देन ऑल सेड एंड डन, इसके बावजूद भी ये फिल्म इज अ मस्ट वॉच फॉर द अल्टीमेट सिनेमा प्रेमी, वो जिसको सिनेमा बहुत अहम लगता है। ये एक स्टडी है, ये एक अभ्यास है, एंड आने वाली जनरेशन इस फिल्म को अवश्य याद करेगी। टीम मिर्ची की तरफ से इसे 3.5 मिर्ची, 3.5 स्टार्स ओडिसी। एक बार अवश्य देखिए और अपना रिव्यू भेजें ऑन इंस्टाग्राम @ मिर्ची जीतूराज।
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
6: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
5: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
6: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington.
7: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Islington, New Jersey. Conditions apply.
8: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
10: अब मिर्ची खा।
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: बस यार, आज का मिर्ची मॉर्निंग्स का सफर यहीं पर खत्म होता है, लेकिन मेरे यानी कि प्रिसिला के जाने से पहले एक फिल्मी माइक ड्रॉप मोमेंट तो बनता है, राइट? वो भी हॉलीवुड से। मार्वल की एवेंजर्स डूम्सडे ने रिलीज के पहले ही बॉक्स ऑफिस को सुपर हीरो पंच मार दिया है, वो भी हल्क के हाथ से। एडवांस बुकिंग्स के सिर्फ 12 घंटों में ही फिल्म ने 10.5 मिलियन डॉलर्स की प्री सेल्स कलेक्ट कर ली है। और ट्विस्ट देखो, उस वक्त 10% से भी कम शोज बुकिंग के लिए ओपन थे। मतलब इमेजिन करो, जब पूरा थिएटर खुल जाएगा, टिकट काउंटर्स पर बोला जाएगा कि भाई लाइन लगाने के लिए भी लाइन लगा लो। और हाँ, मूवी का रन टाइम भी कंफर्म हो गया है, 2 hours and 45 minutes की ये मूवी है। तो December 18th 2026 को पॉपकॉर्न बड़ा लेकर आना, क्योंकि मार्वल वाले क्लियरली कह रहे हैं कि बाथरूम ब्रेक्स कम एट योर ओन रिस्क। और इसी नोट पर मेरी तरफ से अभी के लिए एक ब्रेक, मिलूंगी तुम्हें कल सेम टाइम सेम प्लेस पर। अगर आज की मस्ती, गॉसिप और गुड वाइब्स तुम्हें पसंद आई हो तो मुझे फॉलो करो अगर तुम्हारा मन हो तो। मिर्ची प्रेस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप पर मेरा नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। प्रिसिला की तरफ से टाटा बाय बाय, यू बी गुड, खाओ पियो ऐश करो,

0: एक बात बताओ, बचपन में क्या आपका भी ख्वाब था कि आप बड़े साइज वाली चॉकलेट्स खाओ?
1: सारा जमाना है सारा का दीवाना।
2: मिड डे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
0: हाई, दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा, एंड नाउ यू ट्यून इन विद मी ऑन मिर्ची। आपको याद है एड्स में देयर यूज्ड टू बी चॉकलेट्स बिगर देन द यूजुअल, और मैं हमेशा चाहती थी कि यार इतना बड़ा चॉकलेट का जो स्लैब है ना, ये खाने को मिल जाए। पर जो एड्स के बड़े वाले चॉकलेट बार्स हुआ करते थे ना, वैसे दुकान पर कभी नहीं दिखते थे। लेकिन थैंक्स टू ग्लोबलाइजेशन, वी डू गेट टू सी बिग बिग चॉकलेट बार्स ऑन सिलेक्टिव स्टोर्स, जो आज भी जब देखती हूँ ना तो दिल बड़ा एक्साइटेड हो जाता है यार। वो अलग बात है कि यार बचपन में इस चीज को लेकर मैं इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी और बहुत चाहती थी कि मैं इतनी बड़ी चॉकलेट स्लैब्स खाऊं, लेकिन अब बड़े होने के बाद मैं कभी नहीं खरीदती इतने बड़े चॉकलेट स्लैब्स। एंड द रीजन बिहाइंड दिस बचपन का ख्वाब स्टिल अधूरा होना इज कि अब जब ये बड़े साइज के चॉकलेट्स मिलने लगे हैं ना, तो कैलोरीज और शुगर इनटेक का ज्ञान भी तो भरपूर आ गया है मार्केट में। और बस ये बड़े वाले चॉकलेट बार्स की जो भूख है, ये आज भी अधूरी है। और आपसे बात करते करते मुझे रियलाइज हो रहा है यार कि इसे ऐसा अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि शाहरुख खान ने कहा है कि किसको पता कल हो ना हो। मैं क्यों वेट कर रही हूँ कि जब मैं एक सर्टन साइज पे पहुंच जाऊंगी तब मैं वो चॉकलेट बार खाऊंगी? आई थिंक आई शुड जस्ट डू इट। आप क्या बोलते हो, वेट नहीं करना चाहिए ना? बस तो फिर आज ही कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव स्टोर पर जाकर ना इसको खरीदने की कोशिश करते हो। बाकी आप मुझे बताना जरूर, हाँ, डीएम करके और माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा, कि क्या आपको भी ऐसे शौक चढ़ा करते थे बचपन में कि यार ये बड़ा वाला चॉकलेट बार मैं भी खाऊं? बताना। अभी के लिए मिड डे मोहब्बत की गाड़ी को गियर में डाल रही हूँ, आपसे कहती हूँ यू स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
3: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इसलिन.
4: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
5: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
4: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए. इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री.
7: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन. देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस. अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप. लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस.
2: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155. दैट इज 732-339-3155.
8: इसलिन, न्यू जर्सी. Yes, you heard that right. That's the brand new Joy Alucard's destination in the USA. Be among the first to celebrate our grand opening with an unbeatable inaugural offer of flat 30% off on making charges. Shop before 19th July and receive assured gifts with every purchase. Visit us at 42 Marconi Avenue, Esalen, New Jersey and discover exquisite collections crafted for every celebration. Inaugural offer valid until 26th July 2026. TNT apply. Joy Alucard's, world's favorite jeweler.
9: Batting to kafi sare karte hain. विराट एक ही होता है.
10: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड.
9: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है.
11: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
9: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है, एक ही होता है. जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची मिर्ची. बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: आजकल तो बहुत स्टैंड अप कॉमेडी शोज आने लगे हैं यार, लेकिन क्या आपको इंडिया का पहला साइलेंट कॉमेडी टेलीविजन शो पता है कौन सा था? आओ चलो बताती हूँ।
0: मिर्ची पे टीवी दर्शन।
1: Hi, this is me, सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। एंड सब टीवी पर एक कॉमिक माइम शो शुरू हुआ था जिसका नाम था गुटुरगू। अब जब मैं बोल रही हूँ ना तो शायद आपको ये बात याद आ जाए, क्योंकि मुझे भी ये शो जो है ना कहीं अपनी सबकॉन्शियस में ही याद था जब तक इसका जिक्र नहीं हुआ था। एंड देन आई रियलाइज्ड कि अरे हाँ, ऐसा शो तो हम देखा करते थे, जिसमें देयर वाज अ सुनील ग्रोवर एंड शीतल मलिक, जहाँ सुनील ग्रोवर ने बालू कुमार का कैरेक्टर प्ले किया था। एंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द शो रिवॉल्व्ड अराउंड दीज कैरेक्टर्स, जो कि एक टिपिकल इंडियन हाउसहोल्ड में सेट होते हैं और वो अपनी पूरी की पूरी जिंदगी जो है वो जीते चले जा रहे हैं, लेकिन उस जिंदगी में जो खट्टी मीठी चीजें होती चली जा रही है, हंसी ठहाके लगते चले जा रहे हैं, वो किसी को सुनाई नहीं दे रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ दिखाई दे रहे हैं। यानी कि अगर आप इस शो के टाइम पर अपना टीवी म्यूट भी कर दो ना तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज इस शो के अंदर कॉमेडी पूरी की पूरी एक्सप्रेशन और जेस्टर्स के थ्रू ही पोर्ट्रे की जा रही थी। एंड आई एम श्योर दैट माइट बी वेरी वेरी टफ फॉर द एक्टर्स। ये शो जो था ये 3 सीजन तक चला, 189 एपिसोड टोटल इसने कंप्लीट किए, एंड इट इवेंचुअली बिकेम द लॉन्गेस्ट रनिंग साइलेंट कॉमेडीज एज वेल ऑन इंडियन टेलीविजन। क्योंकि इसके बाद मालेगांव का चिंटू करके भी एक साइलेंट कॉमेडी फॉर्मेट में शो आया था, लेकिन गुटरगू जो है वो इवेंचुअली पहला वो शो बना जो कि साइलेंट कॉमेडी टेलीविजन शो था। एंड सुनील ग्रोवर ने एक इंटरव्यू में खुद ये बात कही थी कि उनके एक्टिंग असाइनमेंट्स में से सबसे टफ वॉज गुटरगू द शो, बिकॉज ये शो पूरा का पूरा एक्सप्रेशंस पर ही रिलाई किया करता था, कोई पंचलाइंस कोई डायलॉग्स नहीं थे इस शो के अंदर, और एक्टर्स अक्सर मिरर के आगे अपने एक्सप्रेशंस रिहर्स किया करते थे, सो दैट परफेक्ट कॉमेडी टाइमिंग और फेशियल क्यूज जो है वो निकल कर आए। एंड अनलाइक द रेस्ट ऑफ द सिटकॉम्स, इस शो का जो एक एपिसोड था वो एक या दो दिन के अंदर नहीं शूट हुआ करता था, बल्कि 3 से 4 दिन लगा करते थे एक एपिसोड को शूट करने के लिए, क्योंकि हर एक एक्सप्रेशन और रिएक्शन इतना इंपॉर्टेंट था कि उसकी टाइमिंग सही हो, उसके अंदर ह्यूमर हो, कि यार बार बार टेक्स लेने पड़ जाते थे, और इस वजह से जो शूट टाइम था वो लंबा खिंच जाया करता था। लेकिन साउंड इंजीनियर्स जो थे वो इस शो के अंदर सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहे थे, मोर देन द राइटर्स, क्योंकि उनको वो कॉमिक इम्पैक्ट क्रिएट करना, वो साउंड इफेक्ट क्वर्की साउंड इफेक्ट्स देना, एट द राइट टाइम बैकग्राउंड क्यूज देना, वो सबसे ज्यादा जरूरी था, जो कि सिर्फ और सिर्फ साउंड इंजीनियर्स ही कर सकते थे। मान गए बॉस, हमारे इंडियन टेलीविजन ने अब तो कह सकते हैं कि क्या नहीं एक्सपेरिमेंट किया है, एक साइलेंट कॉमिक शो भी एक्सपेरिमेंट किया है। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: ਮੈਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਖਰੀਦਣੇ ਪਸੰਦ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ।
3: I enjoy using inefficient and complex software, mama.
4: अरे मुझे कोई ट्रैक करे मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्राइवेसी का चिंता ही नहीं है रे बाबा।
5: अगर आप इनमें से नहीं हैं, तो आपके बिजनेस के लिए Zoho One सही है। Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा बिजनेस चला सकते हैं। Yes, your entire business. Zoho One is easy to use, साथ साथ privacy और protection का भी बड़ा ध्यान रखता है। काम अनेक, सॉफ्टवेयर एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
6: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स। बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2।
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
9: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
10: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
9: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
11: अब मिर्ची खा।
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: क्यों ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
4: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
5: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
6: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
7: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
6: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मिशन कश्मीर जब शूट हो रही थी तो देयर वाज दिस टाइम जब शूट के दौरान सोनाली कुलकर्णी जो है वो डर के मारे बहुत ज्यादा नर्वस हो गई थी।
2: नब्बे की गप्पे।
1: हाय दिस इज मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा। अब हुआ यूं कि सोनाली ने एक इंटरव्यू में बताया कि जब उन लोगों को सीन्स मिला करते थे तो वो सीन जिस जिस जगह पर शूट होते थे उसी नाम से उस सीन का नाम हो जाया करता था। जैसे कि बालकनी में शूट हो रहा है तो बालकनी सीन, ड्राइंग रूम में हो रहा है तो ड्राइंग रूम सीन। अब एक सीन उनके पास एक दिन ऐसा आया जिस पे लिखा था बेडरूम सीन। सोनाली एकदम से चौंक गई कि बेडरूम सीन। और फिर जो मेकअप आर्टिस्ट थी उसने सोनाली को कहा कि भाई तुम तैयार हो यार, हो वैक्सिंग वैक्सिंग करवा रखी है तुमने, तो अच्छी सी मैक्सी वैक्सी पहननी होगी कोई सिल्क वाली, क्योंकि ये बेडरूम सीन है। सोनाली और ज्यादा नर्वस हो गई कि यार ऐसा सीन मुझे करना पड़ेगा संजय दत्त के साथ। इवेंचुअली जब ये सीन शूट हो रहा था एट दैट टाइम संजय दत्त ने सोनाली कुलकर्णी का ये जो अनकंफर्टेबल होने वाला बॉडी लैंग्वेज था ना वो नोटिस कर लिया, क्योंकि सोनाली बिल्कुल भी इन हर एलिमेंट नजर ही नहीं आ रही थी। फिर उसके बाद संजय दत्त ने सोनाली को अपने पास बुलाया और कहा बेटा देख तू इतनी नर्वस हो जाएगी तो मैं भी ये सीन नहीं कर पाऊंगा, और सीन में एक किस भी नहीं है तो तू नर्वस क्यों हो रही है। तब जाके सोनाली कुलकर्णी को थोड़ी जान में जान आई और इवेंचुअली ये सीन बहुत बढ़िया गया। और वैसे भी इस सीन में कुछ था नहीं, सिर्फ और सिर्फ नोकझोंक थी जिसमें पति बीवी को मनाने की कोशिश कर रहा था। हाउ स्वीट वॉज दैट यार। इसीलिए तो कहते हैं डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, और सोनाली ने यहाँ से ये भी सीख लिया होगा कि नेवर जज अ सीन बाय इट्स टाइटल। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Zara. Only on Mirchi. It's hot.
1: मैंने प्यार किया कि एक्ट्रेस भाग्यश्री को तो सब याद रखते हैं। उन्होंने हालांकि ज्यादा फिल्में की नहीं और एक हिट फिल्म उनकी मैंने प्यार किया जो हमें हमेशा याद रह गई। और आज भी जब हम भाग्यश्री को देखते हैं ना तो यही सोच रहे होते हैं कि यार मैंने प्यार किया को रिलीज हुए तो बहुत साल हो गए यार, इनकी एजिंग कब रिवील होने वाली है।
0: मिर्ची फिल्मी गुल्लक।
1: Hi, this is me, Sarah, आपकी 90s की यादों का पिटारा। And well, ये cute सी भाग्यश्री, आपको पता है मैंने प्यार किया है के बाद इन्होंने शादी कर ली थी अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड हिमालय के साथ, जो आज उनके हस्बैंड है। एंड इनफैक्ट आज भी ये कपल जो है ना, ये काफी इन लव दिखाई देता है, टच होट। लेकिन एट दैट टाइम जब इन दोनों ने शादी करी थी ना, तो ये बड़ी ड्रामेटिक सी शादी थी, बिल्कुल बॉलीवुड स्टाइल। क्योंकि हुआ ये था कि भाग्यश्री की जो फैमिली थी उन्होंने इनकी इस शादी को अप्रूवल नहीं दिया था, जिसकी वजह से इनको अपनी फैमिली के बिना ही शादी करनी पड़ी थी। और भाग्यश्री की तरफ से आपको पता है कौन मौजूद था उनकी शादी में? सिर्फ सूरज बड़जात्या की फैमिली एंड हिमसेल्फ एंड सलमान खान। ये दो पार्टीज थी जो भाग्यश्री को रिप्रेजेंट कर रही थी थ्रू आउट उनकी शादी में, यानी कि ये लड़की वाले थे। एंड दिस इज सच अ क्यूट थिंग यार, फ्रॉम द रियल टू द रियलिटी। दिस वॉज दैट मोमेंट जहाँ पर कलीग से दोस्त बनते हैं और दोस्त से रिश्तेदार बन जाते हैं और रिश्तेदार से रिश्तेदारी भी निभाते हैं। एंड इनफैक्ट मैंने प्यार किया कि जब शूट चल रही थी एट दैट टाइम ऑल्सो सलमान खान न्यू की भाग्यश्री और हिमालय जो है दे आर डेटिंग ईच अदर, तो वो भाग्यश्री को हिमालय के नाम पे इतना छेड़ा करते थे कि बेचारी परेशान हो जाया करती थी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनकी जो मैंने प्यार किया वाली फ्रेंड्स वाली केमिस्ट्री है ना, वो वहीं से आया करती थी। स्टे ट्यून्ड विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Oh no!
3: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स.
1: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन. जय गुरुदेव. गायत्री चेतना सेंटर, पिस्केटवे. आपने अने आपना परिवार ने गुरु पूर्णिमा अने रुद्राभिषेक महोत्सव मां स्नेह भर्यू आमंत्रण आपे छे. शनिवार 1 ऑगस्टे सवारे 10 वागे शिरजी रुद्राभिषेक अने सांजे 5 वागे विराट दीप यज्ञ. रविवार 2 ऑगस्टे सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ. शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति. 732-357-8200. जय गुरुदेव.
5: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी.
6: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस.
5: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस. कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस. We'll be right back.

0: मिडडे मोहब्बत विद सारा, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: डियर बचपन के ख्वाब,
2: यादों को चिट्ठी।
1: यार, सब बड़ों को आजादी से अपनी जिंदगी जीते हुए देखकर हमने बचपन में हमेशा यही सोचा कि वाह, बड़ा होना कितना कूल है। और पूरे बचपन हमने यही दुआ की कि ऊपर वाले हमें जल्दी से बड़ा कर दो, बस जल्दी से बड़े हो जाएं हम। बड़े होंगे तो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, एक्टर बनेंगे, सिंगर बनेंगे, खुद का बिजनेस करेंगे। लेकिन जब बड़े हुए ना हम बचपन के ख्वाब, तो रियलाइज हुआ कि अब इन सारी चीजों की जरूरत महसूस नहीं होती। ये तो अल्टीमेट गोल है ही नहीं। किसी ने हमें बचपन में ये क्यों नहीं समझाया कि बड़े होकर जिस चीज की जरूरत पड़ेगी वो होगा खुद के लिए वक्त, सनसेट देखते हुए चाय पीना, दोस्तों के साथ ट्रिप टालना नहीं सफर तय करना, तारों की छाओं में घंटों बैठना, चांद से बातें करना, एंड द लिस्ट गोज ऑन एंड ऑन। अब समझ आया कि ये भागम भाग और हसल वाली लाइफ नहीं, सुकून जिंदगी का मोटो है। और बचपन के ख्वाब, मैं भी बदल गई हूँ और तुम भी बदल गए हो। क्योंकि क्या है ना कि मैंने अपने ख्वाब की डेफिनेशन जो है उसको बदल दिया है, जिसके चलते मैंने तुम्हें भी बदल दिया है। तो अब तुम बचपन के ख्वाब नहीं हो, अब तुम लड़कपन के ख्वाब हो, जिसमें मुझे आसमान की ऊंचाई नहीं छूनी है, लेकिन मुझे जमीन पर बैठे हुए आसमान में लगे हुए तारों को ताकना है। मेरे भी ख्वाब बदल गए। यू ट्यून इन विद मी सारा, आपकी 90s की यादों का पिटारा ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: Did you see my new couch? We picked it up from Encanto in Italy. And that dining table? It's from Catalan Italia.
6: Ye Mrs. Chopra na keeps showing off her furniture just because her husband's business picked up recently. When did she visit Italy? Chopra saab, so how was Italy?
7: Italy? Oh, all the stylish furniture is from Italmode Furniture on 685 New Jersey, 17 South in Paramus, New Jersey. They carry stylish premium Italian brand like Estero Milano, Pietro Costantini and much more.
6: What? Italmode Furniture in Paramus? Aji sunte ho, to abhi chalo Italmode Furniture pe. Agli party, hamare ghar pe.
8: Italmode Furniture, 685 New Jersey, 17 South, Paramus, New Jersey. Or shop online at italmodefurniture.com and have it delivered anywhere in the US.
9: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
10: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
9: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
11: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
10: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
11: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
12: तेरा क्या होगा कालिया?
13: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
12: अब मिर्ची खा।
14: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: एंड आखिरकार ओडिसी लग गई है। न सिर्फ ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित डायरेक्टर में से एक जो माना जाता है क्रिस्टोफर नोलन उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, बल्कि 70mm आईमैक्स में फिल्म देखने की उम्मीद रखने वाले हम जैसे जो ऑडियंसेस है उनका भी स्वप्न था। एंड ओडिसी लग गई जो एक ग्रीक
2: कविता है जो करीब 3000 सालों पहले लिखी गई थी, जो फिर कई कई अंग्रेजी कवियों ने अपनी अपनी तरह से ओडिसी को अपनाया है।
1: होमर का ये एंशियंट ग्रीक इतिहास पर्दे पर क्या शानदार होकर उतरा है, जहां पर मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, एन हैथवे, रॉबर्ट पैटिनसन, ज़ेंडाया और हिंदुस्तानी हिमेश पटेल भी नजर आता है इसमें। इसका मजा एक 70mm आईमैक्स थिएटर में ही देखकर आता है एंड वैसे ही जाकर देखे। आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर कि ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है। कोई कितना भी पसंद करे क्रिस्टोफर नोलन को, फिल्म थोड़ी सी लंबी अवश्य हो जाती है। इनफैक्ट जीतूराज चूंकि हिंदुस्तानी सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है, आई मस्ट टेल यू कि इसके क्लाइमेक्स का आधा घंटा है वो देखते हुए मेरे को एक्चुअली लगा कि मैं कोई हिंदी फिल्म देख रहा हूं। ऑल्सो क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत ग्रांटेड लिया है अपने ऑडियंसेस को, वो ऐसे ग्रांटेड ले लिया है कि हर किसी को ओडिसी के बारे में मालूम होगा। आई वुड वांट टू बिलीव कि दुनिया में कई अंग्रेजी ऑडियंसेस भी होंगी जिनको शायद ओडिसी के बारे में सब कुछ नहीं पता है, तो ये गलती हुई है क्रिस्टोफर नोलन से। ऑल्सो फिल्म कई जगह पर बहुत धीमी पड़ जाती है जिसकी वजह से ये क्लासिक होते होते रह जाती है, ऐसे जीतूराज को एज ए रिव्यूअर लगता है। बट देन ऑल सेड एंड डन, इसके बावजूद भी ये फिल्म इज अ मस्ट वॉच फॉर द अल्टीमेट सिनेमा प्रेमी, वो जिसको सिनेमा बहुत अहम लगता है। ये एक स्टडी है, ये एक अभ्यास है एंड आने वाली जनरेशन इस फिल्म को अवश्य याद करेगी। टीम मिर्ची की तरफ से इसे 3.5 मिर्चीज, 3.5 स्टार्स ओडिसी। एक बार अवश्य देखें और अपना रिव्यू भेजें ऑन इंस्टाग्राम @ मिर्ची जीतूराज।
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Midday Mohabbat with Sara. Only on Mirchi. It's hot.
1: अलका याग्निक और कुमार सानू की आवाज में आनंद बख्शी का लिखा गया बीजू शाह का कंपोज किया गया ये गाना इज कैसेट के साइड वी का पांचवा गाना।
2: मिर्ची 90s कैसेट।
1: द गाना फ्रॉम द फिल्म गुप्त। मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सांसों में तू। यार गुप्त का ना पूरा का पूरा एल्बम, सारे के सारे गाने वो जस्ट माइंड बॉगलिंग, बिकॉज ये जो म्यूजिक था ना वो जब तब आया था तब भी बड़ा हटके था और आज तक भी मैंने ऐसा म्यूजिक तो नहीं सुना, ऑनेस्टली स्पीकिंग। आई मीन इफ यू थिंक डिफरेंटली देन डू लेट मी नो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गुप्त जैसा म्यूजिक जो है ना वो आज तक भी मैंने नहीं सुना है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में, तो फॉर श्योर, बिकॉज ये तो कुछ हटकर ही लेकर आए थे यार ये लोग। एंड इस फिल्म के गाने कुछ ऐसे हैं कि सिंस ये एक थ्रिलर थी और रोमांटिक थ्रिलर थी, तो इस फिल्म के गानों में रोमांस तो है ही है, लेकिन जो रोमांटिक गाने भी चल रहे हैं ना उनका जो म्यूजिक है, देयर इज समवेयर सम थ्रिल इन दैट म्यूजिक। वो थ्रिलर मूवी का भी म्यूजिक लग रहा है साथ साथ, लेकिन ये बुरा भी नहीं लग रहा है, ये कॉम्बो बड़ा सटीक लग रहा है। दैट इज द मैजिक विच वीजू शाह डिड विद द कॉम्पोजिशन ऑफ दिस म्यूजिक। एंड पुराने गानों में मैंने एक चीज नोटिस करी है कि बात को ना सीधे से नहीं कहा जाता था कि हमें तुमसे मोहब्बत है, बात वहीं खत्म हो गई। नहीं नहीं नहीं नहीं, बात को ना थोड़ा सा घुमा फिरा कर कहा जाता था, जैसे कि इस गाने में लिखा है आनंद बख्शी साहब ने, और कहा गया है कि यार तू हो कोई फूल तो तुझे चुरा लूं मैं, अपनी जुल्फों में लगा लूं मैं, पलकों के नीचे छुपा लूं मैं, और तू हो कोई जाम तो उड़ा लूं मैं, और अपनी प्यास बुझा लूं मैं। And I really, really liked the lyrics from those times because of the reason कि यार बात कही भी और नहीं कही भी और सीधी भी नहीं गई, टेढ़ी मेढ़ी गई, और हमें ना टेढ़ी मेढ़ी बातें जो है ना वो बड़ी पसंद आती है, ये बात तो है। हाँ लेकिन यही कहीं अगर जब लड़ाई हो जाती है और तब कोई टेढ़ी मेढ़ी बातें कर रहा होता है तो वो कतई ना पसंद आती है, बट या व्हेन इट्स अबाउट रोमांस, सीधी बात अगर ना की जाए और ऐसे टेढ़ी मेढ़ी घुमा फिरा के बात की जाए, उलझा उलझा के बात की जाए, तो ज्यादा मजा आता है। वो कहते हैं ना कि इश्क जब धीमी आंच पे पकता है तो उसका जायका ही कुछ अलग निकल कर आता है। चलो जी मैं यहाँ से जाते हुए आपसे कहती हूँ हम हेराई प्यार के, लेकिन फिर मिलेंगे चलते चलते, लेकिन आप अपना अच्छा खासा ख्याल रखिएगा और यहाँ के अलावा मुझे ढूंढ लीजिएगा ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल विच इज मिर्ची सारा। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, 'cause it's hot.

0: मौसम बेईमान या फिर गर्लफ्रेंड परेशान या फिर पति है हैरान या फिर ढूंढना है नया मकान या आज फिर से बंद है दुकान। कोई भी सिचुएशन हो इनके पास गाना रेडी है साहेबा। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। हिंदी फिल्मों के वो लिरिसिस्ट जिन्होंने ऑलमोस्ट हर सिचुएशन पे गाना लिखा हुआ है, आनंद बख्शी साहब। लिखने गाने का, गाने लिखने का बचपन से ही शौक था इनको। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में क्या शेयर किया था इन्होंने।
1: मुझे बचपन से ही कुछ गाने का शौक था, मैं गाता वाता था और ड्रामा वगैरह में, रामलीला में कुछ करते थे और पिक्चरें देखने का बहुत शौक था। और फिर कभी कभी हम स्कूल की किताबें भेज के भी टिकट लेके पिक्चर्स देखते थे। फिर आहिस्ता आहिस्ता शौक बढ़ता गया। फिर ये शौक कब लिखने में बदल गया इसका कुछ मुझे ठीक से एहसास नहीं है। और बचपन से ही मैंने ये सोच लिया था कि कभी ना कभी किसी दिन मैं बम्बई पहुँचूँगा और मैं गीतकार बनूँगा। दिल में सोचा हुआ था कभी गाना गा लेंगे, गाना नहीं मिला तो गीत लिख लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन बॉम्बे ही जाके रहेंगे।
0: बख्शी साहब अपनी फौज की नौकरी छोड़ के बॉम्बे आ गए थे, फिर गिव अप करके वापस भी चले गए थे, लेकिन फिर वापस आ गए थे, बॉम्बे से दूर नहीं रह पाए थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ।

0: पुरानी जीन्स आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है.
4: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
3: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: Batting to kafi sare karte hain. Virat ek hi hota hai.
8: Kohli goes down the ground. Kohli goes out of the ground.
7: Filmon mein villain ko dhote to bahut hain, par Bachchan ek hi hota hai.
9: Ise apni jeb mein rakh le Peter. अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा.
7: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है.
10: एक ही होता है.
7: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची. मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है. रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं. इट्स हॉट.
0: पुरानी जी आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची.

0: हिंदी फिल्मों के वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड लिरिसिस्ट्स मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। आनंद बख्शी साहब आपको पता है इंडियन आर्मी में थे। एक बार एक पुराने इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि भाई बचपन से उनको जब लिखने गाने का शौक था तो वो फौज में क्यों चले गए थे, सुनिए उन्होंने क्या कहा था।
1: वो कुछ मेरे हालात ऐसे थे कि हम हिंदुस्तान की तकसीम के वक्त ऐसे कुछ हालात हो गए कि मुझे लिटरेचर की तरफ मैं नहीं जा सका, क्योंकि फौजी जिंदगी में लिटरेचर के लिए बहुत कम वक्त और माहौल होता है। तो जब फौज में था तब भी मैं अक्सर रात को हमारे फील्ड एरिया में दूर दूर तक लाउड स्पीकर लगे होते थे, तो मैं उनके नीचे खड़ा रहता था और जब वहाँ से वो किसी भी गीतकार का गीत बजाते थे और बोलते थे कि अब सुनिए ये रचना फलां गीतकार की है, तो मेरे दिल में एकदम एक हुक सी उठती थी कि या अल्लाह कभी ऐसा भी दिन आएगा किसी स्पीकर से मेरा नाम भी लिया जाएगा कि आप सुनिए आनंद बख्शी की रचना।
0: तो चलिए देरी नहीं करते, बख्शी साहब की ये खूबसूरत रचना सुन लेते हैं पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: साय तू क्या गा रही है?
1: अपने प्यार को याद कर रहा है और कह रहा है कि
0: ऐसे नहीं, गा के सुनाओ ना।
1: गा के?

0: ये जो गाना है ना तिरछी टोपी वाले, इसका एक सैड वर्जन है जिसके लिरिक्स में ऐसी कुछ लाइन है कि मैं गांव का सीधा साधा बलम, कहां मैं आ गया। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये गाना लिखा है आनंद बख्शी साहब ने, एंड उनके साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था। जब वो अपने लिखने गाने के सपने पूरे करने बॉम्बे आए तो थोड़े घबरा गए। सुनिए पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: बॉम्बे का सफर, फौज से मैंने नौकरी छोड़ के बॉम्बे आया, मैं कोई 50 में मैं आया पहली बार, और मैंने यहाँ बड़ी कोशिश की कि मुझे बिल्कुल कामयाबी नहीं हुई, और एक दो महीने में ही मैं ये कसम खा के कि मैं दोबारा कभी नहीं आऊँ, वापस चला गया। और फिर जाकर मैं फौज में भर्ती हो गया, और इस दौरान में मैंने कोशिश की कि कोई ऐसी वजह पैदा कर लूँ कि मैं दोबारा बम्बई नहीं जाऊँ। तो मैंने शादी भी कर ली, मेरे बच्चे भी हो गए, लेकिन फिर भी मैं रुका नहीं, और दो तीन साल की नौकरी करने के बाद मैंने कहा चलते हैं, देखा जाएगा जो होगा, और मैं फिर बम्बई आ गया। दिस वॉज दी एंड ऑफ 1956।
0: इसके बाद इनको बॉम्बे में स्टेबल होने के लिए कुछ 6-7 साल लग गए थे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
3: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
4: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
4: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
6: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
7: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
6: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
0: पुरानी जीन्स आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: सो रब दे क्या ही टैलेंटेड बंदा था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ और मैं बात कर रही हूँ हिंदी फिल्मों के वन ऑफ द मोस्ट सेलिब्रेटेड लिरिसिस्ट्स आनंद बख्शी साहब की। बख्शी साहब जब नए नए बॉम्बे आए थे ना तो गिव अप करके चले गए थे, फिर वापस बॉम्बे आए थे, फिर वापस गिव अप करके जाने वाले थे, तब उनको उनके एक दोस्त ने रोका। एक बार एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने उस दोस्त का जिक्र किया था, सुनिए।
1: 2-3-4 महीने में फिर मेरी हिम्मत टूटने लगी, किराया वगैरह देना भी मुश्किल हो गया था। फिर एक अजनबी शख्स मेरा कोई दोस्त बन गया, और रेलवे में काम करता था, टिकट चेकर था मेरलैंड स्टेशन पर। उसे मैंने एक दिन कहा कि मुझे दिल्ली का टिकट ले दो, मैं वापस जा रहा हूँ। तो वो पता नहीं बेचारा इतना इम्प्रेस था मुझसे, वो कहता था कि तुम एक दिन ज़रूर गीतकार बनोगे। तो उसने मेरी बड़ी मदद की, इतनी मदद की कि वो मेरा सामान उठा के मुझे अपने घर ले गया बोरीवली, और उस शख्स ने मुझे 6 बरस तक अपने साथ रखा, रहने की जगह दी, खाना वाना भी वही खिलाता था। उनका नाम था क्षेत्रमल, बॉम्बे शहर में और कुछ था नहीं, और जो 2-4 रिश्तेदार थे उन्होंने ज़रा मुँह फेर लिया। अगर वो मेरी मदद नहीं करता तो इस बार भी मुझे फिर कसम खा के वापस जाना पड़ता।
0: कहते हैं ऊपर वाला कई बार जब खुद आपकी मदद करने नहीं आता तो फरिश्ते समान किसी इंसान को भेज देता है। ये दोस्त वही रहे होंगे। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ और मिर्ची।

0: कुछ 6000 गाने लिखे होंगे आनंद बख्शी साहब ने। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन उनका पहला गाना कौन सा था? एक बार एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने शेयर किया था, ये लेट 56-57 की बात होगी।
1: उन दिनों में हर रोज हम घूमते रहते थे, रोज किसी न किसी फिल्म स्टूडियो में जाते थे, जो भी मिल गया उससे मिला। और एक रटा हुआ जुमला था कि मैं गीतकार बनने को आया हूँ, मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। लेकिन ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते थे। इत्तेफाक से भगवान दादा की कोई फिल्म शुरू होने वाली थी और वो दफ्तर में बैठे हुए कुछ किसी सॉन्ग राइटर का इंतजार कर रहे थे। बड़े अच्छे मौके पर पहुंच गया और मैंने जाकर भगवान दादा से कहा कि मैं गीत लिखता हूँ। उन्होंने फ़ौरन कहा गीत लिखो, तो मैं लिखने बैठ गया। और मुझे याद है कि 2-4 रोज में मैंने उनके 4 गीत लिखे। ना खुश हो गया, मुझे लगा कि मैंने जीत लिया। एक गाना था उसका मुखड़ा ऐसे था कि धरती तेरे लिए, तू है धरती के लिए, धरती के लाल ना कर इतने मलाल, तेरी दौलत है तेरे हौसले। वो छोटी सी स्टंट पिक्चर थी तो कुछ खास उससे कामयाबी नहीं मिली।
0: वेल बख्शी साहब की ये वेल डिजर्व्ड ड्यू कामयाबी 7-8 सालों बाद आई थी। करते हैं उसके बारे में बात थोड़ी देर के बाद, राइट हियर। मैं हूँ चारू आपके साथ पुरानी जीन्स पर और मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
2: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
5: Inefficient,
6: very complex,
7: clumsy or
8: confusion ही confusion.
4: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: Tera kya hoga, Kalia?
12: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
11: Ab, mirchi ka.
13: Radio Mirchi, it's hot.
0: पुरानी जीन्स, पुरानी जीन्स आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची.

0: आनंद बख्शी साहब ने 1956 से फिल्मों के लिए गाने लिखने शुरू किए थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनके शुरुआती गाने कुछ खास चले नहीं, वो फिल्में भी नहीं चली। सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में तब के बारे में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: वही स्ट्रगल चलने लगी, सुबह शाम भाग दौड़, इससे मिलो उससे मिलो। उसके बाद 10 साल मेरे बड़े अपने मिस्टर सुनील दत्त, ये मेरे दोस्त भी हैं और दूसरे रिश्तेदार भी हैं, इनके पास मैं गया तो इन्होंने मुझे एक खत दिया इंट्रोडक्शन का, जस्ट टू मीट मिस्टर राज कपूर। तो राज कपूर साहब के सेक्रेटरी थे हिरन खेड़ा साहब, उनके पास मैं गया। उन्होंने कहा सुनाओ तुम क्या लिख रहा है। तो मेरे पास कोई फिल्मी गीत थे नहीं, 3-4 मुखड़े में लेके आया था, वो मैंने उनको सुनाए और काफी इंतजार किया। रास्ता बड़े बिजी थे, हर उन्होंने मुझे अपनी कार्टी में बुलाया। लेकिन गाने से पहले मुझे हिरन खेड़ा साहब ने कहा कि राज साहब तो तुमसे गाने नहीं लिखवाएंगे, लेकिन मैं अगर कभी प्रोड्यूसर बन गया तो मैं तुमसे गीत जरूर लिखवाऊंगा, मैं वादा करता हूँ। और देखिए मेरा नसीब कि 2-4 महीने में ही किसी शख्स ने उनको पैसे दे दिए फिल्म बनाने के लिए और उन्होंने बनाई फिल्म मेहंदी लगी मेरे हाथ। उसी मिस्टर खेड़ा ने एक दूसरी फिल्म बनाई थी जब जब फूल खिले, वो बहुत बड़ी हिट हो गई। उसके बाद फिर मुझे पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा।
0: और इसके बाद से इनकी जो स्ट्रगल थी ये तो जैसे परदेसी हो गई, उससे फिर मुलाकात ही नहीं हो पाई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। और मिर्ची

0: पुरानी चीज, पुरानी चीज। आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: Oh no!
4: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब, इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो। राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय एएससी सर्टिफाइड टेक्नीशियंस। विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू, नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप, 1213 न्यू जर्सी 27, सोमरसेट ऑटो बॉडी शॉप, 700 हैरिस एव, मिडिलसेक्स। इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर, यू आर इन गुड हैंड्स।
5: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
6: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
7: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
6: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
8: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है।
9: कोहली गोज डाउन द ग्राउंड, कोहली गोज आउट ऑफ द ग्राउंड।
8: फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
10: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
8: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
11: एक ही होता है।
8: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।
12: It's 2:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
0: पुरानी चीज, पुरानी चीज। आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ, चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: आनंद बख्शी साहब क्योंकि शायर नहीं गीतकार थे, फिल्मी गीत लिखते थे, उनको काफी क्रिटिसाइज किया जाता था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन इस सारे क्रिटिसिज्म को उन्होंने जवाब दिया अपने गानों से, डीप थॉटफुल गाने जैसे कि अमर प्रेम के गाने। अच्छा, इसका जो गाना है चिंगारी कोई भड़के, उसके बारे में सुनिए पुराने इंटरव्यू में इन्होंने क्या शेयर किया था।
1: ये गाना मैंने फिल्म के लिए ऐसे लिखा नहीं था, ऐसे ही अपने लिए लिखा था। मैं उन दिनों में तो गाने लिखते रहते थे कि कौन सा गाना किसे पसंद आ जाए क्या पता। तो शाम को हम अक्सर वहाँ बैठते थे, शक्ति सामंत जी के यहाँ, राजेश खन्ना, आर डी बर्मन, मैं। तो हाँ, मैंने ये गाना जब उन्हें सुनाया तो सब लोगों को इतना पसंद आया कि उसका भी से रिकॉर्ड करते हैं और इसकी पिक्चर में निकालते हैं सिचुएशन। और इत्तेफाक से वो गाना बड़ा पॉपुलर हुआ, मैंने भी वो गाना पार्टियों में खूब गाया।
0: बताइए, अक्सर बख्शी साहब को सिचुएशन दी जाती थी गाने लिखने के लिए, ये गाना फिल्म बनाने वालों को इतना पसंद आया कि इसके लिए सिचुएशन निकाली गई। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची मिर्ची साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
1: एंड आखिरकार ओडिसी लग गई है। न सिर्फ ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित डायरेक्टर में से एक जो माना जाता है क्रिस्टोफर नोलन उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, बल्कि 70mm आईमैक्स में फिल्म देखने की उम्मीद रखने वाले हम जैसे जो ऑडियंसेस है उनका भी स्वप्न था। एंड ओडिसी लग गई जो एक ग्रीक
2: कविता है जो करीब 3000 सालों पहले लिखी गई थी, जो फिर कई कई अंग्रेजी कवियों ने अपनी अपनी तरह से ओडिसी को अपनाया है।
1: होमर का ये एंशियंट ग्रीक इतिहास पर्दे पर क्या शानदार होकर उतरा है, जहां पर मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, एन हैथवे, रॉबर्ट पैटिनसन, ज़ेंडाया एंड हिंदुस्तानी हिमेश पटेल भी नजर आता है इसमें। इसका मजा एक 70mm IMAX थिएटर में ही देखकर आता है। एंड वैसे ही जाकर देखें, आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर कि ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है। कोई कितना भी पसंद करे क्रिस्टोफर नोलन को, फिल्म थोड़ी सी लंबी अवश्य हो जाती है। इनफैक्ट जीतूराज चूंकि हिंदुस्तानी सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है, आई मस्ट टेल यू कि इसके क्लाइमेक्स का आधा घंटा है वो देखते हुए मेरे को एक्चुअली लगा कि मैं कोई हिंदी फिल्म देख रहा हूं। ऑल्सो क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत ग्रांटेड लिया है अपने ऑडियंसेस को, वो ऐसे ग्रांटेड ले लिया है कि हर किसी को ओडिसी के बारे में मालूम होगा। आई वुड वांट टू बिलीव कि दुनिया में कई अंग्रेजी ऑडियंसेस भी होंगी जिनको शायद ओडिसी के बारे में सब कुछ नहीं पता है, तो ये गलती हुई है क्रिस्टोफर नोलन से। ऑल्सो फिल्म कई जगह पर बहुत धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये क्लासिक होते होते रह जाती है, ऐसे जीतूराज को एज ए रिव्यूअर लगता है। बट देन ऑल सेड एंड डन, इसके बावजूद भी ये फिल्म इज अ मस्ट वॉच फॉर द अल्टीमेट सिनेमा प्रेमी, वो जिसको सिनेमा बहुत अहम लगता है। ये एक स्टडी है, ये एक अभ्यास है एंड आने वाली जनरेशन इस फिल्म को अवश्य याद करेगी। टीम मिर्ची की तरफ से इसे 3.5 मिर्चीज, 3.5 स्टार्स ओडिसी। एक बार अवश्य देखिए ना, अपना रिव्यू भेजें ऑन इंस्टाग्राम @मिर्चीजीतूराज।
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
6: मिस इंडिया लाए हैं लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
5: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इजलिन।
7: लिसनर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
8: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
9: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
0: Purani Ji, Anand Bakshi Special. Charu ke saath. Only on Mirchi.

0: पुराने हिंदी फिल्मी गाने, हर दूसरा गाना आनंद बख्शी साहब ने लिखा होता है, कई बार पहला और तीसरा भी उन्होंने ही लिखा होता है। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। बख्शी साहब को सिचुएशन दो, 7-8 मिनट में वो गाने लिख देते थे। एक बार एक पुराने इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था इस बारे में।
1: ये मैं कोशिश तो करता हूँ, कभी बन जाता है कभी नहीं भी बनता।
0: ऐसा ही एक गाना जो फटाफट बन गया था वो था आन मिलो सजना फिल्म का अच्छा तो हम चलते हैं, जिसको काफी क्रिटिसाइज भी किया गया था। इस बारे में बख्शी साहब ने क्या कहा था?
1: इन गानों को कुछ लोगों ने ये भी कहा कि भाई गाने तुकबंदी के हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कॉम्प्लीमेंट दिया कि यहाँ से फिल्म राइटिंग का एक नया दौर शुरू हुआ जिसमें डायलॉग टाइप के गाने भी आते थे।
0: भाई बख्शी साहब को उस टाइम इतनी आलोचना का सामना इसलिए भी करना पड़ता था क्योंकि ये शायर नहीं थे, बस गीतकार थे। तब शायरी को या शायरी बेस्ड जो गाने होते थे उनको ज्यादा बेहतर समझा जाता था। एक बार बख्शी साहब से पूछा गया था कि अदबी शायरी और फिल्मी शायरी दोनों में उनके हिसाब से क्या फर्क है।
1: फिल्मी शायरी में और अदबी शायरी में इतने फर्क है कि उनकी मीटर्स अलग होते हैं। जैसे शायरी के 6 मीटर होते हैं, उनकी बहरें होती हैं, उसी बहर में लोग शायरी करते हैं। फिल्म के गीत में जैसी धुन बनती है, धुन पे लिखना पड़ता है, तो धुन का अपना अलग मीटर होता है
0: और उसी के साथ साथ सिचुएशन भी तो होती है जिसके मुताबिक गाना लिखना पड़ता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।
2: अच्छा

0: पुरानी जीन्स आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची.
1: यू आर लिसनिंग टू 103.3 एफएम HD2 WPRB प्रिंसटन न्यू जर्सी एंड 92.7 W224 CW फ्रैंकलिन पार्क न्यू जर्सी. रेडियो मिर्ची.

0: हिंदी फिल्मों के आइकॉनिक सॉन्ग राइटर आनंद बख्शी साहब। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई वैसे तो बख्शी साहब बहुत वर्सेटाइल थे, हर तरह के गाने, हर सिचुएशन पे गाने उन्होंने लिखे हैं, लेकिन एक टाइप था जो उनको काफी पसंद था, वो गाने जिनमें फोक म्यूजिक का टच होता था। सुनिए इस बारे में उन्होंने एक पुराने इंटरव्यू में क्या शेयर किया था।
1: बचपन से ही फोक गीत काफी सुनता रहा, पढ़ता रहा, क्योंकि मुझे गाने का भी शौक था, इसलिए फोक गीत मेरी शायरी में भी आते गए। और हालांकि मैंने कोई भी फोक सॉन्ग बिल्कुल कॉपी कभी नहीं किया, खुद लिखा है, लेकिन मेरे कुछ गीत इतने पॉपुलर हुए कि लोगों ने कहा कि भाई ये जरूर कोई ना कोई फोक गीत होगा। और आनंद बख्शी ने वहाँ से गीत कॉपी किया होगा, जैसे ये बिनिया चमकेगी, इसमें जितनी पंजाबी की लाइनें वो सब मैंने लिखी थी, ये किसी भी फोक गीत का हिस्सा नहीं है, लेकिन मैं इसे एक अपनी दाद समझता हूँ, कॉम्प्लीमेंट समझता हूँ कि ये गीत जो मैंने लिखा वो इतना पॉपुलर हो गया कि लोगों ने कहना शुरू किया भाई ये जरूर कोई फोक गीत होगा।
0: तो देरी किस बात की है, सुन लेते हैं क्लासिक गाना पुरानी जीन्स पर। मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची

0: पुरानी जीन्स आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची.
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर.
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज.
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन.
5: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं. दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
6: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
7: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
6: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
8: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
9: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
8: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
10: तेरा क्या होगा कालिया?
11: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार.
10: अब मिर्ची खा.
12: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.
0: पुरानी जी आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची.

ये काम किया? तुमने मुझे बदनाम किया।

they call them hands?

0: आनंद बख्शी साहब ने 1956 से फिल्मी गाने लिखना शुरू किया और 2002 में उनकी डेथ तक वो गाने ही लिख रहे थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। इतने डेकेड्स तक वो रेलेवेंट थे, ऐसा कैसे कर लेते थे? सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: मैं पहले लिखता था, वैसे अभी लिखता हूँ। मेरे माइंड में शुरू से ही सिचुएशन की जो डिमांड है उसकी बड़ी अहमियत रही कि गाने वाला कोई बोर्डमैन है या कोई आर्टिस्ट है या कोई शायर है या वर्किंग क्लर्क है या कोई किसान है या कौन है।
0: वैसे तो उनके सारे गानों की मेजर मास अपील रहती थी, लेकिन कुछ गाने थे जो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड थे। वन ऑफ सच सॉन्ग्स जिसे हम पाथ ब्रेकिंग कह सकते हैं या बाउंड्रीज क्रॉस करने वाला कह सकते हैं, वो है 1986 की नाम फिल्म का चिट्ठी आई है। इसके बारे में सुनिए एक पुराने इंटरव्यू में उन्होंने क्या शेयर किया था।
1: उन्होंने मुझे ऐसी सिचुएशन दी, ऐसी जगह दी फिल्म में जिसमें कि एक शख्स अपने देश छोड़ के बाहर गया हुआ है, उसे अपने देश की याद आ रही है, भाई याद आ रहा है, माँ की याद आ रही है। तो वो फीलिंग लेके मैंने ये सोचा कि अगर चिट्ठी के हिसाब से इसे लिखा जाएगा तो बहुत कामयाब होगा।
0: कामयाब इज एन अंडरस्टेटमेंट फॉर दिस सॉन्ग। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ ऑन मिर्ची।

0: पुरानी चीज, पुरानी चीज। आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: जय गुरुदेव। गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेह पूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिवजी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ। शांति कुंज हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 7323578200। जय गुरुदेव।
4: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
5: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
4: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: It's 3:30 p.m. Mirchi time check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
0: पुरानी चीज, पुरानी चीज। आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: लेट 50s में जब आनंद बख्शी साहब ने फिल्मों में गाने लिखना शुरू किया तो उनको इतना वार्म वेलकम नहीं मिला था क्योंकि वो शायर नहीं थे। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इनफैक्ट काफी क्रिटिसिज्म, थोड़ा रूखा बर्ताव भी मिला था, लेकिन कुछ ऐसे सॉन्ग राइटर्स भी थे जिन्होंने उन्हें सपोर्ट किया। और उनमें से किन लोगों के काम से वो इम्प्रेस थे, एक बार एक पुराने इंटरव्यू में सुनिए बख्शी साहब ने क्या शेयर किया था।
1: फिल्मी शायरी में मुझे सबसे ज्यादा जिन्होंने इम्प्रेस किया वो थे डी एन मरहोक, उन्हें यहाँ कहते थे महाकवि। और उसके बाद अपने शैलेंद्र ने मुझे बहुत इम्प्रेस किया था। और एक ऐसी शायरी जिसमें अदब भी हो, लिटरेचर भी हो और फिल्मी रंग भी हो, उस टाइप की शायरी अपने साहिर साहब करते थे। उनसे मेरी बड़ी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी और वो उन्होंने हौसला दिया, लोगों से मुझे मिलाया कि भाई ये बहुत अच्छा शायर है, इससे गीत लिखाओ। उन्होंने मेरी काफ़ी मदद की। और शैलेंद्र साहब थे, वो भी मेरी बड़ी तारीफ करते थे। इस तरह से कुछ दोस्त और बन गए, कुछ दोस्तों की मेहरबानी, कुछ ऊपर वाले का करम, अपना सिलसिला वहाँ से चल पड़ा।
0: और हम यहाँ पे चला देते हैं बख्शी साहब का बड़ा अच्छा सा एक गाना, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। इंस्टाग्राम पे मिल जाऊंगी @rj.charu, rj.charu। सुनते रहिए मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स आनंद बख्शी स्पेशल चारों के साथ ओनली ऑन मिर्ची
1: मिर्ची
2: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
3: एंड आखिरकार ओडिसी लग गई है। न सिर्फ ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित डायरेक्टर में से एक जो माना जाता है क्रिस्टोफर नोलन उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, बल्कि 70mm आईमैक्स में फिल्म देखने की उम्मीद रखने वाले हम जैसे जो ऑडियंसेस है उनका भी स्वप्न था। एंड ओडिसी लग गई जो एक ग्रीक
4: कविता है जो करीब 3000 सालों पहले लिखी गई थी, जो फिर कई कई अंग्रेजी कवियों ने अपनी अपनी तरह से ओडिसी को अपनाया है।
3: होमर का ये एंशिएंट ग्रीक इतिहास पर्दे पर क्या शानदार होकर उतरा है, जहाँ पर मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, एन हैथवे, रॉबर्ट पैटिंसन, ज़ेंडाया एंड हिंदुस्तानी हिमेश पटेल भी नजर आता है इसमें। इसका मजा एक 70mm आईमैक्स थिएटर में ही देखकर आता है। एंड वैसे ही जाकर देखें, आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर कि ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है। कोई कितना भी पसंद करे क्रिस्टोफर नोलन को, फिल्म थोड़ी सी लंबी अवश्य हो जाती है। इनफैक्ट जीतूराज चूंकि हिंदुस्तानी सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है, आई मस्ट टेल यू कि इसके क्लाइमेक्स का आधा घंटा है वो देखते हुए मेरे को एक्चुअली लगा कि मैं कोई हिंदी फिल्म देख रहा हूं। ऑल्सो क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत ग्रांटेड लिया है अपने ऑडियंसेस को, वो ऐसे ग्रांटेड ले लिया है कि हर किसी को ओडिसी के बारे में मालूम होगा। आई वुड वांट टू बिलीव कि दुनिया में कई अंग्रेजी ऑडियंसेस भी होंगी जिनको शायद ओडिसी के बारे में सब कुछ नहीं पता है, तो ये गलती हुई है क्रिस्टोफर नोलन से। ऑल्सो फिल्म कई जगह पर बहुत धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये क्लासिक होते होते रह जाती है, ऐसे जीतूराज को एज अ रिव्यूअर लगता है। बट देन ऑल सेड एंड डन, इसके बावजूद भी ये फिल्म इज अ मस्ट वॉच फॉर द अल्टीमेट सिनेमा प्रेमी, वो जिसको सिनेमा बहुत अहम लगता है। ये एक स्टडी है, ये एक अभ्यास है एंड आने वाली जनरेशन इस फिल्म को अवश्य याद करेगी। टीम मिर्ची की तरफ से इसे 3.5 मिर्चीज, 3.5 स्टार्स ओडिसी एक बार अवश्य देखें और अपना रिव्यू भेजें ऑन इंस्टाग्राम @ मिर्ची जीतूराज।
2: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: Pyari brides, kya dhoond rahi ho apna dream wedding lehenga? To aa jaiye Miss India Bridal Store.
7: Miss India laaye hai latest bridal lehengas, exclusive reception aur party wear dresses and grooms ki sherwanis.
6: Visit us at 79 Middlesex Avenue, Islin.
8: Tera kya hoga, Kalia?
9: Sardar, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
8: अब मिर्ची खा।
10: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

दोस्तों मंडे का तो अपना स्टारडम होता है और फ्राइडे की अपनी अलग फैन फॉलोइंग। शाम शादा लाइव सुन रहे हैं आप, ना हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। लेकिन हमारा जो मंगलवार है वो बॉलीवुड फिल्म के उस सीन की तरह होता है जहाँ कहानी क्वाइटली आगे बढ़ रही होती है। हीरो भी आ चुका होता है, हीरोइन से मुलाकात हो चुकी होती है, विलन का भी हिंट मिल ही गया होता है और ऑडियंस बस ये देखना चाहती है कि अब आगे क्या होगा। बिल्कुल हमारे वीक की तरह मंडे की एंट्री तो हो गई, अब पिक्चर अपनी रिदम पकड़ चुकी है और वैसे भी ये जो हफ्ता है वो बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, तो एक्साइटमेंट का बैकग्राउंड म्यूजिक ऑलरेडी बज रहा है। तो चलिए इस ट्यूजडे की स्टोरी को थोड़ा फिल्मी बनाते हैं, मूड हल्का रखते हैं, ट्रैफिक को थोड़ा बैकग्राउंड आर्टिस्ट बना देते हैं और बॉलीवुड का वॉल्यूम थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। और मुझे बताइए दोस्तों, अगर आपके इस हफ्ते का जॉनर चूज करना हो तो वो बॉलीवुड का कौन सा जॉनर होगा? रोमांस, कॉमेडी, थ्रिलर या फुल ऑन फैमिली ड्रामा? टेल मी ऑन इंस्टेंट आर जे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और चलिए इस ट्यूसडे यानी मंगलवार की फिल्म का अगला सीन शुरू करते हैं इस जबरदस्त बॉलीवुड गाने के साथ, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iscabana, puscabana, sacabana. Cabana. Burga, burga. La vedva la burga. Milci, burga.
2: हेलो,
3: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
2: स्पीकिंग,
3: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके दो मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ आपका। अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
2: जी।
3: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
2: बोल, कौन रहे हैं?
3: मैं जयदेव बोल रहा हूँ, और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं। अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज।
2: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है। जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
3: बिल्कुल
2: अलाउ नहीं करते हैं। जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे।
3: सही बात है,
2: गर्ल्स को नहीं देंगे।
3: सही बात कह रही हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई।
2: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है।
3: एक सेकंड होल्ड करिएगा। तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती, पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार। शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ। मैं, हाँ,
2: किससे बात कर रहे हैं?
3: मैं, वो मेरी वाइफ है यही।
2: हेलो,
3: हाँ बोलिए।
2: हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधरिए।
3: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ।
2: नहीं, आप मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं। हाँ? नकली तरह से आप मेरे से
3: नहीं,
2: बातें कर
3: नहीं
2: रहे
3: हैं। नकली तरीके से? क्या
2: नहीं, असली मुझे दिख रही है। असली औकात नहीं कर रहे हैं।
3: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार,
2: वो तो कोई बपौती
3: है। तमीज सीख ले।
2: नहीं, मेरी बात सुनिए।
3: देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए, आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया।
2: Oh my.
3: और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
7: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
6: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
7: विजिट टुडे, 1358 Oak Tree Road, Islington.
8: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
9: From the finest kitchens in India, thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor and freshness guaranteed. Deep cow to jano.
10: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
11: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
10: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
6: Suno brides, agar apni shaadi mein lagna hai ekdam queen,
7: to aaiye fashion queen. Yahan milega royal bridal lehenga collection, stunning sangeet aur party wear dresses, aur grooms ke liye stylish sherwanis.
6: Shaadi shopping ka complete destination, fashion queen.
7: Visit today, 1358 Oak Tree Road, Islington.
12: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत हैं, पर बच्चन एक ही होता है।
13: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
12: मॉरल ऑफ द स्टोरी, नंबर वन सिर्फ एक ही होता है,
14: एक ही होता है।
12: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिस्नरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शमशादा लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बातें हो रही है माइलस्टोन एल्बम दिल चाहता है के बारे में, जो रिलीज हुई थी 2001 में और जिसने म्यूजिक इंडस्ट्री का साउंडस्केप ही चेंज कर दिया। डायरेक्टेड बाय शंकर एहसान लॉय, जिन्होंने यार अनकन्वेंशनल इंस्ट्रूमेंट यूज किए थे, डिड गेरो डू आयरिश इन्फ्लुएंसेस के साथ में इस ट्रायो का यूथफुल लिरिक्स ने इस एल्बम को सुपर डुपर हिट बना दिया था। और इतना ही नहीं, बीबीसी एशिया के टॉप 40 में इंक्लूड किया था एज अ ट्रेंड सेटर एल्बम। और मुझे तो लगता है कि अगर कंटेम्प्रेरी वाइब आज भी चाहिए ना, तो ये एल्बम कटिंग एज था, विच वॉज वे अहेड ऑफ इट्स टाइम। 2001 में आया था, लेकिन 2025 में भी आज भी इसके गानों पर ट्यून इन कर सकते हो। तो आप भी मुझे बताइए विच इज योर फेवरेट सॉन्ग फ्रॉम दिल चाहता है एल्बम। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और कहीं ना जाइए क्योंकि इस एल्बम के गानों के बारे में बहुत ही खास बातें करने वाले हम आज राइट हियर ऑन द शो। तो कहीं ना जाइए, बने रहिए मेरे साथ राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
3: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लायन मॉर्गेज, द किंग ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री।
4: सिंस ओवर 15 इयर्स, लायन मॉर्गेज हैज बीन असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स विद लोन। देयर एक्सपीरियंस एंड नॉलेज ऑफ मॉर्गेज इंडस्ट्री रियली हेल्प्स क्लाइंट्स टू गेट द बेस्ट पॉसिबल डील्स ऑन रीफाइनेंस। अ प्रोफेशनल सर्विस विद क्विक, एक्यूरेट एंड इंप्रेसिव फॉलो अप। लायन मॉर्गेज ऑफर्स स्पेशल जीरो क्लोजिंग कॉस्ट ऑन रीफाइनेंस ऑप्शंस।
1: फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155, दैट इज 732-339-3155। प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
5: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
1: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
6: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
7: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
6: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
8: लिस्नर है, मैं बैक टू बैक गाना सुनेगा,
9: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
10: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot. Yes.

0: Tickets 4:30 PM. Mirchi Time Check. RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels. Best quality, best price. Sham Shanda. Let's do not
1: donkey, have a funky time. एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शांता लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और चलिए ले चलते हैं आपको 2001 में जब दिल चाहता है रिलीज हुई थी। और यार वो सिर्फ फरहान अख्तर की डायरेक्टोरियल डेब्यू ही नहीं थी, लेकिन एक ऐसा एल्बम बन गया था, एक ऐसा साउंड ट्रैक बन गया था जो टाइमलेस था। और शंकर एहसान लॉय का ये जो साउंड ट्रैक था उसने धमाका किया था, स्पेसिफिकली विद द टाइटल ट्रैक दिल चाहता है। क्योंकि यार दिल चाहता है सुनते ही ना दिमाग में गोवा के क्लिफ्स, रोड ट्रिप्स और केयर फ्री दोस्ती ना फ्लैश हो जाती है। और ये सॉन्ग वैसे तो सिडनी के बूंदी बीच और चपोरा फ्लैट गोवा, इन दोनों लोकेशंस पे शूट हुआ था। लेकिन ये इकलौता गाना ऐसा है जिसके वजह से गोवा टूरिज्म बहुत ही ज़्यादा बूस्ट हुआ था, क्योंकि इतने सारे दोस्तों ने प्लान कर लिए थे कि यार चलो गोवा चलते हैं। हाँ, कुछ प्लान सक्सेस हुए थे, कुछ प्लान फेल हुए थे, लेकिन प्लान तो सब ने बनाए थे। तो जी हाँ, ये सिर्फ एक गाना नहीं, लाइफ का मिशन स्टेटमेंट बन चुका था, लिव फ्री, लव रियल एंड लव लाउडर। तो चलिए आपके लिए प्ले करते हैं दिल चाहता है। लेकिन आप भी मुझे बता सकते हो विच इज़ दैट वन फेवरेट सॉन्ग ऑफ दिस एल्बम ऑफ योर्स। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए गोवा की यादें ताज़ा करते हैं विद दिस सॉन्ग दिल चाहता है, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chefs' recipes comes the Naan. Same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jano.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Izzilin.
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
8: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

anytime. कुछ फोटोज देखते ही सारा सीन फिर से रिप्ले हो जाता है। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और कुछ फोटोज देखते ही ना सब कुछ याद आता है कि कौन लेट आया था, किसने सबसे ज्यादा फोटोज खींचे थे और कौन बिना रिहर्सल के डांस फ्लोर का हीरो बन गया था। फिर चाहे वो फोटोज बेस्ट फ्रेंड की शादी के हो, या पहली दिवाली विद फैमिली के हो, या कोई ऐसे फंक्शन की जहाँ सालों बाद सब एक साथ मिले हो। और इसीलिए तो फोटोज में ना सिर्फ चेहरे नहीं होते, पूरा मूड कैप्चर हो जाता है। और जब कोई मोमेंट इतना खास हो तो उस दिन पहनी हुई हर चीज भी उस कहानी का हिस्सा बन जाता है। और शायद इसीलिए इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप का रिश्ता सिर्फ फैशन से ही नहीं, यादों से भी होता है। और अब उसी एहसास को न्यू जर्सी के और भी करीब लाया है फ्रंटियर रास। उनका USA फ्लैगशिप स्टोर अब एडिसन में ओपन है, जहां हैंडलूम साड़ीज, ब्राइडल कोटोर, मेंस वेयर और रेडी टू वेयर के साथ मिलती है 70 ईयर लीगेसी ऑफ इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप। विजिट फ्रंटियर रास एट 1655 ओक ट्री रोड इज़िलिन न्यू जर्सी। और दोस्तों, आपके फोन में वो कौन सी ऐसी फोटो है जो देखते ही आपको पूरा दिन याद आ जाता है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और साथ में ये भी बताइए कि उस फोटो का परफेक्ट बॉलीवुड बैकग्राउंड सॉन्ग कौन सा था। हो सकता है कि आपकी यादों का वही साउंड ट्रैक मिर्ची पैग लगाना बन जाए। तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची, इट्स हॉट।

अटक अटक आता माझी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए कमऑन बेबी टिकट टिकट काटू तेरी टिकट टिकट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do Nautanki, have a funky time.
2: लंबी लंबी ट्रिप्स के बाद अगर कोई एक चीज की क्रेविंग होती है तो वो क्या है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और सबके दिल से एक ही आवाज निकली होगी, घर के खाने की। जी हाँ, सफर चाहे कितना भी अच्छा हो, बाहर कितना भी खा लिया हो, एक पॉइंट के बाद ना दिल बस कुछ सिंपल गर्मा गर्म और अपना सा चाहता है। आपने कभी नोटिस किया है, थकान तो आधी तब उतर जाती है जब किचन से हल्की सी तड़के की खुशबू आती है और फिर याद आता है कि कुछ कंफर्ट फूड ना फैशनेबल नहीं होते, बस फॉरएवर होते हैं। और मेरे लिए उस सुकून का एक ही नाम है, एक गर्मा गर्म बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी, हल्की सी घी, साथ में थोड़ा सा अचार, और बस जैसे सफ़र की सारी थकान ही उतर गई हो। बॉडी को ऐसा ईज मिलता है और दिल को भी इतना ज़्यादा सुकून मिलता है विद जस्ट दैट वन बोल ऑफ मूंग दाल की खिचड़ी। इतना सिंपल सा खाना, लेकिन क्या कमाल का कम्फर्ट है, ऑनेस्टली अंडररेटेड। और ऐसे ही घर वाले स्वाद के लिए आज ही ले आइए दीप प्रीमियम इंडियन ओरिजिन मूंग दाल फ्रॉम योर नियरेस्ट इंडियन ग्रोसरी स्टोर। दीप, खाओ तो जानो और मुझे बताओ कि आपका कंफर्ट फूड क्या है। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI, और तब तक के लिए सुनते रहिए मिर्ची इट्स हॉट।

0: हेलो,
1: किरण पाल जी से बात कर सकता हूँ मैं?
0: बोल रहा हूँ
1: किरण पाल जी से बोल रहा हूँ, आपका बिल बकाया है यार, आपका पेंडिंग बिल जा रहा है, अब ये पे नहीं कर रहा है आपको?
0: बिल बकाया मैंने अभी जमा किया
1: जी सर, पिछले महीने का। एक सेकंड सर, मैं आपका सर नंबर बताएंगे आप अपना?
0: 23
1: एक सेकंड सर, अपने लास्ट महीने की पेमेंट करी है 2200 रूपए।
0: हाँ जी, हाँ जी।
1: लेकिन सर आपके 17,729 रूपए बनते हैं।
0: बिल आया था 2200 रूपए का।
1: नहीं नहीं, वही सर मैं आपको ये बता रहा हूँ, एक सेकंड रुकिए। ये आपने 2200 रूपए जो दिए हैं, ये तो आपने नॉर्मल कॉल्स के दिए हैं ना?
0: जो मेरे पास बिल आएगा वही तो दूंगा।
1: हाँ हाँ, वही वही मैं आपको बता रहा हूँ, नॉर्मल कॉल्स के आपके 2270 रूपए बनते थे सर। इसमें 17,740 रूपए की टोटल पेमेंट है।
0: पेमेंट लोकल कॉल में कैसे हो जाएगी?
1: लोकल कॉल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं सर, 12 तारीख को, 14 तारीख को, 19 तारीख को और 23 तारीख को पिछले महीने की। सर आपने जो फोन पे बात करी थी, किससे झगड़ा वगड़ा हुआ था?
0: वो तो हो जाता है कभी कभी, कोई बात इलाके भी की जाती है।
1: मैं आपको बता रहा हूँ, आपको शायद मालूम नहीं है, रूल्स रेगुलेशन पढ़ लिया करिए कनेक्शन लेने से पहले। आप जितना तेज चिल्लाते हैं, जितना गुस्सा आता है, का मीटर भी इतनी तेज भागता है। अब ये 19,000 रूपए आपका बकाया, वरना फोन काट देंगे आपका सर। जल्दी पेमेंट करवा दो इसकी आप।
0: अरे फोन काट दो यार, मजाक कर रहा हूँ क्या? कर रहा
1: हूँ मजाक नहीं कर रहा हूँ सर, आप जितना चिल्लाएंगे इतना मीटर तेज भागेगा सर। आपके ये समझ में नहीं आ रहा क्या बात?
0: चिल्लाने का क्या मतलब है?
1: अरे जितना आप चिल्लाते हैं आपको गुस्सा आता है, मीटर को गुस्सा नहीं आ सकता, वो इतनी तेज भागेगा यार मीटर। आप अपनी बहस कर रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, आप फिर चिल्ला रहे हैं, मीटर तेज भाग रहा है। देखिए मैं यहीं से देख रहा हूँ आपको, मीटर तेज भाग रहा है, चिल्लाए जा रहे हैं आप, बेकार की बातें कर रहे हैं।
2: कहाँ गए? बिल तो दे जाओ भाई।
0: हेलो
1: सर, जिग्नेश बोल रहा हूँ। 19 तारीख को आपकी वाइफ भी चिल्लाई थी, उनका भी बिल पेंडिंग है यार, आप फोन काट देते हैं बार बार यार।
0: फोन सुनते हो तुम लोग क्या?
1: ये हमारे पास ये है ना, पूरी डिटेल है यार, आपका नंबर डाल रखा है कंप्यूटर में।
0: मीटर भाग रहा है तो तेज बोल रहा है यार।
1: नहीं तो आप से बात करिए, फायदा आपका है यार, फिर मीटर तेज भाग रहा है। मैं कह रहा हूँ आपसे चिल्ला के बात करिए, आपका मीटर तेज।
2: सर मेरी बात सुनिए, इस बार फोन मत काटिएगा, बहुत मुश्किल से मिलता है। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, और आपका मुर्गा बनाया है। मुझे तुषार ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका बिल पेंडिंग है, वो जमा कर दीजिएगा जाके आप मिर्ची पे। और
0: कुकड़ों को
1: ए लीजिए सर, ये 25 रुपए इसके जुड़ गए आपके।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट, इट्स पटाक।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
7: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
8: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
7: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
9: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
10: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
11: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
10: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
12: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं, सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक। मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्राइस। रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 FM रेडियो मिर्ची पर। आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 FM HD2।

0: लाइफ में कोई भी चीज़ पहली बार करो ना तो थोड़ी सी ओवरवेलमिंग लगती ही है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और फिर चाहे वो पहली फ्लाइट हो, पहला जॉब इंटरव्यू हो, पहली कार खरीदना हो या फिर पहली बार अपने लिए घर खरीदना हो, यार इतने सारे टर्म्स, पेपर वर्क, ऑप्शंस और डिसीजंस होते हैं ना कि कभी कभी समझ ही नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। लेकिन जब सही गाइडेंस मिल जाए ना तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें भी आसान लगने लगती है। और इसीलिए आज हम फर्स्ट टाइम होम बायर्स के लिए लाए हैं कुछ एक्सपर्ट टिप्स बाय नन अदर देन मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।
1: गुड इवनिंग मिचेल, दिस इज योर फ्रेंड बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। होप यू ऑल हैड अ गुड डे एट वर्क एंड दे से रेन टिल टुमारो मॉर्निंग एंड द यूएस मार्केट्स आर अप। मॉर्गेज रेट्स टिक्ड अप स्लाइटली टुडे। द शिफ्ट कम्स फ्रॉम द न्यू इन्फ्लेशन डेटा शोज कंज्यूमर प्राइस होल्डिंग स्टेडी व्हिच कुड इंपैक्ट द फेड्स नेक्स्ट मूव फॉर बायर्स। दैट मींस Locking in early might still be the best play. Let's talk about pre-approval. It's your golden ticket in today's competitive market. It shows seller you are serious and gives you clarity on what you can afford. Think of it like knowing your budget before you enter the store. If you are self-employed, don't assume your options are limited. Programs like bank statement loans can help you qualify. And we have got strategies to make this work for you. So for all your mortgage needs, buying your dream home, call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. Looking at the mortgage rates today, 30-year fixed mortgage rate 6.375%. 20-year fixed mortgage rate 6.25%. 15-year fixed mortgage rate 5.75%. Friends, you can always visit our user-friendly website at www.lionmtg.com. And it is lionmtg.com. Remember, listeners, Land Mortgage partners with several lenders to offer multiple loan products. We specialize in mortgages only. It's like having a personal shopper who walks on your behalf. We are competitively priced, no premium penalties or borrower income limitation. 3% down payment with a credit score of 700 and above. Now you can buy your dream home. So call Lion Mortgage today at 732-339-3155. Lion Mortgage, 732-339-3155. With that, drive safe, everybody. Have a wonderful evening. Thank you very much. Bye-bye.
2: This mortgage update is brought to you by Lion Mortgage.

0: sets 5:30 p.m. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shandar, let's do not donkey, have a funky time.
2: एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और कोई भी कुछ भी कह ले, अगर कोई भी ऑफिस पार्टी हो और डीजे ने अगर कोई कहे नहीं बजाया तो इज दैट पार्टी इवन अ पार्टी? जी हाँ, कोई कहे कहता रहे फ्रॉम दिल चाहता है आज का बस टॉपिक और आज का बस सॉन्ग, क्योंकि दिल चाहता है 2001 में जो रिलीज हुई थी सुपर डुपर हिट एल्बम थी, विच वॉज कंपोज बाय शंकर एहसान लॉय। और इसी का एक सुपर डुपर हिट गाना विच इज कोई कहे कहता रहे, जो हर पार्टी की जान बन गया था यार। वैसे तो यार इस सॉन्ग की एनर्जी ऐसी थी कि शूट के दौरान भी पूरा का पूरा क्रू डांस ही कर रहा था, एंड दैट टू ऑफ कैमरा। तब फरहान अख्तर ने बोल दिया था यार, दिस वॉज द ओनली सॉन्ग वेर वी डिडंट नीड बैकग्राउंड डांसर, क्योंकि सब खुद ही ग्रूव करने लगे थे। तो यार मूड अगर लो हो या वीकेंड वाइब चाहिए तो ये गाना इज द अल्टीमेट पिक मी अप काइंड ऑफ सॉन्ग। तो आपका भी अगर फेवरेट गाना है ये तो मुझे ज़रूर बताइए, या फिर ये जो क्लासिक आइकॉनिक एल्बम है विच इज दिल चाहता है उसका आपका फेवरेट गाना कौन सा है? टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए आपका मूड अपलिफ्ट करने के लिए ये अगला गाना कोई कहता रहे, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज, only on Mirchi, it's hot.
1: एंड आखिरकार ओडिसी लग गई है। न सिर्फ ये दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित डायरेक्टर में से एक जो माना जाता है क्रिस्टोफर नोलन, उसका ड्रीम प्रोजेक्ट है, बल्कि 70mm आईमैक्स में फिल्म देखने की उम्मीद रखने वाले हम जैसे जो ऑडियंसेस है उनका भी स्वप्न था। एंड ओडिसी लग गई, जो एक ग्रीक
2: कविता है जो करीब 3000 सालों पहले लिखी गई थी, जो फिर कई कई अंग्रेजी कवियों ने अपनी अपनी तरह से ओडिसी को अपनाया है।
1: होमर का ये एंशियंट ग्रीक इतिहास पर्दे पर क्या शानदार होकर उतरा है, जहाँ पर मैट डेमन, टॉम हॉलैंड, एन हैथवे, रॉबर्ट पैटिनसन, ज़ेंडाया एंड हिंदुस्तानी हिमेश पटेल भी नजर आता है इसमें। इसका मजा एक 70mm आईमैक्स थिएटर में ही देखकर आता है। एंड वैसे ही जाकर देखे, आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर कि ये फिल्म हर किसी के लिए नहीं है। कोई कितना भी पसंद करे क्रिस्टोफर नोलन को, फिल्म थोड़ी सी लंबी अवश्य हो जाती है। इनफैक्ट जीतूराज चूंकि हिंदुस्तानी सिनेमा को रिप्रेजेंट करता है, आई मस्ट टेल यू कि इसके क्लाइमेक्स का आधा घंटा है वो देखते हुए मेरे को एक्चुअली लगा कि मैं कोई हिंदी फिल्म देख रहा हूं। ऑल्सो क्रिस्टोफर नोलन ने बहुत ग्रांटेड लिया है अपने ऑडियंसेस को, वो ऐसे ग्रांटेड ले लिया है कि हर किसी को ओडिसी के बारे में मालूम होगा। आई वुड वांट टू बिलीव कि दुनिया में कई अंग्रेजी ऑडियंसेस भी होंगी जिनको शायद ओडिसी के बारे में सब कुछ नहीं पता है, तो ये गलती हुई है क्रिस्टोफर नोलन से। ऑल्सो फिल्म कई जगह पर बहुत धीमी पड़ जाती है, जिसकी वजह से ये क्लासिक होते होते रह जाती है, ऐसे जीतूराज को एज ए रिव्यूअर लगता है। बट देन ऑल सेड एंड डन, इसके बावजूद भी ये फिल्म इज अ मस्ट वॉच फॉर द अल्टीमेट सिनेमा प्रेमी, वो जिसको सिनेमा बहुत अहम लगता है। ये एक स्टडी है, ये एक अभ्यास है, एंड आने वाली जनरेशन इस फिल्म को अवश्य याद करेगी। टीम मिर्ची की तरफ से इसे 3.5 मिर्चीज, 3.5 स्टार्स, ओडिसी एक बार अवश्य देखिए और अपना रिव्यू भेजें ऑन इंस्टाग्राम @ मिर्ची जीतूराज।
0: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
3: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
4: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
5: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती। वही एहसास लाए दीप फूड्स चटनी। दीप, खाओ तो जानो।
6: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
7: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
8: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
7: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
9: बैटिंग तो काफी सारे करते हैं, विराट एक ही होता है। फिल्मों में विलन को धोते तो बहुत है, पर बच्चन एक ही होता है।
10: इसे अपनी जेब में रख ले पीटर, अब ये ताला मैं तेरी जेब से चाबी निकाल कर ही खोलूंगा।
9: मॉरल ऑफ द स्टोरी नंबर वन, सिर्फ एक ही होता है,
11: एक ही होता है।
9: जैसे यूएसए की सबसे ऑथेंटिक रेडियो लिसनरशिप सर्वे नीलसन के मुताबिक न्यू जर्सी में नंबर वन साउथ एशियन चैनल है मिर्ची। मिर्ची बाकी जो है वो सिर्फ है, रेडियो का बच्चन कहो या कोहली, न्यू जर्सी में मिर्ची के नाम से पुकारते हैं। इट्स हॉट।

एक ऐसा एल्बम जिसका हर एक गाना सुपर डुपर हिट। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और बातें हो रही है 2001 के एल्बम की, दिल चाहता है कि, जिसका यार हर एक गाना सुपर डुपर हिट है। और एक ऐसे ही गाने की रिक्वेस्ट आई है फ्रॉम रेशमा हिंगे जो कि रहती है एडिसन में। यार इनको जाने क्यों लोग प्यार करते हैं, ये गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और तब जब ये गाना अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ में रिकॉर्ड किया गया था, तब यार लगता ही नहीं था कि ये गाना है। मतलब लगता है कि दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। और प्रीति जिंटा ने एक बहुत ही प्यारा सा मोनोलॉग बोला था इस गाने के जस्ट थोड़ी देर पहले कि यार लव तो लॉजिकली होता है ना, मतलब लव में थोड़ी ना लॉजिक यूज़ होता है। तो कुछ ऐसा ही कहना है रेशमा हिंगे का भी, वो भी यही एग्री करती है प्रीति जिंटा के जो भी गाने के बोल है उनके साथ कि यार लव तो दिल से होता है, लव थोड़ी ना लॉजिकल होता है। तो जी हाँ, चलिए ये गाना बजाते हैं रेशमा जी के लिए राइट हियर ऑन मिर्ची। और दोस्तों आप भी मुझे बता सकते हो विच इज़ दैट अनदर एल्बम, हिट एल्बम जो यार बहुत पुराना है लेकिन आज भी रेलिवेंट है। टेल मी ऑन इंस्टाट RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए दिल चाहता है का जाने क्यों लोग प्यार करते हैं रेशमा जी की रिक्वेस्ट पर राइट योर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shanda, let's do not donkey, have a funky time.
2: दोस्तों, बॉलीवुड में कमबैक का चार्म अलग ही होता है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और जब भी कोई एक्टर ब्रेक के बाद वापस आता है ना, तो ऑडियंस का रिएक्शन इमोशनल भी होता है और क्यूरियस भी, क्योंकि उस एक्टर के साथ मेमोरीज जुड़ी होती है। और जब वो वापस स्ट्रांग रोल में आता है ना, तो यार वो सिर्फ एक कमबैक ही नहीं, एक मोमेंट बन जाता है। और ऐसे फेवरेट एक्टर को या एक्ट्रेस को इतने सालों बाद फिर एक बार बड़े पर्दे पे देखने का चार्म ही अलग होता है। वैसे आजकल ऐसे कई सारे एक्टर एक्ट्रेसेस ये भी ट्राई कर रहे हैं कि वो OTT पे आए। तो यार बड़े पर्दे से छोटे पर्दे पे उनका ट्रांजिशन देखना, और बहुत सालों पहले जो उन्होंने हीरो के रोल किए थे वो चेंज होकर अब वो एक एक्टर या कैरेक्टर रोल कर रहे हैं, ये देखना भी एक अलग ही इंटरेस्टिंग चीज है। तो आप भी मुझे बताइए कि ऐसा कौन सा कमबैक है एक बड़े एक्टर का जो आपको बहुत पसंद आया। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: हेलो,
3: क्या मैं साहिबा जी से बात कर सकता हूँ?
2: स्पीकिंग,
3: गुड इवनिंग मैडम, मैं आपके 2 मिनट चाहूंगा, अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम हो तो मैं ले सकता हूँ आपका। अच्छा मैडम, इसमें ये है कि जितना देख रहे हैं हमारे हिंदुस्तान में औरतों को खामखा दबाया जाता है, राइट?
2: जी।
3: और मर्द जो है वो अपने आप को सुपीरियर समझते हैं। आपको क्या लगता है, आप मुझे बताएं कि किस तरह नारी को जो है वो कम समझा जाता है हमारे हिंदुस्तान में?
2: बोल, कौन रहा है?
3: मैं जयदेव बोल रहा हूँ, और हम खासतौर से महिलाओं के लिए काम करते हैं। अभी तो मैं घर पे ही हूँ क्योंकि मेरा ऑफ है आज।
2: देखिए, बिल्कुल स्टार्टिंग से ही ये देखा गया है कि हर जगह ही बहुत पहले जमाने से ऐसा होता रहा है, औरतों को, बच्चियों को दबाया गया है। जैसे बाहर जाने की जब बात आती है तो इवन फैमिली मेंबर्स भी बॉयज को अलाउ करते हैं, गर्ल्स को बहुत ज्यादा
3: बिल्कुल
2: अलाउ नहीं करते। जहाँ तक अगर जॉब की आप बात करें तो भी पहला प्रेफरेंस हमेशा बॉयज को ही देंगे।
3: सही बात है,
2: गर्ल्स को नहीं देंगे।
3: सही बात कह रही हैं, और मैं तो ये कहता हूँ कि इस तरह की बात होनी नहीं चाहिए भाई।
2: इवन आप छोटे काम भी लीजिए तो मैकेनिक भी आज आपको लेडीज मिलती है।
3: एक सेकंड होल्ड करिएगा। तुम्हारे दिमाग में भेजे में एक बात नहीं आती, पता नहीं औरतों के दिमाग में ही भेजे में बात नहीं आती यार। शादी करके मैं तो पछता रहा हूँ। मैं,
2: हाँ, किससे बात कर रहे
3: हैं? मैं, वो मेरी वाइफ है यही।
2: हेलो,
3: हाँ बोलिए।
2: हाँ, मैं ये बोल रही हूँ कि आप इतनी सुधार की बातें कर रहे हैं, पहले आप तो सुधारिए।
3: मैं क्या सुधरूं यार, मैं आपसे बातें कर रहा हूँ सिर्फ।
2: नहीं, आप मेरे से तो नहीं, बातें सही से कर रहे हैं।
3: हाँ?
2: नकली तरह से आप मेरे से
3: नहीं,
2: बातें
3: नहीं,
2: कर रहे
3: नकली तरीके से क्या?
2: नहीं, असली मुझे दिख रही है। असली औकात
3: नहीं
2: कर रहे हैं।
3: नहीं, मैं मेरी वाइफ है यार।
2: वो तो कोई बपौती है।
3: नहीं नहीं, बात नहीं, तो तमीज सीखिए।
2: नहीं
3: तमीज,
2: नहीं नहीं, सुनिए, बिल्कुल नहीं सुननी है।
3: मेरी बात सुनिए। देखिए साहिबा, ऐसा है कि मैं ही नहीं, हिंदुस्तान में नहीं, दुनिया में कोई भी नारी से बदतमीजी से बात करे उसे इसी तरह झाड़िएगा। मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ। मुझे किसी ने आपका नंबर दिया था और ये कहा था कि आपका मुर्गा बनाए आप रेडियो मिर्ची पे, आपका मुर्गा बन गया।
2: Oh my.
3: और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और हम दोनों साथ में मिलकर काम करेंगे ताकि हर नारी की इज्जत करी जाए।
0: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: This gold update is brought to you by Raj Jewels, Kingdom of Jewels, where tradition meets style.
5: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
6: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
7: From the finest kitchens in India, a thousand-year-old tradition of Khandani chef's recipes comes the naan. The same traditional taste, flavor, and freshness guaranteed. Deep cow, to jaano.
8: Namaste, New Jersey. Frontier Ras is now open in Edison, New Jersey. From handloom saris and bridal couture to menswear and ready-to-wear, discover a 70-year legacy of Indian craftsmanship. The USA flagship store of Frontier Ras is now open at 1655 Oak Tree Road, Edison.
9: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
10: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
9: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
11: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, मगर शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए। इसीलिए लाइन मॉर्गेज असिस्टिंग फर्स्ट टाइम होम बायर्स, आल्सो ऑफरिंग जीरो क्लोजिंग कॉस्ट रीफाइनेंस ऑप्शन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 732-339-3155। लॉग ऑन टू lionmtg.com।
12: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
13: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगाज, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
12: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
14: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
15: Listener MA, back to back gana sunega.
16: Back to back gana sunega.
15: Only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot

दोस्तों, क्या आपको पता है थ्री इडियट्स का आइकॉनिक आल इज वेल सीन ओरिजिनली स्क्रिप्ट में इतना बड़ा सीक्वेंस था ही नहीं। शाम शांता लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और आज मिर्ची बॉलीवुड ट्रिविया में बात हो रही है वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक मूवीज थ्री इडियट्स का आल इज वेल सीन। क्योंकि यार मूवी के शूट के टाइम पे राजकुमार हिरानी ने कास्ट को सीधे सीधे बोल दिया था कि ये जो लाइन है ऑल इज वेल, इसको कोशिश करना गाने की इन अ टेंशन सीन और देखते क्या होता है। और आमिर खान जी ने इम्प्रोवाइज करते हुए इसे फुल ऑन एक एंथम बना दिया। जी हाँ, वैसे तो क्रू को लगा कि बस ये एक फनी मोमेंट है और शायद ये ज्यादा शूट में लिया भी नहीं जाएगा या फाइनल एडिट में इसको कट किया जाएगा, लेकिन जैसे ही इसका बैकग्राउंड स्कोर ऐड हुआ तो मैजिक हो गया। जी हाँ, आज ऑल इज वेल दुनिया भर में स्ट्रेस रिलीफ मंत्र बन चुका है। और यही होता है जब बॉलीवुड का चार्म ना एक सिंपल आइडिया को भी यूनिवर्सल होप बना देता है कि यार अब हम भी अपने दिल को तसल्ली देने के लिए ऑल इज वेल ही कहते हैं। तो चलिए आज के इस शाम में ऑल इज वेल कहते हैं अपने दिल को विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग बाय नन अदर देन राजकुमार हिरानी मूवी एंड संग बाय सोनू निगम राइट हियर ऑन मिर्ची। और वैसे आप भी मुझे बता सकते हो विच इज योर फेवरेट सॉन्ग ऑफ थ्री इडियट्स। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHR। तक के लिए ऑल इज वेल राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Worried about how your child will stay connected with their roots or maintain our traditions?
3: SKN Foundation has one of the longest running culture, values and Hindi language programs for students.
2: To enroll or know more, please visit sanatanvidyalaya.org or call 908-671-1344.
4: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
5: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानी।
4: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
5: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Iselin.
6: Iselin, New Jersey. Yes, you heard that right. That's the brand new Joy Alucard's destination in the USA. Be among the first to celebrate our grand opening with an unbeatable inaugural offer of flat 30% off on baking charges. Shop before 19 July and receive assured gifts with every purchase. Visit us at 42 Marconi Avenue, Iselin, New Jersey and discover exquisite collections crafted for every celebration. Inaugural offer valid until 26th July 2026. TNC apply. Joy Alucard's, world's favorite jeweler.
7: किसी जमाने में माँ हाथों से घिसती, प्यार से कूटती, मुस्कुराकर पीसती, अपने घर के आंगन में दिन भर उन मसालों को सहलाए, खुशियों के स्वाद चखती, वही एहसास लाए डीप फूड्स चटनी। डीप, खाओ तो जानो।
8: क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
9: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
8: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू, इसलिन।
10: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
11: तेरा क्या होगा कालिया?
12: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
11: अब मिर्ची खा।
13: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: airs 6:30 p.m. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price.
1: Sham Shandar, let's do Nautanki, have a funky time.
2: संगीत ने बना दी ये अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और वैसे तो यार इतने सारे बॉलीवुड सिंगर्स हैं और उनके सोलो सॉन्ग्स भी बहुत ही अमेजिंग होते हैं, लेकिन जब ये साथ मिलकर कुछ साथ गाने गाते हैं, कुछ डुएट्स बनाते हैं, तो ओ हो हो वो दिल को छू जाते हैं। एंड वन सच जोड़ी इज मोहित चौहान और श्रेया घोषाल। जी हाँ, इतने खूबसूरत गाने इनके बने हैं बॉलीवुड में। एंड वन सच ब्यूटिफुल सॉन्ग इज 2012 की मूवी जब तक है जान का सांस। जी हाँ, AR रहमान का कॉम्पोजिशन है, जिसमें मोहित चौहान और श्रेया घोषाल ने इस रोमांटिक ट्रैक को अपनी सोलफुल आवाज़ से भी और भी खास बना दिया। और ये गाना वैसे तो शाहरुख खान और कैटरीना कैफ पर फिल्माया गया है, जिसमें पहली बार वो दोनों साथ में आए थे और उनकी केमिस्ट्री और सिंगर्स की आवाज़ का परफेक्ट ब्लेंड देखने मिला था। तो चलिए अभी हम सुनेंगे सांस फ्रॉम जब तक है जान। लेकिन आप भी मुझे बताइए कि इन दो जोड़ियों की ऐसी कौन सी ब्यूटीफुल मेलोडीज है जो आपको बहुत पसंद है। चल मी और इंस्टाइट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक सुनते हैं जब तक है जान का गाना सांस, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन,
4: तो आइए फैशन क्वीन। यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज।
3: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन।
4: विजिट टुडे 1358 ओक ट्री रोड, इजलिन।
5: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
6: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
5: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
7: Jai Gurudev, Gayatri Chetna Center Piscataway. Aapne ane aapna parivar ne Guru Purnima ane Rudrabhishek Mahotsav ma sneh bharyu aamantran aape che. Shanivar 1 August e savare 10 vage Shirji Rudrabhishek ane sanje 5 vage Virat Deep Yagna. रविवार 2 ऑगस्ट सवारे 10 वागे 251 कुंडिया गायत्री महायज्ञ शांत कुंज हरिद्वार ना पूज्य संतो द्वारा वैदिक विधि मुजब अनुष्ठान अने डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी नी पावन उपस्थिति 732-357-8200 जय गुरुदेव।
8: श्याम शानदार, लेट्स डू नॉट डंकी, हैव अ फंकी टाइम।
9: संगीत ने बना दी ये अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि, और हमारी बातें हो रही है कि यार संगीत के वर्ल्ड में यानी बॉलीवुड म्यूजिक में ऐसी कौन सी जोड़ियां थी, ऐसी कौन सी हिट जोड़ियां थी जिनके डुएट सुन के हम तो यार मतलब खो ही गए। तो जी हाँ, एक ऐसी जोड़ी है मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की, और उन्हीं के कुछ गानों के बारे में बात हो रही है। एंड वन ऑफ देयर सॉन्ग्स विच इज़ माई फेवरेट यार इज दिस लव, 2008 की एल्बम किस्मत कनेक्शन का गाना है। प्रीतम के म्यूजिक डायरेक्शन में बना ये गाना शाहिद कपूर और विद्या बालन पर फिल्माया गया था, और यार मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की आवाज ने इस गाने को एक अलग ही लेवल पे पहुंचा दिया। जी आज भी ये गाना मेरा फेवरेट है, एंड यू नो ये जो ब्यूटीफुल मेलोडी है इज दिस लव, वो इतना प्यार लेके आता है, ऐसा लगता है कि बस जब तुम प्यार में होते हो तो शायद यही गाना सुनते होंगे। तो चलिए आज ये गाना बजाते हैं श्रेया घोषाल और मोहित चौहान की आवाज में। वैसे आप भी मुझे बता सकते हो विच इज योर फेवरेट सॉन्ग ऑफ दिस डुओ, टेल मी ऑन इंस्टा एट आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए किस्मत कनेक्शन का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: This hour is brought to you by Raj Jewels.
1: Sham Shandar, let's do non-donkey, have a funky time.
2: संगीत ने बना दी ये अनोखी जोड़ी। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी। और वैसे तो यार बॉलीवुड में इतनी सारी जोड़ियाँ बनती है, लेकिन बॉलीवुड म्यूजिक ने भी काफ़ी ऐसे डुओज दिए हैं हमें, जिन्होंने जब साथ आकर गाने गाए तो ओहो चार चांद लगा दिए। तो जी हाँ, ऐसा ही एक डुओ जो है वो है मोहित चौहान और श्रेया घोषाल का। और वैसे तो उनके इतने सारे गाने हैं जिनके बारे में तो हम बात कर ही रहे हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड सॉन्ग विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल मेलोडी इज़ फ्रॉम मूवी आरक्षण, जो 2011 में आई थी। उसका गाना जो शंकर एहसान लॉय का कंपोजिशन है, अच्छा लगता है। जी हाँ, मोहित चौहान और श्रेया घोषाल ने इस गाने को अपनी मेलोडियस आवाज दी थी और भी खास बना दिया था। वैसे तो ये गाना फिल्माया गया है दीपिका पादुकोण और सैफ अली खान पर, और उनकी केमिस्ट्री इस गाने में, मतलब होते ना आंखों आंखों में इशारे होना, वही कुछ इस गाने में दिखाई दिया था। लेकिन द ब्यूटिफुल म्यूजिक एंड द ब्यूटिफुल वॉइस ऑफ मोहित चौहान एंड श्रेया घोषाल वॉज अनफॉरगेटेबल। तो चलिए आज सुनते हैं अच्छा लगता है फ्रॉम आरक्षण, और आप भी मुझे बता सकते हो विच इज दैट फेवरेट सॉन्ग ऑफ योर्स जो गाया गया है मोहित चौहान और श्रेया घोषाल की जबरदस्त जोड़ी ने। और ऐसी कौन सी बॉलीवुड म्यूजिक की और कोई ऐसी जोड़ी है जो आपको बहुत पसंद है? टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और तब तक के लिए आरक्षण का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirci. Iskabana, puskabana, sakabana. Yabana. Burga, burga. La vizba la burga. Mirci, burga.
1: Hello.
2: Is that Mr. Vipul?
1: Yes.
2: Mr. Vipul, hi, I'm Atul calling from... com. आपके पास थोड़ा सा टाइम है?
1: हाँ हाँ बोलिए।
2: अच्छा विपुल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा था, आप जरूर अवेयर होंगे इस चीज से क्योंकि मार्केट रिसेशन सब कुछ खराब चल रहा है, राइट? आई बिलीव आपने सुना होगा, आपने का सुना होगा, काफी लोग वहाँ से निकाले गए हैं, राइट?
1: ओके।
2: तो मान लीजिए कल को अगर आपकी नौकरी नहीं रहे तो हम आपको एक अच्छी सुटेबल जॉब प्रोवाइड करेंगे।
1: बट इसमें करना क्या होगा?
2: अभी आप कहाँ जॉब कर रहे हैं? और डेजिग्नेशन क्या है आपका?
1: इंस्टॉलेशन ऑफिसर है।
2: इंस्टॉलेशन ऑफिसर, देखिए ऑप्शंस ये है, सबसे पहले तो आप अपना पूरा सीवी है मुझे मेल कर देंगे, राइट?
1: फाइन।
2: आप मुझे बताएंगे प्लीज, थोड़ा सा पर्सनल है लेकिन सैलरी भी बता देंगे कितनी मिल रही है आपको?
1: मिलता है,
2: मैं आपको बी कैटेगरी में रख रहा हूँ, राइट?
1: ये बी आपने कैसे कैटेगराइज किया है? बी कैटेगरी में क्या आता है?
2: ओके, ए कैटेगरी में वो लोग हैं जो कि मैनेजर हैं, जो कि सीनियर मैनेजर हैं, जो कि सीईओ हैं, राइट? हमारी सिर्फ दो ही कैटेगरी हैं, दूसरी बचती है बी कैटेगरी।
1: बी कैटेगरी में काम क्या क्या करना होगा?
2: वही मैं आपको बता रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप जैसे बर्तन धो सकते हैं, झाड़ू पोछा हो सकता है, भांडे मांज सकते हैं।
1: Have you gone mad?
2: आपने पॉटी लगाई है बच्चे कभी?
1: Talking about?
2: और इसमें
1: क्या बकवास कर रहे हैं?
2: बी कैटेगरी में ये भी है, जैसे आप बर्तन अच्छे मांज देते हैं, आज चमकदार मांज देते हैं, तो आपको एक हॉलीडे देंगे। हॉलीडे भी मिलेगा आपको, हॉलीडे भी मिलेगा।
1: डोंट वांट टू लिसन एनीथिंग।
2: मेरी बात, आप गाड़ी साफ करते पोछा लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, आप इसमें पोछा लगा सकते हैं। इसको सी कैटेगरी में डालना पड़ेगा।
1: हेलो
2: सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहे हैं, उसमें आप मूंगफली बेच लेना। सर मनीष, सर मनीष कॉलिंग फ्रॉम
1: .com। हाउ डेयर यू कॉल मी?
2: ओके ओके सर, आपको सी कैटेगरी में डाल रहा हूँ, बी कैटेगरी में आप सर रेवड़ी बेच सकते हैं, मूंगफली बेच सकते हैं, मूंगफली बेच दीजिए सर। सर आपको सी डाल रहा हूँ, मेरी बात सुनिए, फोन मत काटिएगा। सर मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, पहली बात तो कोई आपकी जॉब नहीं जाएगी, आप घबराए ना। दूसरी बात ये कि जॉब जाएगी तो मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मेरी भी कभी भी जा सकती है। आप रेडियो मिर्ची पे हैं, मैंने मुर्गा बनाया है आपका, पूरी दिल्ली सुन रही है आपको।
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची।
4: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
5: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
6: अपने घर में तो हर कोई शेर होता है, लेकिन शेर बनने के लिए घर भी तो होना चाहिए, इसीलिए Lion Mortgage. The king of mortgage industry.
7: Since over 15 years, Lion Mortgage has been assisting first-time home buyers with loan. Their experience and knowledge of mortgage industry really helps clients to get the best possible deals on refinance. A professional service with quick, accurate and impressive follow-up. Lion Mortgage offers special zero closing cost on refinance options.
5: For more information, call 732-339-3155. That is 732-339-3155.
8: अपने सपनों की ऊंचाई को छूने के लिए एम्स एजुकेशन हमेशा आपके साथ है।
9: The College of Health Sciences offers various degrees and certifications in pharmacy tech, medical billing and coding, EKG and phlebotomy, medical assistant and many more in-demand healthcare careers.
8: Get clinical experience and job assistance at the most reputed hospitals and medical centers. Training is provided online and on campus. For enrollment, call 908-222-0002 or visit aimseducation.edu.
10: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
11: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
12: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
11: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
13: जय गुरुदेव, गायत्री चेतना सेंटर पिस्कैटोपे की ओर से आप और आपके परिवार को गुरु पूर्णिमा एवं रुद्राभिषेक महोत्सव में स्नेह पूर्ण आमंत्रण। शनिवार 1 अगस्त को सुबह 10 बजे शिव जी रुद्राभिषेक और शाम 5 बजे विराट दीप यज्ञ। रविवार 2 अगस्त को सुबह 10 बजे 251 कुंडीय गायत्री महायज्ञ शांति कुंज, हरिद्वार के पूज्य संतों द्वारा वैदिक विधि से अनुष्ठान और डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी की पावन उपस्थिति। अधिक जानकारी के लिए 732-357-8200। जय गुरुदेव।
14: विजिट कृष्णा ज्वेलर्स ऑन ओक ट्री रोड फॉर एक्सक्लूसिव डायमंड ज्वेलरी।
15: दे सेल नेचुरल डायमंड्स, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस।
14: डोंट फॉरगेट, लार्जेस्ट नेचुरल डायमंड स्टोर, बेस्ट क्वालिटी एट द लोवेस्ट प्राइसेस। कृष्णा ज्वेलर्स, लेडीज फर्स्ट चॉइस।
16: लिस्नर है मैं, बैक टू बैक गाना सुनेगा,
17: बैक टू बैक गाना सुनेगा।
16: only on 92.7 FM Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.

शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और हमारे यहाँ पे बातें हो रही है। जी हाँ दोस्तों, बॉलीवुड म्यूजिक के धमाकेदार डुओस के बारे में बातें हो रही है और आज का जो धमाकेदार डुओ था वो था श्रेया घोषाल और मोहित चौहान का, जिनके हमने इतने सारे गाने सुने और एक गाने की रिक्वेस्ट भी आई है। जी हाँ दोस्तों, गाने की रिक्वेस्ट आई है रोहन से, जो कि रहते हैं जर्सी सिटी में और उनको भीगी सी भागी सी गाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है फ्रॉम द मूवी राजनीति, जो गाया है इस जबरदस्त दस डुओ ने, विच इज मोहित चौहान और श्रेया घोषाल। तो चलिए सुनते हैं भीगी सी भागी सी गाना फ्रॉम राजनीति राइट हियर ऑन मिर्ची। और दोस्तों, अगर बॉलीवुड म्यूजिक के और भी धमाकेदार डुओज के बारे में आपको जानना है तो मुझे जरूर बताइए विच इज योर फेवरेट म्यूजिकल डुओ इन बॉलीवुड। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम एट RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक के लिए राजनीति का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
1: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
2: Inefficient,
3: very complex,
4: clumsy, or
5: confusion ही confusion.
0: Disjointed software को use करना उतना easy नहीं जितना आप समझ रहे हैं. टूटे फूटे software से छुटकारा पाओ. अपने business के लिए Zoho One ले आओ. Zoho One is an all-in-one integrated software suite जिससे आप अपना पूरा business चला सकते हैं. Yes, you heard that right. You can run your entire business, sales, marketing से लेके customer support, accounting, operations या HR. काम अनेक, software एक, Zoho One. Get your free trial at zoho.com/one.
6: कुछ आवाजें सिर्फ कानों को नहीं सीधे आत्मा को छू जाती हैं। दिव्य और पवित्र आरती अब मंदिर से सीधे आप तक. मंगल आरती प्रेजेंटेड बाय आरके जूल्स. बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस. रोज सुबह 6 बजे सिर्फ 92.7 एफएम रेडियो मिर्ची पर. आल्सो अवेलेबल ऑन 103.3 एफएम HD2.
7: नो
8: कार खराब मतलब दिन और मूड दोनों खराब. इसीलिए अपनी कार को सही केयर दो. राज ऑटो सेंटर विद 30 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस. द फैमिली ओन्ड ऑटोमोटिव सेंटर प्रोवाइडिंग टॉप नॉच सर्विसेज बाय ASE सर्टिफाइड टेक्नीशियंस. विजिट राज ऑटो सेंटर एट 1400 जर्सी एवेन्यू नॉर्थ ब्रंसविक टाउनशिप 1213 न्यू जर्सी 27 सोमरसेट. ऑटो बॉडी शॉप 700 हैरिस एवे मिडिलसेक्स. इफ यू आर विद राज ऑटो सेंटर यू आर इन गुड हैंड्स.
9: Enjoy your golden days with Kalyan Jewelers. Get up to 50% off on making charges. Visit Kalyan Jewelers at Oak Tree Road, Iselin, New Jersey. Conditions apply.
10: सुनो ब्राइड्स, अगर अपनी शादी में लगना है एकदम क्वीन
11: तो आइए फैशन क्वीन. यहाँ मिलेगा रॉयल ब्राइडल लहंगा कलेक्शन, स्टनिंग संगीत और पार्टी वेयर ड्रेसेस, और ग्रूम्स के लिए स्टाइलिश शेरवानीज.
10: शादी शॉपिंग का कंप्लीट डेस्टिनेशन फैशन क्वीन.
11: विजिट टुडे 1358 Oak Tree Road, Iselin.
12: Visit Krishna Jewelers on Oak Tree Road for exclusive diamond jewelry.
13: They sell natural diamonds, best quality at the lowest prices.
12: Don't forget, largest natural diamond store, best quality at the lowest prices. Krishna Jewelers, ladies first choice.
14: Tera kya hoga, Kalia?
15: Sardar, maine aapka namak khaya, Sardar.
14: Ab, mirchi kha.
16: Radio Mirchi, it's hot.

0: at 7:30 PM. Mirchi Time Check, RK Jewels. Get amazing deals on exquisite collection on wide range of flawless and stunning jewelry collection. RK Jewels, best quality, best price. Sham Shanda, let's do not
1: donkey, have a funky time. पहले बॉलीवुड में सिर्फ फ्राइडे का वेट होता था, लेकिन अब तो ट्रेलर रिलीज भी एक मिनी इवेंट बन चुका है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और आजकल किसी फिल्म का ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया ना दो टीम्स में डिवाइड हो जाती है। एक टीम कहती है कि मुझे तो यार फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाना है, और दूसरी टीम कहती है कि नहीं नहीं पहले रिव्यूज आने दो। और मुझे ना इस जनरेशन की एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है कि पहले हम सिर्फ फिल्म देखते थे, लेकिन आज हम ट्रेलर ब्रेकडाउन देखते हैं, फैन थियोरीज पढ़ते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक नोटिस करते हैं और टीजर के एक फ्रेम पर भी डिस्कशन शुरू हो जाते हैं। और शायद इसीलिए बॉलीवुड सिर्फ मूवीज नहीं कॉन्वर्सेशंस भी क्रिएट करता है। वैसे आप भी बताइए दोस्तों कि आप किस कैटेगरी में आते हो, ट्रेलर देखते ही टिकट बुक करने वाले या पहले आप रिव्यू सुनते हो? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए अब ट्रेलर से सीधा पिक्चर की दुनिया में चलते हैं एक जबरदस्त बॉलीवुड के गाने के साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: Gold prices are rising. Invest in pure gold bars with Raj Jewels.
2: We have a ready stock at Raj Jewels. Buy gold bars now at Raj Jewels.
3: प्यारी ब्राइड्स, क्या ढूंढ रही हो अपना ड्रीम वेडिंग लहंगा? तो आ जाइए मिस इंडिया ब्राइडल स्टोर।
4: मिस इंडिया लाए है लेटेस्ट ब्राइडल लहंगास, एक्सक्लूसिव रिसेप्शन और पार्टी वेयर ड्रेसेस एंड ग्रूम्स की शेरवानीज।
3: विजिट अस एट 79 मिडिलसेक्स एवेन्यू इजलिन।
5: तेरा क्या होगा कालिया?
6: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
5: अब मिर्ची खा।
7: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और देखते ही देखते ये शाम भी ढलने आ चुकी है और हमारे भी जाने का वक्त आ चुका है। लेकिन दोस्तों, आपके साथ शाम शानदार में अलग अलग धमाकेदार गाने बजाने का जो मज़ा है, उसे मैं मिस नहीं करने वाली। इसलिए कल फिर से आपसे मिलने आऊँगी फ्रॉम 4 to 8 PM EST। और आज के लिए आप कहीं ना जाइए, क्योंकि यार प्यार के जो अनोखे फंडे हैं वो आपको समझाने आ रही है रोशी। तो कहीं ना जाइए, जमे रहिए, बने रहिए राइट हियर ऑन मिर्ची। और आपके जो सॉन्ग रिक्वेस्ट है वो मुझे सेंड करते रहिए ऑन माय इंस्टाग्राम हैंडल @RJMirchiSiddhi SIDDHI ओनली ऑन इंस्टा। और आपके लिए ये अगला तड़कता फड़कता गाना जाते जाते राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।